0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग इन द नाइट लेडीज एंड जेंटलमैन. और अगर आप सोच रहे हो कि मेरा दिमाग सही जगह है या नहीं, देन ऑब्वियस नहीं है. एंड इट इज अ डेमोक्रेसी यार, मैं जो चाहूँ बोल सकती हूँ. आई हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच और उसे इस्तेमाल करते हुए मैं आपको नाइट टाइम में भी गुड मॉर्निंग बोलूंगी. दैट सेड, क्या आपको पता है, दिस इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग आई फाउंड आउट, दैट एक एवरेज कपल एक हफ्ते में 20 मिनट के लिए किस करता है. अब आप ये सोचो कि जो बंदे 20 मिनट निकाल के एक पूरे हफ्ते में किस कर रहे हैं, वो कितना टाइम स्पेंड करते होंगे गेटिंग नॉटी. सोचा है कभी आपने इसके बारे में? और किसिंग से ना, ऑनेस्टली मुझे एक लाइन याद आई फ्रॉम दिस वन स्टैंड अप गर्ल, जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा अनफॉर्चुनेटली, हु सेड दैट आफ्टर द फर्स्ट वन मिनट ऑफ किसिंग समबडी ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा क्यों लग रहा है कि अपने मुंह में एक च्यूइंग गम चबा रही हूँ.
2: Authentic, original, and better than our right.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: कितनी खराब बात है कि आपके डॉगी ने जो सैंडविचेस गलती से या इंटेंशनली चाट लिए थे, वही सैंडविचेस आपने अपने बॉयफ्रेंड को खिलाए. आपको खराब नहीं लगता ये काम करते हुए?
2: The secret box.
1: But whatever your silly little confession is, मेरे पास उसे सुनने के लिए है नॉन जजमेंटल कान. और मेरे साथ लाइन पर है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर.
3: Hey Roshi, how are you?
1: I am very good, darling. How are you? आप ऐसे whispered tones में क्यों मुझसे बातें कर रहे हो?
3: Because I'm not good at all and just thought to just talk.
1: क्या हो गया?
3: Over about. मुझे ऐसा लगा कि मैं बस आपको बता दूं कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है.
1: Okay, I am all ears.
3: Roshi, so I am out with my boyfriend on a trip. हम दोनों घूमने आए हैं. बड़े दिनों के बाद ये प्लान बना है. और हम बाहर घूमने आए हैं एंड एज यूजुअल जो हो सकता है खराब, हमारा झगड़ा हो गया बहुत भयंकर. एंड उसमें सारी की सारी मेरे बॉयफ्रेंड की गलती थी. एंड उसने सॉल्व नहीं किया है कुछ भी. उसने मुझसे बात ही नहीं किया है. वो बस अजीब से सड़े मुंडे बना के जाके सो गया.
1: अभी
3: यू बिलीव वो सो गया है. वो सो रहा है
1: बिना झगड़ा रिजोल्व किए. अभी एज वी स्पीक
3: उसने मुझसे बात भी नहीं करी रोशी. मतलब ही डिड नॉट इवन ट्राई टू. ऐसा होता है ना कि चलो चल ट्राई किया उसने, मैंने नहीं माना. ही डिडंट इवन ट्राई.
1: और सारी गलती उसकी, ऑब्वियसली सारी गलती लड़कियों लड़कों की होती है रिलेशनशिप में.
3: असलियत में सच में गलती थी रोशी उसकी. उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था. सब छोड़ो आप. हाउ कैन ही जस्ट गो एंड स्लीप विदाउट टॉकिंग टू मी. अच्छा अब आप सुनो जो मैं आपको बताना चाहती हूँ असली में. सो द पॉइंट इज कि मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसके जो ही वेयर्स लेंसेज, ओके, तो उसने लेंसेज उतारे और जाके सो गया. मुझे इतना गुस्सा चढ़ा हुआ था कि मैंने जो उसके आई डोंट नो, प्लीज मुझे जज मत करना, लेकिन मैं इतने गुस्से में थी कि मैंने उसके लेंसेज को हटा के उसमें जो सोल्यूशन था उसको हटा के उसमें वोडका डाल दिया है.
1: एक सेकेंड, आपने
3: लेंसेज डाल दिए. I was so angry and pissed off. मुझे लग रहा है कि I don't know.
1: एक सेकेंड, तो आपने अभी अभी as we are speaking उसके लेंस बॉक्स में लेंसेज के सोल्यूशन की जगह वॉडका है, तो कल जब वो वॉडका इन्फ्यूज्ड लेंसेज अपनी आंखों में पहनेगा, यू नो कितना स्टिंग करेगा वो.
3: I don't want to feel bad, but मैं बहुत गुस्से में उस वक्त. आप बताओ मुझे मैं क्या करूं. मैंने कर दिया ये गुस्से में आके, अब बस मुझे नहीं पता.

0: ये गाना था करण अर्जुन का, लेकिन लिखा गया था हर भाई बहन के लिए। लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे।
1: तू ना कभी चेंज नहीं होगा।
2: और तू तो देवी है ना।
3: इस राखी बोल दो दिल की बात, क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
4: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
3: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
5: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
6: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
5: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
7: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
8: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
8: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
9: नो!
10: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट। ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
11: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
12: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़िलिन, न्यू जर्सी।
13: तेरा क्या होगा कालिया?
14: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
13: अब मिर्ची खा।
15: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
2: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
1: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
3: प्यारी ब्राइड, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
5: भाई बहन का रिश्ता होता है प्राइसलेस, तो राखी की कोई कीमत क्यों हो?
6: सेलिब्रेट राखी विद राजभोग। राजभोग विशेस यू अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
7: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Har drive banegi yaadgar.
8: Tera kya hoga Kalia?
9: Sardar, maine aapka namak khaya Sardar.
8: Ab mirchi kha.
10: Radio Mirchi, it's hot.

Calm down, my bhagjano. अगर आप जानना चाहते हो if your crush actually likes you back or not, तो एक बड़े से ग्रुप में ask one of your friends to crack a joke. क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब सब हंस रहे होते हैं ग्रुप में, हम automatically उस इंसान की तरफ देखते हैं जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं in that group, to see अगर वो हंस रहे हैं या नहीं. तो अगर आपके क्रश ने आपकी तरफ देखा कि आप उस जोक पर हंसे या नहीं, then मान लो that your crush really likes you too. And this is a psychological trick and you are most welcome for it. ऐसे ही tricks and tips के लिए मुझे सुनते रहो. And you can also ask for personal help on the gram या Facebook. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की spelling है ROCHIE. So find me, hit me up, send me your number so that I can call you. And while you do all of that, kahin mat jana jana, kyunki wapas to yahi hai aana. Sunte raho Mirchi, it's hot.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो अपने करियर में या अपनी एजुकेशन में सुपर फोकस्ड हो एंड यू डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम गेटिंग नॉटी ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन, देन मेरा सजेशन है ट्राई नॉट टू डेट एन एरीज पर्सन. क्योंकि आई विल टेल यू द वन थिंग अबाउट एन एरीज पर्सन इज उन्हें नॉटी होना इतना अच्छा लगता है दैट एनी गिवन स्लाइटेस्ट बिट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी दे विल वॉन्ट टू गेट नॉटी विद यू. एंड उनके एरोजिनस जोन्स आर एवरीवेयर, सर से लेकर पाव तक. एरीज इज मोस्ट लाइकली द पर्सन हू इज गोइंग टू हैव अ किंक अबाउट फीट एज वेल. सो कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इफ यू आर somebody जिसे बड़े मजे आते हैं हर जगह एडवेंचर, पैशन, एक्साइटमेंट दिखाने के, देन टोटली डेट एन एरीज. अगर आप एक ऐसे इंसान हो who wants a more sober, subtle kind of love life in the most subtle, sober kind of ways, then एक वर्गो को डेट कर लो बिकॉज दे आर एक्चुअली लाइक वेरी प्रॉपर. हा अब आप बताओ कि आप इन दोनों साइंस या फिर एनी साइन इन बिटवीन को डेट कर रहे हो, हाउ इज इट गोइंग फॉर यू. एंड टू डिस्कस योर लव लाइफ हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. एंड व्हाइल यू फाइंड मी कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
1: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
2: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
1: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: मुझे ना आज तक अरेंज मैरिज का सीन ही नहीं समझ में आया. मतलब यू डोंट नो पर्सन फ्रॉम एडम दो दिन पहले तक, और दो दिन के बाद यू आर सपोज टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ विद दिस पर्सन. मुझे ये कॉन्सेप्ट इतना वियर्ड लगता है कि मेरी नानी और मैं, वी स्पेंड मोस्ट ऑफ आर लाइव्स आर्ग्यूइंग अबाउट दिस, बिकॉज उन्हें लगता है कि अरेंज मैरिज रॉक्स, मुझे लगता है इट्स ऑल अबाउट लव मैरिजेस. आपको क्या लगता है इसके बारे में? हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB एंड टेल मी योर ओपिनियन. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है RochiE, और मेरे साथ लाइन पर अभी कार्तिक है with a problem which is quite similar. Hi Karthik.
2: Yes Roshi.
1: How are you my darling?
2: Little bit confused.
1: है ना? मैंने जब आपके Instagram पर messages पढ़े, I was like, I have to call him up right now, because इसकी जिंदगी तो मतलब रायते फैल रहे हैं भाई. क्या हो रहा है आपकी जिंदगी में?
2: Before 3 years, मेरी engagement पक्की हुई थी, but due to some extra affair reason from the girl side, I broke up with that relationship. वो arrange ही था. तो उसके बाद 3 years, my family searching for the another girl, and recently एक लड़की को मैं देखने गया, और like I was like, ठीक है चलो यार, okay. Family भी बोल रही है और लड़की भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इतना. तो मैंने भी हाँ कर दिया. उसके बाद ये हुआ कि अभी मैं उस लड़की से के साथ बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 15-20 दिन हो गए, बट आई एम नॉट गेटिंग दैट वाइब और फीलिंग दैट ओके आई एम गेट एंगेज, और जो नॉर्मली होते हैं ना लोग एक्साइटेड, आई एम नॉट गेटिंग एक्साइटेड. और समटाइम आई एम गेटिंग लाइक ओके ठीक है चलो, कॉल आया तो बात कर ली, नहीं आया तो जाने दो.
1: यार ये तो थोड़ा सा लाइक शेडी सीन. आई विल टेल यू व्हाई, बिकॉज साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से जो पहले 3 महीने होते हैं एक रिलेशनशिप में, उसमें हॉर्मोन्स इतने एक्साइटेबल होते हैं, और आपकी ब्रेन की जो कॉकटेल है वो सच में कॉकटेल बन गई होती है, और बहुत सारे फील गुड हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं. अब आई थिंक आप एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन में हो, क्योंकि अगर ये आपके साथ नहीं हो रहा है तो योर लेवल ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन विद दिस गर्ल या इमोशनल अट्रैक्शन विद दिस गर्ल काफी कम है, ऐसा मुझे लग रहा है.
2: Yes, you are right. The same thing happened with the first time before 3 years when I got engaged. Okay, but it is just for the 15 or 20 days, not max. Then, but उस time पे था सब कुछ. Yeah, like call करना है, video call करना है, बात करनी है, ये चाहिए वो चाहिए. But now I don't know what is going on. I am also like the girls is super excited. Okay? So I am also feeling guilty. Like
1: naturally,
2: okay, I'm like.
1: यार आप एक काम करो, ठीक है? अपने आप को ना एक cut off period दे दो कि अगर इस time तक I don't start feeling something, then I am going to actually bring this up with the girl and tell her कि मुझे इतनी excitement नहीं.

0: ये गाना था करण अर्जुन का, लेकिन लिखा गया था हर भाई बहन के लिए। लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे।
1: तू ना कभी चेंज नहीं होगा।
2: और तू तो देवी है ना।
3: इस राखी बोल दो दिल की बात, क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
4: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
3: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
5: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
6: Goalie goes down the ground. Goalie goes out of the ground.
5: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
7: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
5: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
8: एक ही होता है।
5: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: As a girl जो अभी अभी 18 years की हुई है, I want to ask you कि अगर कोई life lessons होते जो आप एक 18 year old को दे सकते होते, what would those life lessons be?
2: Roshi के DM से.
1: What a beautiful question this is, Kanika. Thank you for it. मुझसे ऐसे अजीब सा सवाल अभी तक इतने सारे सालों में किसी ने नहीं पूछा है. But if I had to give you a couple of life lessons, it would be ज़्यादा केमिकल्स मत यूज़ करना अपने बालों पर. यू विल एंड अप हैविंग टेरिबल हेयर एज यू ग्रो ओल्डर. मैंने हर तरह के केमिकल्स यूज़ किए थे. आई पर्म्ड माई हेयर, स्ट्रेटन माई हेयर केमिकली, यूज्ड अ लॉट ऑफ अमोनिया वाला कलर, एंडेड अप हैविंग एलोपीशिया. सो दैट्स अ बिग नो नो. सेकेंड, आई थिंक पार्टीइंग शुड कम थोड़ा ना लाइक इंटरमिटेंटली. अगर आप रोज रात को पार्टी करोगे, बाय द टाइम यू हिट योर लेट 20s, योर स्किन, योर हॉर्मोन्स, एवरीथिंग विल गो क्रेजी. One thing that I learned pretty late in life was कि जो boring boys होते हैं वो actually losers नहीं होते हैं. They're quite lovely. Bad boys are just that, bad boys. And I think the last thing जो मेरे हिसाब से life lesson है, for no matter होते हैं, they're quite lovely. Bad boys are just that, bad boys. And I think the last thing जो मेरे हिसाब से life lesson है, for no matter who you are and how old you are.

फेसबुक आई बी सो हैप्पी टू टेक इट अप. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो नाउ गो अहेड, डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे फॉर सम रियली रैंडम रीजन डेड एंड्स में इंटरेस्ट है, देन लेट मी टेल यू कि डेड एंड्स का बेस्ट एग्जांपल है फॉलिंग इन लव विद समबडी जो शादीशुदा है. उससे होता क्या है कि आपको एक शादीशुदा इंसान से प्यार हो गया है. अब वो शादीशुदा इसलिए क्योंकि वो शादी से निकल नहीं पा रहा, पा रही, या नहीं निकलना चाहता, निकलना चाहती, और उस इंसान के दिल में दो लोगों की जगह है. अब उस जगह में आप फिट तो हो गए हो, लेकिन अब आपको समझ नहीं आएगा कि इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकले. तो बेसिकली फॉलिंग इन लव विद अ मैरिड पर्सन, विच माई बेस्टी इज करंटली इन राइट नाउ, इज अ लॉट लाइक द चक्रव्यूह. कि अंदर जाना तो बहुत ही आसान है, लेकिन बाहर कैसे आए ना आपको समझ में आता है, ना आपके शादीशुदा पार्टनर को समझ में आता है. आप अपने पार्टनर से कहते हैं कि भाई अपनी बीवी को छोड़ दो, भाई कहते हैं कि बीवी को तो छोड़ दे लेकिन छोटी बच्ची है उसका क्या होगा, तो आप कहते हैं कि हम चले जाते हैं, लेकिन आपके पीछे पीछे भाई एग्जैक्टली 3 घंटे में लॉस्ट लिटिल पपी की तरह आ जाते हैं. देन यू डोंट नो व्हाट टू डू, यू एंड अप टेलिंग हिम आई लव यू, एंड देन ही एंड्स अप टेलिंग यू आई लव यू टू. लेकिन सडनली उसकी पत्नी का फोन आता है, ही इज लाइक यार 2 मिनट देना मैं अभी वापस आता हूँ. And the story goes on and on and on. और मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने ऐसी बहुत ही complicated relationship and also toxic कम से कम नहीं तो 8-9 साल आराम से चल

0: तेरा क्या होगा कालिया?
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
3: मिर्ची फ्रेश माल।
4: लव लॉस और होप का म्यूजिकल सफर वे जुनून।

गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारा पंटू से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: कितनी खराब बात है कि आपके डॉगी ने जो सैंडविचेस गलती से या इंटेंशनली चाट लिए थे वही सैंडविचेस आपने अपने बॉयफ्रेंड को खिलाए, आपको खराब नहीं लगता ये काम करते हुए?
2: The secret box.
1: But whatever your silly little confession is, मेरे पास उसे सुनने के लिए है नॉन जजमेंटल कान और मेरे साथ लाइन पर है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर.
3: Hey Roshi, how are you?
1: I am very good darling, how are you? आप ऐसे whispered tones में क्यों मुझसे बातें कर रहे हो?
3: Because I'm not good at all and just thought to just talk.
1: क्या हो गया?
3: Over about. मुझे ऐसा लगा कि मैं बस आपको बता दूं कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है.
1: Okay, I am all ears.
3: Roshi, so I am out with my boyfriend on a trip. हम दोनों घूमने आए हैं, बड़े दिनों के बाद ये प्लान बना है. और हम बाहर घूमने आए हैं एंड एज यूजुअल जो हो सकता है खराब, हमारा झगड़ा हो गया बहुत भयंकर एंड उसमें सारी की सारी मेरे बॉयफ्रेंड की गलती थी. एंड उसने सॉल्व नहीं किया है कुछ भी. उसने मुझसे बात ही नहीं किया है. वो बस अजीब से सर में मुंडे बना के जाके सो गया.
1: अभी
3: यू बिलीव वो सो रहा है
1: बिना झगड़ा रिजॉल्व किए अभी एज वी स्पीक.
3: उसने मुझसे बात भी नहीं करी रोशी, मतलब ही डिड नॉट इवन ट्राई टू. ऐसा होता है ना कि चलो चल ट्राई किया उसने, मैंने नहीं माना. ही डिडंट इवन ट्राई.
1: और सारी गलती उसकी, ऑब्वियसली सारी गलती लड़कियों लड़कों की होती है रिलेशनशिप में.
3: असलियत में सच में गलती थी रोशी उसकी, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था. सब छोड़ो आप, हाउ कैन ही जस्ट गो एंड स्लीप विदाउट टॉकिंग टू मी. अच्छा अब आप सुनो जो मैं आपको बताना चाहती हूँ असली में. तो द पॉइंट इज कि मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसके जो ही वेयर्स लेंसेज, ओके, तो उसने लेंसेज उतारे और जाके सो गया. मुझे इतना गुस्सा चढ़ा हुआ था कि मैंने जो उसके आई डोंट नो, प्लीज मुझे जज मत करना, लेकिन मैं इतने गुस्से में थी कि मैंने उसके लेंसेज को हटा के उसमें जो सोल्यूशन था उसको हटा के उसमें वोडका डाल दिया है.
1: एक सेकेंड, आपने
3: लेंसेज डाल दिया है. I was so angry and pissed off. मुझे लग रहा है कि I don't know.
1: एक सेकेंड, तो आपने अभी अभी as we are speaking उसके लेंस बॉक्स में लेंसेज के सोल्यूशन की जगह वॉडका है, तो कल जब वो वॉडका इन्फ्यूज्ड लेंसेज अपनी आंखों में पहनेगा यू नो कितना स्टिंग करेगा वो.
3: I don't want to feel bad, but मैं बहुत गुस्से में उस वक्त होशी. आप बताओ मुझे मैं क्या करूं? मैंने कर दिया ये गुस्से में आके. अब बस मुझे नहीं पता. I just thought कि मैं आपको बता दूंगी मैंने ये कर दिया.
1: और हम प्रिटेंड करेंगे कि मुझे नहीं पता है, क्योंकि फिर I will be compelled to tell you कि भाई यार वो वॉडका हटा के लेंस सॉल्यूशन वापस रख दे. और अगर वो बिना आपसे झगड़ा रिजोल्व किए सोया है, he deserves वॉडका in his eyes. मैं आपको रोशिफाई कर रही हूं और हम भूल जाएंगे और आप सो जाओ, ठीक है? या
4: You've been roshified.
3: Don't know Roshi, but it just feels good. मैंने ऐसे पूरा भड़ास निकाल दिया था, मुझे better feel हो रहा है.
1: I am so glad you're feeling better. मेरी गीत उसकी किसी फोटो को आग नहीं लगाना है, उसे आग नहीं लगाना है. कोने में जाके सो जाओ और अगर बहुत बदतमीजी करेगा या स्नोर करेगा, just kick him out of bed and let him wear his lenses and just text me and tell me what happens tomorrow, okay?
3: Thank you for listening to me, Roshi.
1: All the best to you, my darling. This is crazy AF. अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसा कोई secret confession है, या अल्लाह, I want to hear all about it on Insta या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की spelling है ROCHIE. And while you do that, you can also WhatsApp me. मेरा number है 9930983983. On that note, do whatever you have to do, लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: राखी यादों की कारवां है,
1: जहां मीठी करारी नमकीन कई यादें हैं,
0: यही यादें राखी को पूरा करती हैं।
2: अपने सिबलिंग्स के साथ मीठी तीखी मेमोरी शेयर कीजिए एंड गेट अ चांस टू विन शानदार गिफ्ट हैम्पर्स।
3: क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
4: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
3: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा।
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: यूं ही चलेगी।
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: मैंने एक किताब में पढ़ा था कि एयरपोर्ट्स पे शायद ज़्यादा सिंसेयर किसेस होती है दैन इवन इन वेडिंग हॉल्स, एंड शायद हॉस्पिटल्स में ज़्यादा सच्ची दुआएं होती हैं एज अपोज टू एक मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा, क्योंकि प्यार का एहसास सबसे ज़्यादा तब होता है जब प्यार हमें छोड़ कर जा रहा होता है. बट माई पॉइंट इज कि प्यार के जाने का इंतजार करना ही क्यों है. मैं पता क्या करती हूँ, रोज एक इंसान को अपनी जिंदगी में जो मेरी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, दैट कुड बी माई मॉम, माई ब्रदर, माई बेस्ट फ्रेंड, कोई भी, माई बे, मैं हमेशा उन्हें एक आई लव यू नोट लिख कर भेजती हूँ, विच आई मीन अपने दिल से. हर रोज अपनी जिंदगी के 5 मिनट मैं उन्हें प्यार जताने में लगाती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि कल मैं ना हूं या वो ना हो टू रिसीव द लव. और अगर ऐसा कभी हो तो मैं जब पीछे मुड़कर देखूंगी ना, आई रियलाइज कि मैंने जिंदगी का हर पल इस्तेमाल किया टू टेल देम दैट आई रियली लव देम, सो दैट मेरी जिंदगी में प्यार ज्यादा और रिग्रेट कम हो. अगर आपकी भी जिंदगी में आप ये ऐसा ग्रेटिट्यूड जर्नल मेंटेन करते हो, ग्रेट. अगर नहीं करते हो, ट्राई टेलिंग समवन रियली क्लोज टू यू दैट आप उनसे कितना प्यार करते हो, एंड वॉच देयर एक्सप्रेशन चेंज फॉर द बेटर. एक बार इसे ट्राई करके देखो, वंस इट वर्क्स फॉर यू, थैंक यू किसे ही बोलोगे. मुझे बोलने के लिए यू कैन हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गिव अ हेड एंड डू व्हाटएवर यू हैव टू डू. लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, जिसके पास लव है उसके पास सब है. एंड आई लव यू.

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

0: कालिया
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans. Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

स्क्रीन्स पे हेलो हेलो श्रेया हाजिर हो गई है। अब जैसे ही उस जमाने के गाने सुनोगे तो उस जमाने की बातें तो याद आएंगी, और जब बातें आएंगी तो इस जमाने की श्रेया याद आएगी। हेलो हेलो वेलकम। अच्छा, आज जिस फिल्म के बारे में बात करेंगे ना, वो पहली फिल्म बड़ी सारी चीजों में थी। फर्स्ट इंडियन फिल्म जो कि सबसे लंबी थी, द लॉन्गेस्ट फिल्म एवर मेड, द फर्स्ट इंडियन फिल्म जिसके दो ब्रेक्स थे, द फर्स्ट इंडियन फिल्म जिसमें राज कपूर साहब कलर में थे, यानी द फिल्म दैट ही डिड वाज इन कलर, एंड द फर्स्ट इंडियन फिल्म जिसने भाई यूरोप में जा कर के अपने बहुत सारे सीन्स शूट किए। पुरानी जीन्स पे आज इसी फिल्म की बात होगी, यानी राज कपूर साहब की संगम की बात होगी। तो बस करेंगे बड़ा सारा संगम उस जमाने के गानों के साथ। कम राइट बैक, मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

राज कपूर साहब की पहली कलर फिल्म संगम की बात हो रही है। वेल, ये फिल्म फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बहुत सारे मामले में थी। एक तो राज कपूर साहब की पहली कलर फिल्म थी, ये पहली इंडियन फिल्म थी जो यूरोप में जाकर के शूट हुई थी, ये पहली इंडियन फिल्म थी जो कि लॉन्गेस्ट थी और इसमें दो एड ब्रेक्स थे, मतलब दो ब्रेक्स थे, नॉट एड ब्रेक्स, प्रॉपर ब्रेक्स थे। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। अब मैं ना आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताती हूँ इसी फिल्म की। सो राज कपूर साहब ने इस फिल्म की स्टोरी ना वैजयंती माला जी को नरेट की थी और वो काफी टाइम तक उनका वेट करते रहे कि अब भाई वैजयंती माला से यस आएगा, हाँ आएगा, हाँ आएगा, हाँ आएगा कि वो ये फिल्म करना चाहती हैं, वो उनके ऑपोजिट उनकी राधा बनेंगी। लेकिन उधर से कोई जवाब ही नहीं आ रहा था। एक महीना, दो महीना, तीन महीने बीत गए। फिर उस टाइम पे ना टेलीग्राम चलते थे, यानी अब मैं कैसे बताऊँ, आजकल का व्हाट्सएप आप ले लो, एज इन लेटर्स जाया करते थे पोस्ट कार्ड्स के थ्रू, लेकिन अगर आपको कोई जल्दी मैसेज पहुँचाना होता था वो टेलीग्राम के थ्रू होता था। तो एक दिन, एक शाम को राज कपूर साहब ने टेलीग्राम लिखा वैजयंती माला को और उन्होंने उस टेलीग्राम में लिखा, बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं। क्योंकि इसमें वैजयंती माला जी का जो रोल था वो राधा कहलाना था। आगे क्या हुआ बहुत इंटरेस्टिंग है, बताऊंगी आपको वापस श्रेया के साथ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: ये गाना था करण अर्जुन का, लेकिन लिखा गया था हर भाई बहन के लिए। लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे।
2: तू ना कभी चेंज नहीं होगा।
3: और तू तो देवी है ना।
4: इस राखी बोल दो दिल की बात, क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
1: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
4: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
5: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
6: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
5: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
7: Ise apni jeb mein rakh le Peter. Ab ye taala main teri jeb se chabi nikal kar hi kholunga.
5: Moral of the story? नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
8: एक ही होता है।
5: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

तो राज कपूर साहब ने लिख करके पूछ लिया टेलीग्राम के थ्रू, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। फिर क्या, उधर से भी टेलीग्राम आया। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, और आज संगम फिल्म की बात हो रही है, द फर्स्ट फिल्म ऑफ राज कपूर साहब जो कि कलर में थी, इंडिया की पहली फिल्म जो यूरोप जाकर के शूट हुई थी, वेल इंडिया की पहली फिल्म जिसमें दो ब्रेक्स थे, द लॉन्गेस्ट फिल्म एवर। ऑफकोर्स इसके बाद आई थी मेरा नाम जोकर जो और भी लंबी थी। सो मैं बात कर रही थी कि जब राज कपूर साहब ने ना इस फिल्म का कॉन्सेप्ट, इस फिल्म का नरेशन अपनी हीरोइन वैजयंती माला जी को सुनाया, तो वो ही वॉज वेटिंग कि भाई अब हाँ आएगी, अब हाँ आएगी, लेकिन वैजयंती माला की कोई हाँ ही नहीं आई। 2 से 3 महीने के बाद राज कपूर साहब ने टेलीग्राम लिख करके भेजा। उस टेलीग्राम में लिखा हुआ था, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। मूवी का नाम संगम और कैरेक्टर जो कि वैजयंती माला को करना था उसका नाम राधा। तो उधर से भी एक रिप्लाई आया टेलीग्राम के थ्रू, होगा होगा होगा। और इसी को भाई इस गाने में रखा गया, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। वैजयंती माला जी का होगा होगा होगा भी है इस गाने में। कमिंग अप राइट नेक्स्ट फॉर यू, मैं हूं श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
3: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
4: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ये वही टाइम था जब इंडस्ट्री के तीन दिग्गज दिलीप साहब, राज कपूर साहब और देवानंद कोशिश कर रहे थे हिंदी सिनेमा में कलर लाने की। इसीलिए उनके सामने अगर कोई यू नो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म आ रही थी वो रिजेक्ट कर दे रहे थे। एंड दैट इज व्हाई राज कपूर और देवानंद ने अपने प्रोडक्शन हाउस के अंडर में सबसे पहली कलर फिल्म्स लॉन्च करी। वेल दिस वाज द टाइम जब देवानंद पहली फिल्म which was in color under Navketan Productions guide इसको बना रहे थे and simultaneously राज कपूर साहब RK film banner के under संगम बना रहे थे। ये दोनों फिल्में almost एक दूसरे के साथ साथ रिलीज हुई थी। पुरानी जीन्स पे आज संगम की बातें चल रही हैं तो बस कहीं भी मत जाइएगा, इस फिल्म की बातों का और इस फिल्म के गानों का संगम भी होता रहेगा यहाँ।

0: 92.7 FM. Radio Mitri, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans. Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

राज कपूर साहब ने बस ठान लिया था कि वो ना दिल्ली में जाकर के इस गाने की शूटिंग करेंगे, लेकिन उनको वो थोड़ा सा सुनसान रास्ता, वो पेड़ पौधे जिस पे वो बस चल रहे हैं गाना गाते हुए, वो लोकेशन दिल्ली में मिल ही नहीं रही थी। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, एंड इट इज सेड दैट द शोमैन ना हैड अ कीन नज़र। जब उनको लोकेशन चूज करनी होती थी तो वो यू नो एक से एक एग्जॉटिक लोकेशन भी कैंसिल कर देते थे अगर उनको लोकेशन में मजा ना आए तो। तो जो अगला गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ फ्रॉम द फिल्म संगम, ये है ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज ना होना। इस गाने की शूटिंग के लिए राज कपूर साहब को ना एक सन्नाटे वाली सुनसान सी रोड चाहिए थी, और ऐसा चाहिए था कि बहुत सारे पेड़ पौधे हों। वो दिल्ली गए अपनी पूरी यूनिट को लेकर के, लेकिन वहाँ पे ना उनको कोई लोकेशन ही नहीं समझ में आ रही थी। आखिरी दिन जब हताश होकर के लौटने वाले थे, उनकी नज़र पड़ी एक गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टेड एरिया पे, एंड देन ही सेड कि अरे बस यही तो मैं ढूंढ रहा था। स्पेशल परमिशन ली और ये गाना एक्चुअली में दिल्ली में शूट हुआ है। ये गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट। मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

राज कपूर साहब ने पूरा फ्रीडम दिया दिलीप साहब को, क्योंकि वो दिल से चाहते थे कि दिलीप साहब इस फिल्म में उनके साथ काम करें। तो उन्होंने ये फ्रीडम दिया कि वो कोई भी रोल चूज कर सकते थे। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ और मैं बात कर रही हूँ फिल्म संगम की, जो आर के फिल्म्स की फर्स्ट कलर फिल्म भी बनी। सो राज कपूर साहब वांटेड टू वर्क विद दिलीप साहब, ही रियली वांटेड कि वो किसी तरह इस फिल्म में आ जाए। तो उन्होंने ना उनको ऑप्शन दिया था कि वो रोल भी चूज कर सकते थे जो राज कपूर साहब का था, और वो रोल भी चूज कर सकते थे जिसमें बाद में राजेंद्र कुमार आए। दिलीप साहब का कई महीनों तक का हाँ का वेट करते करते जब वो एक दिन दिलीप साहब से मिलने गए, तो दिलीप साहब ने उनको साफ साफ पता है क्या कहा कि वो राज कपूर के साथ काम नहीं करना चाहते, क्योंकि दिलीप साहब ने कहा कि तुम्हारी फिल्म है और इसमें पूरी लाइमलाइट तुम ही ले जाओगे, यू आर द शोमैन। फिर ये रोल गया राजेंद्र कुमार को, लेकिन एक बैकअप प्लान भी था। क्या था बताऊंगी आपको, श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: राखी यादों की कारवां है,
2: जहां मीठी करारी नमकीन कई यादें हैं,
1: यही यादें राखी को पूरा करती हैं।
3: अपने सिब्लिंग्स के साथ मीठी तीखी मेमोरी शेयर कीजिए एंड गेट अ चांस टू विन शानदार गिफ्ट हैम्पर्स,
4: क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
5: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
4: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
6: अब मिर्ची खा।
8: Radio Mirchi, it's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

फिरोज खान ना एंड तक बस ये होप करते रहे कि शायद शायद शायद ऊपर वाले प्लीज राजेंद्र कुमार इस रोल के लिए मना करते हैं। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म संगम, इंडिया की पहली फिल्म जिसमें दो ब्रेक्स थे, इंडिया की पहली फिल्म जो कि यूरोप में जाकर के शूट हुई थी, राज कपूर साहब की पहली कलर फिल्म। सो मैं बता रही थी कि इसमें जो रोल किया है राजेंद्र कुमार ने, वो रोल सबसे पहले दिलीप साहब को गया था, लेकिन दिलीप साहब ने राज कपूर साहब को ये कहते हुए मना कर दिया कि भाई सारा लाइमलाइट तुम ही ले जाओगे बिकॉज यू आर द शोमैन। फिर उसके बाद ये रोल गया राजेंद्र कुमार को। अब राजेंद्र कुमार जब तक यस कहते तब तक राज कपूर साहब को अप्रोच किया उनके दोस्त फिरोज खान ने, और फिरोज खान का बेहद मन था टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म, एवरीबडी वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ आर के फिल्म। तो क्या हुआ, हुआ ये कि भाई राज कपूर साहब ने उनको प्रॉमिस किया कि अगर राजेंद्र कुमार मना कर देंगे तो ये रोल फिरोज खान करेंगे। अब भाई राजेंद्र कुमार ने मना नहीं किया और फिरोज खान का वो सपना टू बी अ पार्ट ऑफ राज कपूर फिल्म वो सपना ही रह गया। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें यानी संगम की बातें विद मी श्रेया। और हाँ, अगर मुझसे कुछ अलग से पर्सनल बात करनी हो तो फेसबुक और इंस्टा पे तो मैं हूँ ही, आरजे श्रेया विद लव, दैट्स आरजे SHREYA श्रेया विद लव।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

हम वो हैं जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे, थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे।

इस खत को गाने में बदला था। पुरानी जींस पे आप हूं श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म संगम। सो हसरत जयपुरी साहब, शंकर जयकिशन जी, ये इनकी टीम थी, गाने बनाया करते थे। शंकर जयकिशन जो थे वो गाने कंपोज करते थे और हसरत जयपुरी गाने लिखा करते थे। राज कपूर साहब की फिल्मों में या तो हसरत साहब गाने लिखते थे या फिर शैलेंद्र जी। सो हुआ ये कि हसरत साहब का आर्ग्यूमेंट हुआ शंकर जयकिशन जी से एंड इसकी वजह से ना इन लोगों में काफ़ी लंबे अरसे तक बात नहीं हुई। अब क्या हुआ, हसरत साहब ने एक दिन ख़त निकाला और वो अल्फाजों के धनी तो थे ही। उन्होंने उस ख़त पे लिखा, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज़ ना होना, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी बंदगी हो। और जैसे ही शंकर जयकिशन जी ने ख़त पढ़ा, फटाक से हसरत साहब को गले लगा लिया। वेल, इसी खत को फिर गाने में तब्दील किया गया, संगम का द फेमस सॉन्ग ये मेरा प्रेम पत्र बाय रफ़ी साहब। ये गाना मैं आपको ऑलरेडी सुना चुकी हूँ, तो एक और रफ़ी साहब का गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट। मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जींस।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans. Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

राज कपूर साहब इसी फिल्म से एडिटर भी बने थे। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ मूवी का नाम है संगम, जो आर के फिल्म्स की पहली कलर फिल्म थी। इस फिल्म को एडिट भी करने वाले थे राज कपूर साहब, एंड इसके बाद उन्होंने अपनी सारी फिल्मों को एडिट किया, फिर चाहे वो मेरा नाम जोकर हो या फिर बॉबी हो। तो इसी फिल्म संगम का बड़ा खूबसूरत गाना है आपके लिए हर दिल जो प्यार करेगा। अप नेक्स्ट

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मुंबई के फेमस सिनेमा हॉल का नाम संगम रख दिया गया था। अंधेरी ईस्ट में है आज भी ये फेमस सिनेमा हॉल जिसका नाम है संगम। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, एंड इस हॉल के जो ओनर्स थे ना, देवर टंडन फैमिलीज एंड देवर ह्यूज फैन ऑफ राज कपूर साहब। राज कपूर साहब जब अपनी फिल्मों को लॉन्च करते थे तो बस इसी हॉल में ना प्रीमियर्स भी होते थे, तो राज साहब खुद भी जाया करते थे। ये पूरी फैमिली राज साहब की द शोमैन की इतनी बड़ी फैन थी कि आफ्टर द फिल्म संगम दे एक्चुअली नेम्ड देयर हॉल एज संगम। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, इसी फिल्म की नॉनस्टॉप बातें चलती रहेंगी, तो बस कहीं भी मत जाना। और हाँ, अगर श्रेया से वन टू वन बात करनी है, इस आवाज के पीछे भी जो चेहरा है वो आपको देखने को मिल जाएगा ऑन फेसबुक और इंस्टा, RJ श्रेया विद लव। दैट्स RJ SHRUYA श्रेया विद लव।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: ये गाना था करण अर्जुन का, लेकिन लिखा गया था हर भाई बहन के लिए। लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे।
2: तू ना कभी चेंज नहीं होगा।
3: और तू तो देवी है ना।
4: इस राखी बोल दो दिल की बात, क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
5: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
4: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
6: Listener MA, back to back gana sunega.
7: Back to back gana sunega.
6: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

सारी कास्ट एंड क्रू ओवर एक्साइटेड थी कि उनको इंडिया के बाहर वो भी यूरोप जाने का मौका मिल रहा है, और इंडियन ऑडियंस इसलिए एक्साइटेड थी कि उनको बड़े पर्दे पर यूरोप दिखेगा। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ संगम फिल्म की बात हो रही है, द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू बी शॉट इन यूरोप, और इसके लिए ना राज कपूर साहब भाई वैजंती माला को एंड राजेंद्र कुमार को, खुद को और भी कास्ट एंड क्रू के करीब 10-15 लोगों को बाहर यूरोप लेकर के गए थे। ये पहली इंडियन फिल्म थी जो बाहर जाकर के शूट हुई थी, और वो भी यूरोप में शूट हुई थी। सो इंडियन ऑडियंस में ना ऑलरेडी बाय वर्ड ऑफ माउथ ये स्प्रेड हो चुका था कि इसमें तो फॉरेन भी है। तो कहते हैं कि संगम को देखने ना लोग फैमिली भर भर के आई थी और बार बार आ रही थी। इतना मेजर क्रेज हुआ कि अंधेरी का एक सिनेमा हॉल था और उसकी जो टंडन फैमिली, एज इन द ओनर्स वर द टंडन फैमिली, उन्होंने अपने हॉल का नाम रख दिया था संगम हॉल, जो आज भी संगम हॉल के नाम से फेमस है। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ जाने का टाइम हो गया है, यानी गाड़ी में बैठोगे एंड वी विल हिट द हाईवे। ऑलराइट, आज का मेरा हाईवे हिट मैं उन लोगों को डेडिकेट करना चाहती हूँ जो किसी से इतना प्यार करते हैं कि वो जहाँ जहाँ रहते हैं ना आप ऑटोमेटिकली वहाँ पहुँच जाते हो, चाहे फिजिकली हो ना हो, मेंटली उनके साथ होते हो। और जिस भी सिचुएशन में वो बंदा होता है ना, उनको एनकरेज करते ही रहते हो, तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई साया है तो उसे ना हमेशा पकड़ के जकड़ के रखो। ऑन दैट नोट, दिस इज श्रेया साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू टुमारो। ख्याल रखो अपना एंड गुड नाइट।

0: कालिया
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मैं खत्म तो खेल खत्म।
1: Radio Mirchi New Jersey, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
2: Mirchi, fresh maal.
3: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है। उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन।

0: इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि बिराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: राखी यादों की कारवां है,
2: जहां मीठी करारी नमकीन कई यादें हैं,
1: यही यादें राखी को पूरा करती हैं।
3: अपने सिब्लिंग्स के साथ मीठी तीखी मेमोरी शेयर कीजिए एंड गेट अ चांस टू विन शानदार गिफ्ट हैम्पर्स।
4: क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
5: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
4: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव special offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: समय बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: और सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

आर के जूल्स मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आर के जूल्स बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: जब लड़कों को उनकी लाइफस्टाइल और चॉइसेस के लिए जज किया जाए तो उस जजमेंट को पर्सनली लिए बिना खुद को कैसे एक्सेप्ट करें, आइए समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, बहुत एक कमाल की फिल्म आई थी 2016 में, दंगल नाम की। और दंगल नाम की जो पिक्चर थी वो उसने बहुत अच्छा किया, लेकिन उसमें एक बहुत ब्यूटीफुल फैसेट मुझे नज़र आया कि जो जो बेटियां होती हैं ना, वो उनको इस बात के ताने दिए जाते हैं कि वो लड़कों के गेम में पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो लड़कों जैसे ड्रेसअप करती हैं, वो लड़कों जैसा बॉय कट रखती हैं एक्सेट्रा। और मेरे मन में ये सवाल आया कि कभी कभी क्या होता है, कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो लड़कों के जैसे रहना पसंद करते हैं, ड्रेसअप पसंद करना चाहिए, उनकी चॉइस है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि जो लड़कियां ही होती हैं वो ही उनका ज़्यादा मजाक उड़ाती हैं। तो ऐसे केस में अगर मैं वो लड़की हूँ जिसे लड़कों की तरह रहना पसंद है, तो मैं अपने आप को क्या कहूँ?
4: अगर आपको वो चीज़ कंफर्टेबल रहती है, पहले तो हमें क्या है, वैलिडेशन बहुत चाहिए होता है सोसाइटी से।
3: सही बात।
4: हम सब ऐसे ही बड़े होते हैं, हमें लगता है कि अगर सामने से वो चीज़ अक्नॉलेज्ड है तो वो राइट है। अगर उसके अक्नॉलेजमेंट या वैलिडेशन नहीं मिलता तो वो रॉन्ग है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो उससे पहले तो अपने को परे जाना होता है कि सब मुझे एक्सेप्ट करेंगे। अगर मुझे वो चीज़ कंफर्टेबल है, चाहे वो ड्रेसअप में है चाहे कुछ है, वो गलत नहीं होना चाहिए। एज लॉन्ग एज वो गलत नहीं है, लेकिन भले वो सबको एक्सेप्टेबल नहीं है, इट इज़ ओके। हमारा तो समाज आजकल ऐसा हो गया है कि गलत को ज्यादा एक्सेप्टेंस मिलने लगी है कई चीजों में।
3: सही बात।
4: आप राइट होंगे तो आपको ज्यादा परेशान करते हैं। ये तो चलो ये केस है। छोटी छोटी चीजें भी कई बार स्कूल के बच्चे कहते हैं हम ड्रिंक नहीं करते या हम स्मोक नहीं करते, तो भी हमें परेशान करते हैं, तो भी कहते हैं आप ओल्ड फैशन्ड हैं, कूल नहीं है, ऑर्थोडॉक्स हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो गलत नहीं होना चाहिए, वो चीज राइट होनी चाहिए। और हम अपने को समझाएं कि सब उसको एक्सेप्ट करेंगे वो जरूरी नहीं है, उससे अपने को परे ले जाए। वो जो डिजीज है कि सबको प्लीज करना है, सबको खुश करना है, अगर आप एक बार उससे ऊपर उठ गए, और उसके लिए अपनी सेल्फ वर्थ बढ़ाने की जरूरत है।
3: लेकिन ऐसे केस में क्या होता है, क्योंकि आप छोटे एज से ही ये लोगों से सुनते आ रहे हैं, आपको अच्छा फील नहीं कराया जाता, तो आपके अंदर वो सहन शक्ति बिल्ड नहीं होती, क्योंकि छोटी उम्र से ही आप ये फेस करते आ रहे हैं, क्योंकि आपके हैबिट्स थोड़े अलग होंगे, धीरे धीरे आप बड़े होते जाते हैं, आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस टाइप बन जाती है। उस समय अपने आप को ये कहना कि बाकी लोग क्या मेरे बारे में कहते हैं उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, गेट्स अ लिटिल डिफिकल्ट।
4: छोटी उम्र में अगर आप हर्ट हुए तो समझ में आता है, क्योंकि आपको इतनी समझ नहीं थी। लेकिन बड़ी उम्र में तो आप अपने को चेंज कर सकते हैं ना। कितना समय तक हम विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे? ठीक है, एक समय था कि मुझे भी समझ नहीं थी कि उसके साथ कैसे डील करना है।
3: सही बात।
4: आज मैं मैच्योर हूँ और मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, इसमें कुछ गलत नहीं है। मैं ऐसी हूँ और इसमें कुछ गलत नहीं है। तो आज आप अपने से कैसे कॉन्वर्सेशन करते हैं, आप कंपनी किस प्रकार की रखते हैं, आप अपने को कैसे एजुकेट करते हैं, किस प्रकार का लिटरेचर कंज्यूम करते हैं, आप चाहे तो आज अपने को उससे बाहर निकाल सकते हैं। तो इसलिए आज आप विक्टिम प्ले न करके, जैसे वो कहते सर्वाइवर, तो आप चाहे तो उससे बाहर आ सकते हैं, औरों को भी हेल्प कर सकते हैं।
3: सही बात।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Itchy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: जब घर में ओपिनियंस अलग होने लगे और बात डिसएग्रीमेंट से लड़ाई तक पहुंच जाए तो सिचुएशन को शांति से कैसे हैंडल करें, आइए जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, कई बार क्या होता है, मैं कई घरों में देखता हूँ कि पॉलिटिकल व्यू को लेकर ना बहुत बार वाद विवाद हो जाता है, और बात यहाँ तक भी पहुंच जाती है कि अगर मेरे पॉलिटिकल व्यू से आप सहमत नहीं है तो दो दो तीन तीन दिन तक बात ही नहीं हो रही है। तो ऐसे केस में इस सिचुएशन को कैसे संभालें?
4: ये एक्चुअली ईगो है क्लियरली, क्योंकि कोई भी व्यू होना गलत बात नहीं है।
3: सही बात है,
4: लेकिन उस व्यू के साथ जब हम अटैच हो जाते हैं और अगर सामने वाला उसके साथ अग्री नहीं करता तो गुस्सा आता है जो उनके साथ हो रहा है। और अगर आप बार बार उनके साथ अग्री करते रहें तो भी उनको आदत पड़ जाती है इस चीज की।
3: सही बात है,
4: क्योंकि कई बार पेरेंट्स को फिर डर लगता है कि अगर अग्री नहीं किया तो फिर
3: वो और बुरा मान जाएंगे।
4: तो मैं समझती हूँ कि ये उनको समझाने की कोशिश करनी चाहिए, बाकी आपको अपने व्यूज के ऊपर फर्म रहना चाहिए। अगर हमें कोई चीज नहीं ठीक लगती और फिर भी हम उसके साथ अग्री करते हैं तो हम उस आत्मा को और कमजोर बनाते हैं।
3: हाँ, ये बहुत जरूरी है समझना। हमें अक्सर हम आई थिंक सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए ऐसा करते हैं,
4: हम सोचते हैं कि किसी तरह बात टल जाए।
3: सही बात,
4: जैसे छोटा सा एग्जांपल है, वो बच्चा होता है ना, उसको अपनी चीज मनवानी होती है तो पहले वो रोने लगता है, चाहे वो एक चिप्स का पैकेट ही है। आपको देना है तो दे दें।
3: सही बात है,
4: और अगर नहीं देना है तो नहीं दें। पर अगर वो रोता है और अगर आप उसकी डिमांड फुलफिल कर देते हैं तो उसको समझ में आ जाता है कि कोई भी डिमांड को अगर फुलफिल कराना है
3: तो रोने लगो,
4: तो थोड़ा सा रो, थोड़ा सा सड़क पर लेट जाओ, थोड़ा सा चीखो चिल्लाओ।
3: बड़े इंसान को पता है मैं गुस्सा करूंगा तो ये मान जाएंगे।
4: ये शुरुआत एक्चुअली छोटे से ही होती है,
3: बहुत अच्छी बात।
4: और फिर धीरे धीरे आप उस चीज में कब आप वैसे बन जाते हैं आपको भी नहीं पता, फिर आपको लगता है मैं चीखूंगा चिल्लाऊंगा थोड़ा हल्ला मचाऊंगा तो वो चीज हो जाएगा।
3: तो सिस्टर, आपने बहुत कमाल की बात कही, क्योंकि मेरी बेटी मुझे एक किताब के बारे में बता रही थी, उसका नाम है नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन। मार्शल रोजनबर्ग ने इसके बारे में लिखा है, जहाँ पे वो यही कहते हैं कि अग्री करना जरूरी नहीं है, लेकिन एक बार आप समझ जाएं उसके पीछे ह्यूमन इमोशन क्या है, शायद आप उसको बेहतर हैंडल कर पाएंगे। तो बहुत कमाल की आपने बात कही।
4: ह्यूमन इमोशन पीछे यहाँ पर यही है कि हर व्यक्ति को एक्सेप्टेंस चाहिए। हम व्यक्ति को एक्सेप्टेंस दे दें, लेकिन अगर आप उसका व्यू आपको ठीक नहीं लगता तो उसके साथ अग्री करने की जरूरत नहीं है।
3: सही बात है।
4: तो आप बहुत कामली कह सकते हैं कि अगर आपका ये व्यू है आई कैन अंडरस्टैंड, मे बी आपका कोई पर्सपेक्टिव है, उसका कोई कारण होगा, लेकिन फिर भी इसमें फर्म रहना चाहिए कि नहीं, आई डोंट अग्री विद दैट। क्योंकि अगर आप हर बार अग्री करते जाएंगे तो वो भी फिर उस चीज की भी उनको आदत पड़ जाती है।
3: वेरी नाइस।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy, it's hot.
1: Healthy mind के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते. Till then, सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 only on मिर्ची, it's hot.

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या बार बार नेगेटिव सोचना उस फियर को रियलिटी जैसा महसूस करवा सकता है? आइए इसे समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, ऐसा कई बार होता है कि बहुत ओवरथिंक करता है दिमाग, और ओवरथिंक करते करते क्या है कि कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि ये जो मैं सोच रहा हूँ वो दरअसल सच भी हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या करें?
4: संकल्प से सिद्धि तो होती है ना। थॉट्स जो है वो रियलिटी में बदल जाती है, क्योंकि आप उतना अटेंशन दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, उस डायरेक्शन में ग्रेविटेट करते जा रहे हैं, तो वो सिद्ध हो जाता है
3: जी।
4: लेकिन ओवरथिंक तो आपके हाथ में है ना।
3: सही।
4: आप किसी चीज के बारे में ओवरथिंक कर रहे हैं का मतलब है आप उस चीज के बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हैं।
3: सही।
4: और सिर्फ सोच नहीं रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं। ओवरथिंकिंग माना जब भी ज्यादा थॉट्स होते हैं तो वो पॉजिटिव नहीं हो सकते। ज्यादा थॉट्स की हमेशा जो क्वालिटी होती है वो नेगेटिव होती है। सो एक्चुअली में ये थोड़ा सा अपने पर अवेयरनेस की जरूरत है। कोई भी बात है उस पर सोचना तो पड़ता है, लेकिन कितना सोचना है, क्या सोचना है, वो हमारे हाथ में है। आप प्रॉब्लम के बारे में सोचने के बजाय सोल्यूशन के बारे में सोचें, एक चीज, और व्यक्ति के बारे में सोचने के बजाय आपका रोल क्या होना चाहिए वो सोचना चाहिए।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या अपनी कंपनी में खुश रहना लोनलीनेस नहीं बल्कि इनर पीस की निशानी हो सकती है? आइए समझे।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: कई बार मैं बाथरूम में अपना इंटरव्यू ले रहा होता हूँ, मैं राह चलते गाना गा रहा होता हूँ, मुझे किसी और की जरूरत नहीं पड़ती टू कीप माई सेल्फ ऑक्यूपाइड। मैं अपने आप से बहुत सारी बातें करता हूँ, और ये जितने क्रिएटिव लोग हैं उनसे मैं बात करता हूँ, ऐसा होता है। तो हम ओवरथिंक नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी दुनिया को रचा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे अवार्ड मिल रहा है, मैं एक एक्सेप्टेंस स्पीच दे रहा हूँ, उस स्पीच में मैं क्या बोलूँगा, किसको एड्रेस करना है, क्या नहीं बोलना है, ये सारी चीजें हम सोच रहे होते हैं, कल्पनाएं हैं हमारी। ये भी ओवरथिंक के कैटेगरी में आता है?
4: नहीं, ओवरथिंकिंग के कैटेगरी में वो आता है जो आपको अनकंफर्टेबल फील कराता है, जो आपके अंदर में नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है, चाहे वो फियर है, वरी है, या पेन है, हर्ट है। तो ओवरथिंकिंग इज बेसिकली थिंकिंग नेगेटिव। As long as you're thinking right
3: and you're feeling happy about it, तब ठीक है।
4: आप comfortable हैं, क्योंकि वो तो जरूरी भी तो है। Ordinary thinking भी जरूरी है, positive thinking भी जरूरी है। अगर आपकी कोई speech है तो उसके बारे में prepare करना
3: वो ठीक है,
4: जरूरी है, ठीक भी नहीं है, जरूरी है कि आप मिस्टेक नहीं करें। तो आप उसको इमेजिनेशन का नाम देना चाहें या प्रिपरेशन का नाम देना चाहें, एक्चुअली हर बार वो इमेजिनेशन नहीं है। आप मेंटल लेवल पर जो प्रिपेयर करते हैं, फिर वो वर्ड के लेवल पर आता है, फिर वो एक्शन के लेवल पर आता है, तो वो तो एक अच्छी बात
3: है। कई बार लोग बोलते हैं ना, या ख्याली फैलाव बना रहे हो, तुमको अवार्ड अवार्ड को मिल नहीं रहा है, तुम अपने आप से ही बात कर रहे हो, तो वैसे केस में
4: देखो दो चीजें, एक है कि कोई चीज होने वाली है और आप उसका प्रिपेयर कर रहे हैं,
3: वो अलग।
4: दूसरा चीज है कि आप कुछ चाहते हैं, अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन उसके बारे में भी अगर आप सोच रहे हैं
3: वो भी ठीक है,
4: वो भी ठीक है, आप सीड सो कर रहे हैं।
3: ऑब्सेस नहीं होना है,
4: ऑब्सेस भी नहीं होना है, और इमेजिनेशन एक अलग चीज होती है, मतलब जिसको आप ख्याली पुलाव कह रहे हैं कि वो है ही नहीं, वो चीज आप ऐसे ही उसके बारे में सोचे जा रहे हैं, पर कोई आपका एम है, अभी हुआ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज प्रिपेयर कर रही हूँ कि 4 साल के बाद ओलंपिक्स के अंदर हम खेलेंगे और मुझे ये मेडल जीतना है, और
3: आप तो affirmation।

0: हाँ वो भी एक प्रकार के प्रिपरेशन है. अब उसको आप ख्याली पुलाव नहीं कह सकते, दैट इज समथिंग दैट यू आर एमिंग फॉर. तो आप उसको एम कर रहे हैं, चाहे आप उसको ड्रीम बोले, एम बोले, गोल बोले, आप उसको बार बार इमेजिन कर रहे हैं, अपने को प्रिपेयर कर रहे हैं, नॉट जस्ट एट द लेवल ऑफ माइंड, फिजिकली भी.
1: यू आर लिसनिंग टू 103.3 एफएम एचडी2 डब्ल्यूपीआरबी प्रिंसटन न्यू जर्सी एंड 92.7 W224 CW फ्रैंकलिन पार्क न्यू जर्सी रेडियो.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: सोने के वक्त बार बार आने वाले थॉट्स को काम करके माइंड को रेस्ट कैसे दे, आइए जाने।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, एक बात आप हमेशा कहती हैं कि ज्यादातर जब इंसान सोचता है, ओवरथिंक करता है, वो नेगेटिव होते हैं ज्यादा थॉट्स, कई बार आप कहती हैं। मैंने पर्सनली ये खुद देखा है कि मुझे नींद बहुत जल्दी आती है, लेकिन जब मुझे नींद नहीं आती ना, तो आजकल मैं अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने लगा हूँ कि नींद क्यों नहीं आ रहा, क्या चल रहा है दिमाग में, और मैं देखता हूँ नेगेटिव थॉट्स नहीं है लेकिन रैंडम थॉट्स है, कुछ काम के बारे में है, कुछ ऐसा चीज़ है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो नेगेटिव नहीं है बट वो चल रहा है दिमाग में। तो मेरा जो थॉट प्रोसेस है, ओवर थिंकिंग है, थिंकिंग है, जो भी है, वो नेगेटिव दिशा में नहीं लेकिन है फिर भी, इसको कैसे हैंडल करें?
4: अगर वो नेगेटिव नहीं है और अगर चल रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इस समय आपको उसके बारे में नहीं सोचना।
3: हाँ, मुझे इस वक्त सोना है।
4: इस समय आपको सोना है या आपको अपने माइंड को कहीं और लेकर के जाना है, तो वो भी मन, अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी कमजोर मन के निशान।
3: जी,
4: शक्तिशाली मन का मतलब होता है आप अपने मन को जहाँ लगाना चाहें
3: वहीं लग जाए,
4: जितना समय के लिए लगाना चाहें
3: और
4: जो सोचना चाहें वो आपके कंट्रोल पे।
3: तो ऐसे सिचुएशन में करें क्या, हो रहा है ऐसा,
4: तो उस समय पर आपको अपने को समझाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आप नहीं कर पा रहे हैं स्लो डाउन, तो आप दिशा बदल दे। इसलिए कहते हैं कि सोने से पहले माइंड बहुत चीजों को प्रोसेस कर रहा है, तो आप कुछ गाइडेड मेडिटेशन का सहारा लें, कोई जर्नलिंग का सहारा लें, आप अपने माइंड को डाइवर्ट करते हैं कि उसकी दिशा चेंज हो, जो आपको सोचना है। मेबी इट्स द एंड ऑफ द डे, तो आप अपनी चेकिंग करना चाहते हैं कि आज मेरे से कोई कुछ गलत तो नहीं हुआ, आप कुछ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या आप कोई गाइडेड कॉमेंट्री प्ले करके केवल अपने माइंड को स्लो डाउन करना चाहते हैं, तो आप कुछ ऐसा करें विच इज गोइंग टू टेक यू टूवर्ड्स योर स्लीप।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
2: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
1: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन.
3: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
4: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2.
5: नो
6: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब. इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय ASE सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
7: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ. जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग. बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे.
8: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
9: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी.
10: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. It's a journey. Chalo is journey pe with Mirchi Recharge Mornings. Subah 6 se 8. Only on Mirchi, it's hot.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: क्या पास्ट को पकड़कर रखना गिल्ट को बढ़ाता है या हमारे अंदर कोई अनरिजॉल्व्ड इमोशन उसे जाने नहीं देता, आइए समझे।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, अपनी दुनिया में खोए रहना ना सबको बहुत पसंद है। हाल फिलहाल में एक दोस्त से मिला मैं, और वो 51 साल का हो गया है। वो कह रहा है कि यार मेरे को ना यार अपनी प्रेमिका कॉलेज वाली बहुत याद आती है, और मैं बहुत मिस करता हूँ यार उसको। उससे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है मुझे, लेकिन वो जो बात थी ना यार, वो बात बहुत मिस कर रहा हूँ मैं। और कभी कभी गिल्ट भी होता उसे, तो ऐसे में उस एहसास से वो बाहर कैसे निकले?
4: कभी कभी मुझे लगता है कि जिस चीज को हम भुला नहीं पाते हैं, वो हमारा वो वर्जन होता है जो हमने एक्सपीरियंस किया होता है जिस समय हमें किसी से प्यार होता है।
3: हाँ, सही बात है।
4: हमने कुछ एक्सपीरियंस किया होता है उस समय, चाहे वो फ्रीडम होता है, अपना बेस्ट वर्जन होता है, हम उस समय गिविंग के मोड पर होते हैं, हम कंप्लीट ट्रस्ट कर रहे होते हैं, हम प्रेजेंट में होते हैं, लाइफ को इतना पकड़ा नहीं होता, फ्लो कर रहे होते हैं, तो वो जो मेरा वर्जन होता है ना, उसको हम मिस कर रहे होते हैं।
3: सही बात।
4: हम उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो एक्चुअली वो व्यक्ति नहीं, उस व्यक्ति ने आपके एक वर्जन को ट्रिगर किया है। आप चाहें तो उसको वापस एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्योंकि वो आप ही हैं। वो केवल एक ट्रिगर था, स्टिमुलेंट था, एक चीज वो। दूसरा, उन्होंने गिल्ट की बात की है। गिल्ट तब होती है अगर हमने कुछ गलत किया है। अगर हमने कुछ गलत किया है, आपको लगता है, रियलाइज होता है, तो अगर पॉसिबल है तो अपॉलोजी मांग लेनी चाहिए। जब भी हमें रियलाइज हो, अगर जब हम ये नहीं पता होता कि सामने वाला आपको माफ करेगा कि नहीं,
3: लेकिन आपके हाथ में जो वो तो कर सकते हैं,
4: आपके हाथ में जो है, क्योंकि गलत है तो हम बेस्ट क्या कर सकते हैं, हम्बल होकर के ह्यूमिलिटी से कम अपनी गलती को रियलाइज करें, सामने वाले से अपॉलोजी मांगे, अगर कुछ बेहतर कर सकते हैं, कुछ ठीक कर सकते हैं तो करें, और कम से कम वो गलती जीवन में दोबारा नहीं करें।
3: यादों में रहना बहुत अच्छा लगता है सिस्टर, और नॉस्टैल्जिया में रहना सबको पसंद है, लेकिन फिल्मों के राइटर हैं हुसैन दलाल उनका नाम है, उन्होंने बहुत कमाल की बात एक बार कही थी कि कहीं पे जाने के लिए कहीं और से निकलना बहुत जरूरी है, और ये इसके लिए भी बहुत फिट बैठता है।
4: वैसे भी देखो, ओनली दिस मोमेंट इज रियल। हम में से कोई भी पास्ट में जा नहीं सकता, कहीं बार फ्यूचर की बहुत वरी करते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हमारा 80% टाइम या तो पास्ट में रहता है या फ्यूचर में, 80%
3: प्रेजेंट में रहता है।
4: आप कभी कोशिश करके देखें, किसी के साथ बैठे हैं आप, एक बार एक्सपेरिमेंट करना
3: हमारे जमाने में,
4: और
3: तो
4: कहना हम 30 मिनट्स के लिए पास्ट की बात नहीं करेंगे और फ्यूचर की बात नहीं करेंगे,
3: तो बात क्या करेंगे?
4: एग्जैक्टली
3: सही बात है।
4: इतनी वो आदत हो जाती है, पर आपको एक मिलेंगे जो हमेशा प्रेजेंट में रहते हैं, वो है बच्चे।
3: हाँ बिल्कुल,
4: जितने छोटे वो इसी मोमेंट को एंजॉय करते हैं, अभी अभी जिससे लड़े होंगे,
3: हाँ उसी से बड़े प्यार से बात करेंगे,
4: क्योंकि उनको वो नहीं रहता, वो उसको होल्ड ऑन नहीं करते हैं, और इसीलिए इनोसेंट होते हैं, प्योर होते हैं, और उनकी उस एनर्जी से हम भी अपने पास्ट और फ्यूचर को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
2: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
3: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155.
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
5: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
5: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Islin.
6: द मॉर्गेज इंडस्ट्री हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स, पर हमारी ऑनेस्ट एडवाइस आज भी वही है.
7: जेसन एंड समीर आर ऑफिशियली रीलॉन्चिंग SD कैपिटल फंडिंग विद अ रिन्यूड फोकस ऑन यू.
6: बाइंग अ होम, आवर रेट सेवर विल बीट योर लॉक्ड रेट.
7: ऑलरेडी अ होम ओनर, ड्रॉप योर मंथली पेमेंट्स विद आवर फ्री रेट अलर्ट सिस्टम. SD कैपिटल फंडिंग, सर्विस जिस पर सब करे भरोसा.
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
4: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
5: to aaiye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses, aur grooms ke liye stylish sherwanis.
4: Shaadi shopping ka complete destination, fashion queen.
5: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Islin.
10: It's 7:30 AM. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर सरफराज हैं, कानपुर से लिखते हैं, क्या हर बार हाँ कहना अच्छी बात है या कभी ना कहना भी जरूरी होता है?
3: नहीं, हर बार हाँ कहना जरूरी नहीं होता है, कभी कभी ना कहना भी जरूरी होता है, लेकिन ना कहने का तरीका ठीक होना चाहिए।
2: हाँ, वो गुस्से में नहीं होना चाहिए।
3: हाँ, मना सभ्यता से करें, डिग्निटी से करें। ना तो कई बार कहनी पड़ती है। पहली बात तो अगर आपको लगता है कि वो चीज राइट नहीं है तो भी आपको ना कहना पड़ेगा। दूसरा हो सकता है कि अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है, मैं आपको हाँ कर दूं, किसी चीज के लिए कमिट कर दूं और फिर ना करूं,
2: हाँ।
3: चाहे वो एक टीम के अंदर ही कुछ काम हो, मैं कहूं नहीं नहीं हाँ जी करना था पर मैं करूं नहीं उस चीज को, तो भी वो चीज राइट नहीं है कमिट करके करना। और कभी ऐसा हो सकता है मैं कर भी सकती हूँ लेकिन आज मेरे पास पॉसिबल नहीं है, मैं ऑलरेडी इतनी कमिटमेंट्स ले चुकी हूँ, तो भी मुझे आपको ना कहना पड़ेगा। सो देयर बी मेनी मेनी सिनेरियोस जहाँ पर ना कहना पड़ेगा, लेकिन रिस्पेक्टफुली कहें,
2: बहुत बढ़िया,
3: डिग्निटी के साथ कहें, सभ्यता के साथ कहें, कई जगह पर ना कहना पड़ता है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
4: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
6: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
7: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
6: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
8: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
9: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
8: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
10: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
11: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
10: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
11: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इजलिन।
12: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है। परी लिखती हैं, हम अक्सर दूसरों की बात मान लेते हैं लेकिन अपने मन की आवाज को इग्नोर क्यों करते हैं?
3: नहीं करना चाहिए, दोनों के प्रति ध्यान देना चाहिए। हमें वो करना है जो सही है। अपना मन भी कई बार धोखा देता है। ऐसा नहीं है कि हमारा मन हर बार जो कहता है वो राइट होता है। और ऐसा भी नहीं है कि जो दूसरे हर बार कहते हैं वो हमेशा राइट होते हैं। तो कोई मुझे मेरे मन की माननी है या आपके मन की माननी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है जो राइट है, जो सही है, वो करना है। तो चाहे वो आपका मन है या दूसरे का मन है, पर वो परख शक्ति होनी चाहिए कि राइट क्या है।
2: वो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो डेवलप करना बड़ा मुश्किल होता है।
3: विजडम अनुभव से भी आता है, स्क्रिप्चर से भी आता है, अच्छी बातें सुनने पढ़ने से भी आता है। और व्हेन यू नो बेटर यू डू बेटर। जब आपको नहीं पता था तो इग्नोरेंस भी कोई क्राइम नहीं है। लेकिन फिर भी अपने विजडम को डेवलप करने की मेहनत करनी चाहिए कि आपको ये क्लैरिटी हो कि राइट क्या है और आप राइट कर सकें।
2: स्टीव जॉब्स ने बहुत कमाल की बात कही थी, उसे कई लोग जरूरी नहीं मानते हैं, अग्री करते हैं, कि डोंट लेट द नॉइज ऑफ अदर्स ओपिनियन ड्राउन आउट योर इनर वॉइस। वो इसलिए कह पाते थे ये बात क्योंकि वो बिलीव करते थे कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है।
3: नहीं, अगर आपको अपने इनर वॉइस पर कन्विक्शन है
2: तब जरूर करें,
3: तब जरूर करना चाहिए। देखो, कई बार हमें क्लैरिटी होती है कि ये राइट है, पर हम दूसरों के ओपिनियंस में हमें अपने पर डाउट करने लग जाते हैं, सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं। एक है ये चीज की क्लैरिटी नहीं है कि मेरा मन जो कह रहा है वो सही है। जैसे एक बच्चा होता है ना, उसका मन करता है कि मैं मुझे ये करना है। पेरेंट्स समझदार होते हैं, वो कहते हैं नहीं ये राइट नहीं है, ये आपके भले के लिए नहीं है। तो वो एक क्लैरिटी अलग चीज है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। एक एक कन्विक्शन है अपनी बात पर, अपने प्रिंसिपल पर आपको फेथ है। लेकिन आपके अंदर सेल्फ डाउट आ जाता है जस्ट बिकॉज पीपल डोंट अग्री विथ यू या पीपल डोंट एक्सेप्ट यू।
2: और ये बहुत बात जरूरी है क्योंकि जब तक वो कन्विक्शन नहीं आता आप कुछ आगे नहीं कर पाएंगे। और ये बहुत बात जरूरी है क्योंकि जब तक वो कन्विक्शन नहीं आता आप कुछ आगे नहीं कर पाएंगे।

न्यूज़ में नाम आता हर वीक, फिर भी जहाँ से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: हेलो मेरे दोस्त, मैं हूँ तुम्हारी होस्ट, सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा नाम है प्रिसिला और तुम्हारी मॉर्निंग का ये रिमाइंडर है कि अडल्टिंग इज बेसिकली जस्ट सेइंग हाँ हाँ आई एम ओके एंड कैरिंग ऑन विद लाइफ, जो चाहे प्रॉब्लम्स चल रही हो। वैसे देसी मॉर्निंग्स ना, उनकी एक अलग ही वाइब होती है। अलार्म बजता है, हम स्नूज करते रहते हैं, फिर मम्मी की आवाज आती है और हम उठ के खड़े हो जाते हैं। ये सब अगर तुम मिस करते हो तो तुम बिल्कुल सही जगह पर हो, क्योंकि हम थोड़ी सी बॉलीवुड की गॉसिप करेंगे, थोड़ा सा देसी नॉस्टैल्जिया, अराउंड द वर्ल्ड की अपडेट्स एंड ऑफ कोर्स साथ साथ में होने वाली है मेरी बकबक एंड वो मिर्चीदार बैंगर्स जो तुम्हारे लिए प्ले करने वाली हूँ मैं आज के मिर्ची मॉर्निंग्स में। मेरा नाम है प्रिसिला एंड कम एंड से हाय ऑन इंस्टाग्राम। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। और एक कॉन्टेस्ट भी चल रहा है राखी के उपलक्ष में, जिसके बारे में थोड़ी सी देर में बताऊंगी तुम्हें। तब तक के लिए मिर्ची दर बैंगर सुनो और सुनते रहो मिर्ची मॉर्निंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
3: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
4: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
5: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
6: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
7: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
8: भाई बहन का रिश्ता होता है priceless. तो राखी की कोई कीमत क्यों हो?
9: Celebrate Rakhi with Rajbhog. Rajbhog wishes you a very happy Raksha Bandhan. Orders on Rajbhog.com or visit your local grocery store.
10: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ. जेसन एंड समीर आर बैक एट एसडी कैपिटल फंडिंग. बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे.
11: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
12: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
11: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
12: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन.
13: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
14: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
13: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
15: Tera kya hoga, Kalia?
16: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
15: Ab mirchi kha.
17: Radio Mirchi, it's hot.
18: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Har drive banegi yaadgar.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड दिस इज व्हाट हैपेंड ऑन दिस डे। यानी कि हम टाइम ट्रैवलिंग करके पता करेंगे हिस्ट्री में आज का दिन क्यों इम्पोर्टेंट था। 1619 में द फर्स्ट रिकॉर्डेड ग्रुप ऑफ एनस्लेव्ड अफ्रीकन्स अराइव्ड इन जेम्सटाउन, वर्जीनिया, अ डीपली ट्रेजिक टर्निंग पॉइंट इन अमेरिकन हिस्ट्री। 1794 में द बैटल ऑफ फॉलन टिम्बर्स टुक प्लेस इन ओहायो, एंडिंग मेजर आर्म्ड नेटिव अमेरिकन रेजिस्टेंस इन द नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी। फास्ट फॉरवर्ड टू 1920, द एनएफएल वॉज फाउंडेड बिकॉज अपेरेंटली अमेरिका लुक्ड एट स्पोर्ट्स एंड सेड हाँ यार एक और लीग बना देते हैं। 1960 में सेनेगल बिकेम फुली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द माली फेडरेशन। 1968 में सोवियत एंड वॉरसॉ पैक ट्रूप्स इन्वेडेड चेकस Slovakia, crushing the Prague Spring reforms, a sobering chapter of Cold War history. 1975 mein NASA launched Viking 1, which eventually became the first spacecraft to successfully land on Mars and send images back. And today is also World Mosquito Day, marking Ronald Ross's discovery ki female mosquitoes hi transmit kar paate hai malaria. So yes, machharon ka bhi din aata hai, samjhe? And aaj India mein observe kiya jata hai Sadbhavna Divas, yani ki Harmony Day. Aur harmoniously aage badhte, because Nanak Foods presents Mirchi Karega Bandhan Pura, bringing sweetness to your life. In association with Virani Jewelers on Oak Tree Road, festive special offers chal rahe hai wahan par, 22 carat gold and diamond jewelry par. Visit karo viranijewelers.com right now. तुम्हें अपने क्यूटेस्ट, क्रिंजिएस्ट, प्रिटीएस्ट मोमेंट भेजने हैं अपने सिबलिंग्स के साथ पिक्चर के फॉर्म में। रजिस्टर करने के लिए लिखो राखी, व्हाट्सएप करो 9033647244 पर अभी के अभी अपने पिक्चर्स के साथ, या फिर तुम मुझे डीएम कर सकते हो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड यू कुड विन हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ। मेरा नाम है प्रिसिला, सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: राखी यादों की कारवां है,
1: जहां मीठी करारी नमकीन कई यादें हैं,
0: यही यादें राखी को पूरा करती हैं।
2: अपने सिबलिंग्स के साथ मीठी तीखी मेमोरी शेयर कीजिए एंड गेट अ चांस टू विन शानदार गिफ्ट हैम्पर्स।
3: क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
4: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
3: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव special offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
4: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Izzylin.
5: Did you see my new couch? We picked it up from Incanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan, Italia.
6: Ye Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra saab, so how was Italy?
7: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Costantini and much more.
6: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
8: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodefurniture.com and have it delivered anywhere in the US.
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
11: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
12: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
13: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
12: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
14: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
12: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
15: एक ही होता है.
12: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
3: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
4: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, NA, Concord, California.
5: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
5: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
7: अब मिर्ची खा।
9: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, मैं हूं तुम्हारी होस्ट, मेरा नाम है प्रिसिला एंड यू आर लिस्टिंग टू मिर्ची मॉर्निंग्स। और आप सुनने वाले हो वेदर अपडेट। राइट नाउ वी आर सिटिंग एट 68 डिग्रीज फारेनहाइट, स्काइज आर क्लियर एंड इट फील्स लाइक 69 डिग्रीज फारेनहाइट। लेकिन डोंट गेट टू कंफर्टेबल, अराउंड नून होने वाला है थोड़ा सा पार्टली क्लाउडी माहौल एंड 4 बजे शायद रेन एक्सपेक्टेड है। टुडेज हाई इज 82 डिग्रीज फारेनहाइट विद द फील्स लाइक टेम्परेचर पोटेंशियली रीचिंग टू 86 डिग्रीज फारेनहाइट। यू नो ह्यूमिडिटी, सनशाइन और विंड की वजह से। एंड हियर इज द इम्पोर्टेंट बिट, देयर इज अ फ्लड वॉच इन इफेक्ट, सो इफ यू आर हेडिंग अप फारेनहाइट। यू नो ह्यूमिडिटी, सनशाइन और विंड की वजह से। एंड हियर इज द इम्पोर्टेंट बिट, देयर इज अ फ्लड वॉच इन इफेक्ट, सो इफ यू आर हेडिंग आउट टू वर्क लेटर

और अगर जरूरत ना हो तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट्स गोना रेन हेवीली एंड साथ साथ में लेयर के प्लेयर बनकर बाहर जाओ एंड मिर्ची सुनते रहो. एंड व्हाइल यू आर लिसनिंग टू मिर्ची लेट मी क्विकली रिमाइंड यू कि नानक फूड्स प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा इज ऑन. डू यू हैव दैट वन सिबलिंग पिक्चर विथ यू दैट इंस्टेंटली मेक्स यू गो अरे यार हम कितने क्यूट हैं. ऐसे पिक्चर्स हमको भेजो अभी के अभी एंड यू कुड विन सम अमेजिंग हैम्पर्स कैटसी नानक फूड्स ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ. फटाफट से टाइप करो राखी एंड सेंड इट टू 9033 मिर्ची दैट्स 9033647244 अलॉन्ग विथ योर क्यूटेस्ट बेस्टेस्ट सिबलिंग मोमेंट्स के पिक्चर्स. एंड तो मुझे डीएम भी कर सकते हो मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स दैट इज MIRCHIPRIS. दिस इज इन एसोसिएशन विथ वीरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड जहां पर फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स चल रहे हैं 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी पर. विजिट करो वीरानीज्वेलर्स.com. एंड अभी मिर्चीदार बैंगर्स का टाइम है ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स विथ मी प्रिसिला. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, good morning. Priscilla here and welcome back to Mirchi Mornings. Jahan par ab hum sunne wale hain Mirchi Hour ka 3. सबसे पहले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के अगेंस्ट व्हाट ही कॉल्ड द मोस्ट क्रशिंग इकोनॉमिक ऑपरेशन अनाउंस किया है और ईरान को फाइनेंशियली या बिजनेस सपोर्ट देने वाले कंट्रीज और एंटिटीज को सिवियर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस की वार्निंग दी है. दिस इज अ डेवलपिंग इंटरनेशनल स्टोरी, सो वील कीप यू पोस्टेड. एंड नंबर टू पर इंडिया के उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रवि कुमार दिवाकर के कोर्ट से अराउंड 100 पेंडिंग क्रिमिनल केस दूसरे जज को ट्रांसफर किए गए हैं. रिपोर्ट्स के हिसाब से उन्होंने पिछले 4 महीनों में 10 केसेस में 22 डेथ सेंटेंसेस दिए हैं. लॉयर्स और लिटिगेंट्स की कंसर्न्स के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से केसेस रीअसाइन हुए हैं. एंड लास्टली स्पोर्ट्स से इंग्लैंड के ओली रॉबिन्सन एंड जोश टंग ने पाकिस्तान के अगेंस्ट ऐसा बैक टू बैक बोलिंग मोमेंट क्रिएट किया जो टेस्ट क्रिकेट में पहली बार हुआ है. दोनों ने कंसेक्यूटिव डिलीवरीज पर 5 विकेट होल्स कंप्लीट किए. रॉबिन्सन ने 9th विकेट लिया और नेक्स्ट बॉल पर टंग ने मोहम्मद अब्बास को आउट कर दिया. एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3 फॉर दिस आवर. मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ बने रहो मिर्ची मॉर्निंग्स पर एंड कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची. दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Mirchi. Buscabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieja la burga.
1: Mirchi, burga. Hello.
2: Could I speak to Manish, please?
1: Speaking.
2: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से. ओके मनीष, आई नीड योर फेवर. आपकी मदद की जरूरत पड़ गई थी. मैं यहाँ पे लेक्चर्स देता हूँ स्टूडेंट्स को. मैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन. राइट, कि पहले इंसान एप था. आई बिलीव आपने भी पढ़ा होगा किसी जमाने में. यहाँ पहले इंसान बंदर की शक्ल में था, फिर वो धीरे धीरे धीरे धीरे यू नो एक इंसान बन गया. राइट,
1: बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं?
2: मैं एक बार फिर बताता हूँ, मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ. मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन. राइट, एक मेरा सब्जेक्ट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ. 40-50 स्टूडेंट्स हैं मेरे. इफ यू डोंट माइंड, मैं प्लीज आपसे अगर चाहूँ आप मुझे 2 घंटे दे सकते हैं मेरी क्लास में आके.
1: 2 घंटे करना क्या है, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ.
2: वही तो, ये मेरा एक सब्जेक्ट है जो मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि इंसान बंदर होता था. तो मेरे स्टूडेंट्स इस बात पे यकीन कर नहीं रहे. तो आप अगर क्लास में आ जाएंगे ना स्टूडेंट्स के सामने, तो स्टूडेंट्स के सामने मैं आपको खड़ा कर दूंगा और आपका चेहरा ब्लैकबोर्ड के पास आ जाएगा, तो उनको यकीन आ जाएगा कि हाँ पहले इंसान वाकई में बंदर. आई एम श्योर के सारे यकीन कर जाएंगे कि हाँ पहले इंसान बंदर हुआ करता था. बस इतनी हेल्प चाहिए थी मुझे आपकी. तो कब आ जाएंगे आप मुझे ये बता दीजिए. कल का रख ले. मेरी बात सुनो. आई एम प्रोफेसर. मेरी बात सुनिए यार. हेलो, वैसे दिल्ली कितनी गालियां खाऊं मैं आपको हंसाने के लिए यार, ये नाइंसाफी है.
1: हेलो,
2: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी. मेरी बात सुनिए. मुझे माफ कर दो, थोड़ा ज्यादा हो गया था. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मुझे नंबर दिया था तुम्हारी दोस्त कपिल ने. उसने कहा था कि तुम्हारा मुर्गा बना दे यार. मैं मुर्गा बनाया है, तुम रेडियो मिर्ची पे हो. आपकी इजाजत हो तो मैं हंस लूं यार. मनीष, वो एक्चुअली स्टूडेंट्स को यकीन नहीं आ रहा था कि आदमी पहले बंदर होता था, इसलिए मैंने लगा कि तुम आ जाओगे तो एक बार काम बन जाएगा यार. इंसान पहले बंदर होता था, अब मेरे को यकीन आ गया. मैं बता दूंगा उनको.
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
7: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
6: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन.
8: मैनू नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है, जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे.
9: आई एंजॉय यूजिंग इनएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मामा.
10: अरे मुझे कोई ट्रैक करे, मुझे बहुत अच्छा लगता है. प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा.
7: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है. Zoho One इज एन ऑल इन वन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सुइट, जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं. यस, योर एंटायर बिजनेस. Zoho One इज इजी टू यूज, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है. काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. गेट योर फ्री ट्रायल एट zoho.com/one.
11: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
12: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
13: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
14: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
15: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
16: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
17: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
16: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
18: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
19: to aaiye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses, aur grooms ke liye stylish sherwanis.
18: Shaadi shopping ka complete destination, fashion queen.
19: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Izzelin.
20: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
21: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
20: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में ये है मिर्ची मॉर्निंग्स। और आज की स्टोरी जो है ना, इट्स गिविंग अ वेरी देसी लेसन। क्या है वो लेसन, लेट्स फाइंड आउट। बजट छोटा भी हो सकता है, लेकिन माँ का सपोर्ट अनलिमिटेड अगर मिल जाए ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। चाइना में न्यू लाई नाम की एक फिल्म है, विच इज क्रिएटेड बाय फिल्म मेकर शिन यू मैंग एंड हिज मदर सून ली फान। इट्स गोइंग वायरल। क्यों? पार्टली बिकॉज पीपल कॉल्ड इट वन ऑफ द वर्स्ट चाइनीज फिल्म्स बिकॉज ऑफ इट्स रफ एनिमेशन। लेकिन एक प्लॉट ट्विस्ट है, द फिल्म मेड ऑन ऑलमोस्ट एन अनबिलीवेबली टाइनी बजट विच इज अराउंड $200 हैज रिपोर्टेडली गॉन ऑन टू अर्न अराउंड $3 million। एंड मॉम जो है डिडंट जस्ट चीयर फ्रॉम द साइडलाइंस। सून ली फान टॉट हरसेल्फ 3D एनिमेशन, वॉइस्ड द कैरेक्टर्स एंड सैंग द थीम सॉन्ग, all to help her son's dream come true. So basically, मम्मी ने कहा बेटा तू ड्रीम फॉलो कर, बाकी मैं संभाल लूंगी, जो कि दुनिया की हर मम्मी करना चाहती है, कहती है और कर भी देती है। Honestly यार, forget about 5-star reviews. Sometimes माँ के हाथ का 5-star rating is all you need. And I'm not talking about गाल पे चाटा. I'm talking about a pat on your back. And speaking of something sparkling, Tanishq presents Festival of Diamonds, जहाँ पे तुम्हें 25% off मिल रहा है diamond value पर और making charges पर। साथ साथ में अगर तुम्हारे पास पुराना gold रखा है अपनी मम्मी का, जो कि 18 carat से above है, उसे लेकर जाओ Tanishq पर, 0% deduction पर exchange कराओ। So तुम्हारा jewelry box जो है वो बहुत ज्यादा excited होना चाहिए अभी। Of course Tanishq पर Festival of Diamonds चल रहा है, जहाँ पे terms and conditions applied है, और अभी चल रहा है मिर्ची मॉर्निंग्स मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ। मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: ये गाना था करण अर्जुन का, लेकिन लिखा गया था हर भाई बहन के लिए। लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे।
1: तू ना कभी चेंज नहीं होगा।
2: और तू तो देवी है ना।
3: इस राखी बोल दो दिल की बात, क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
4: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
3: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट विरानी ज्वेलर्स.com।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Oh, Daljeet Dosanjh.
3: Oh, Pari.
2: Pari, aap kya lene aaye ho?
3: Shuddh Desi Ghee.
2: लो पारी, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है।
3: घी टेस्ट के लिए थोड़ा खाते हैं, घी सेहत के लिए खाते हैं। मुझे चाहिए शुद्ध देसी घी, जो घर वाला टेस्ट दे, जो ब्रांड भी हो ना वो ट्रस्टेड हो। वो एक नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा।
2: नानक घी पाजी,
3: नानक घी चाहिए यार। अगर आपको भी चाहिए शुद्ध देसी घी तो कहिए नानक घी चाहिए। सो गुड, सो प्योर, इट्स नानक।
4: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
5: भाई-बहन का रिश्ता होता है priceless. तो राखी की कोई कीमत क्यों हो?
6: Celebrate Rakhi with Rajbhog. Rajbhog wishes you a very happy Raksha Bandhan. Orders on rajbhog.com or visit your local grocery store.
7: It's 9:30 a.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
8: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
8: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
10: द मॉर्गेज इंडस्ट्री हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स, पर हमारी ऑनेस्ट एडवाइस आज भी वही है।
11: जेसन एंड समीर आर ऑफिशियली रीलॉन्चिंग एसडी कैपिटल फंडिंग विद अ रिन्यूड फोकस ऑन यू।
10: बाइंग अ होम, आवर रेट सेवर विल बीट योर लॉक्ड रेट।
11: ऑलरेडी अ होम ओनर, ड्रॉप योर मंथली पेमेंट्स विद आवर फ्री रेट अलर्ट सिस्टम। एसडी कैपिटल फंडिंग, सर्विस जिस पर सब करे भरोसा।
12: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
13: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.

0: Yeah.
1: Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स एंड अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू एवरीवन सेलिब्रेटिंग टुडे। ऑगस्ट 20th इज क्लियरली हैविंग अ सेलिब्रिटी मोमेंट बिकॉज आज के दिन बर्थडे केक तुम शेयर कर रहे हो कुछ बड़े ही बड़े बड़े नामों से। टुडे वी सेलिब्रेट एक्टर एमी एडम्स, एंड्रू गारफील्ड, सिंगर डेमी लोवाटो एंड लेजेंडरी म्यूजिशियन रॉबर्ट प्लांट। प्लस बर्थडे स्क्वाड में वी गॉट एल रोकर, बेन बार्न्स, मीशा कॉलिंस, की ह्यू क्वान एंड फ्रेड डस्ट। तो अगर आज तुम्हारा भी हैप्पी वाला बर्थडे है, जस्ट रिमेम्बर तुम फेमस लोगों के साथ अपना बर्थडे शेयर करते हो, बस उनके पास रेड कार्पेट है और तुम्हारे पास तुम्हारा फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर 47 हैप्पी बर्थडे बेटा वाले मैसेजेस अभी पड़े होंगे। एंड नाउ स्पीकिंग ऑफ फैमिली, मिर्ची करेगा बंधन पूरा इज हियर, ब्रॉट टू यू बाय नानक फूड्स। राखी के इस पावन अवसर पर पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप पर टाइप करो राखी, दैट इज RAKHI। टाइप करने के बाद अपना पूरा नाम टाइप करो और उसे अपने सिबलिंग पिक्चर के साथ भेज दो 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244। एंड यू कैन ऑल्सो डीएम मी, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS, टू डबल योर चांसेस ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द कॉन्टेस्ट एंड यू कुड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद वीरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड विद फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट करो वीरानीज्वेलर्स.com, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। सो अभी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो या राखी के त्योहार की तैयारी कर रहे हो, सेलिब्रेट योर पीपल, शेयर योर मेमोरीज एंड स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची मॉर्निंग्स विद मी प्रिसिला।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
5: फूड
6: यस,
5: शॉपिंग
6: यस,
5: एंटरटेनमेंट
6: डबल यस,
5: और हेल्थ फेयर
6: ऑफ कोर्स, सब कुछ एक ही जगह, इंडो अमेरिकन कम्युनिटी फेयर, सितंबर 12th और 13th, श्री कृष्ण मंदिर मॉर्गनविल।
7: फॉर वेंडर्स एंड इन्फॉर्मेशन विजिट www.krishnatemple.org।
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
10: India ki rang, sur aur swad, sab kuch ek jagah.
8: Experience Janmashtami festival with Krishna Leela, traditional dances, live music, bhajans, delicious food, shopping and kids activities.
10: Sunday, August 23rd, 1 to 6 p.m. New Brunswick Performing Arts Center, located at 9 Livingston Avenue, New Brunswick. Free entry and parking. Our website is www.newbrunswickarts.org. Call Tracy at 908-917-2862.
11: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Her drive banegi yaadgar.
12: Tera kya hoga, Kalia?
13: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
12: Ab... मिर्ची का
14: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: SHG Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, this is Priscilla with you on Mercury Mornings. और अब time है gold and silver का rate update जानने का.
2: Raj Jules wishes everyone happy and healthy morning. Gold trading at $4,400. $4,400 के mark पर वापस gold पहुंच गया है और market aggressively upward trend पर है. इससे पहले gold के prices upward trend पर जाएं, आप आइए 22 carat gold jewelry, 18 carat colorless diamond jewelry, GI certified natural diamond, जो platinum की ring में set हो. Raj Jules की unique financing option, जिसमें आप 0% interest पे, zero down payment के साथ, बिना किसी हिडन फी, बिना किसी इंटरेस्ट के आज गोल्ड का प्राइस लॉक कर सकते हैं. वो खूबसूरत सी ज्वेलरी आज घर ले जा सकते हैं और 9 इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दे सकते हैं बिना किसी हिडन फी के. कैसे? आइए राज ज्वेलर्स के साथ क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें और अप्रूव होने पे आज

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग जी, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. वेलकम टू मिर्ची आवक का 3, जहाँ पर 3 अपडेट्स मिलती है तुम्हें फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. सबसे पहले एक वीडियो ऑनलाइन वायरल हो रहा है, अलेजेडली शोइंग 3 चाइनीज सोल्जर्स फ्लाइंग अराउंड ऑन सिंगल पर्सन जेट पैक्स. नो ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन येट, सो ऑथेंटिसिटी रिमेन्स अनवेरिफाइड. अर्लियर डेमोन्स्ट्रेटर्स हैव शोन जेट पैक लाइक डिवाइसेस दैट कैन फ्लाई फॉर ओनली अ फ्यू मिनट्स. नंबर 2 पर इंडिया हैज रिमूव्ड द एक्सटर्नल सिक्योरिटी पैरामीटर आउटसाइड द पाकिस्तान हाई कमीशन इन न्यू दिल्ली, डेज आफ्टर पाकिस्तान रिमूव्ड सिक्योरिटी बैरिकेड्स आउटसाइड द इंडियन हाई कमीशन in Islamabad. Diplomatic developments continue to unfold, so we'll keep it factual and keep you posted. And lastly, sports se hockey mein India ne Pakistan ko 5-3 se beat kiya hai. 8-goal thriller at the Men's Hockey World Cup 2026 in Amstel, Wien, and India moves into the second round while Pakistan is out of the title race. India's unbeaten run against Pakistan now stands at 20 matches. And that's your Mirchi Hour ke 3. Main ho Priscilla tumhare saath mein. Let me remind you to follow me. Mirchi Pris is my handle name, Instagram and Expert. And WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033 647 244. Stay tuned and stay hot.

0: Mirci.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambana. Burga, burga. La vieja la burga. Mirci, burga.
2: हेलो
3: आकाश
2: जी।
3: आकाश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपने मुर्गा बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था ना?
2: हाँ, बिल्कुल।
3: मुझे बताइए किसका मुर्गा बनाना है?
2: मेरी गर्लफ्रेंड है।
3: ओहो, यही मिली है आपको?
2: जी, बहुत पंगे लेती है।
3: अच्छा आकाश, ये थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है क्योंकि मुर्गा बनाने से पहले हम जो रिक्वेस्ट करते हैं मुर्गे की, उनसे एक फॉर्म फिल करा लेते हैं।
2: ठीक है,
3: मुझे अपना पूरा नाम बता दीजिए।
2: आकाश मल्होत्रा।
3: अच्छा आकाश, मैं थोड़ा सा इसको फॉर्म को पढ़ देता हूँ क्योंकि मुर्गा थोड़ा सा मुश्किल भी होता है बनाना, कभी गुस्सा आ जाता है लोगों को, यू नो। तो इसमें कुछ क्लॉज और रूल्स हैं, वो आप फॉलो करेंगे, इसको अग्री करेंगे तो ही हम मुर्गा बनाएंगे,
2: राइट? बिल्कुल।
3: चलिए, अच्छा इसमें ये है, मैं इसमें आपका नाम लिख देता हूँ, मैं आपको पढ़ देता हूँ। मैं आकाश मल्होत्रा अपने होशो आवाज में अपनी गर्लफ्रेंड पूजा का रेडियो मिर्ची पे मुर्गा बनवा रहा हूँ। अगर कल को पूजा को इस बात पे गुस्सा आ जाता है तो उसका जिम्मेदार आकाश यानी मैं खुद हूँगा, ठीक है?
2: जी, डेफिनेटली।
3: ओके, अगर गुस्सा इतना ज्यादा आ जाता है कि पूजा केस कर देती है मुर्गा बनाने वालों पे, तो उसका जिम्मेदार भी आकाश मल्होत्रा होगा।
2: अच्छा,
3: अगर केस पूजा जीत जाती है और सजा के तौर पे 10 साल की बिना बेल की सजा होती है, तो उसका जिम्मेदार आकाश मल्होत्रा होगा।
2: क्या कह रहे हैं?
3: अगर सजा के तौर पे सजाए काला पानी भेजा जाए तो आकाश मल्होत्रा जाएगा। ये दूसरा
2: क्या सर, मतलब नहीं, मुर्गा बनाने में ऐसा सभी होता है?
3: नहीं नहीं, ये फॉर्मेलिटी है ना सर, ये पूरा करना होता है, ये कंपनी की तरफ से है। ये लास्ट सुन लीजिए, लास्ट में लिखा हुआ है, अगर मुर्गा बनवाने वाले ने शुरू की 2 शर्तें मान ली हैं तो उसको मुर्गा बनवाना ही पड़ेगा जिसका वो चाहता है। तो मैं पूजा को फोन करता हूँ, आप मजे लीजिएगा, है ना?
2: सर देखिए, बात तो सुनिए।
3: हाँ बताइए।
2: फन की बात अलग है, हाँ, वो उसको सीरियसली गुस्सा आ गया। और
3: अरे नहीं, बात तो सुनिए, गुस्सा आपको
2: आज तो प्लीज रहने दीजिए, इसको मेरी बात मान लीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी।
3: चलिए मैं एक शर्त पे रहने दूंगा
2: जी,
3: अगर आप बोलेंगे मेरे साथ कुकड़ों। आकाश तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मैं तुम्हें ऑन एयर डाल दिया है और तुम्हारे मुर्गा बन गया।
2: मेरा बन गया वो कुकड़ों को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
7: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
9: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
10: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
9: Buying a home? Our rate saver will beat your locked rate.
10: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding. Service jis par sab kare bharosa.
11: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
12: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
13: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
14: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
15: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
16: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
15: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
17: Honey, it's 11 p.m., our bedtime. Where are you?
18: I am not going to bed with you ever again.
17: But why? What did I do?
18: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it, it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
17: Oh, honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
18: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
17: Yes, yes, yes. Come soon. Honey!
18: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
17: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
19: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
20: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
21: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में राशि जोन वन में तुम्हारा स्वागत है ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: एरीज यानी कि मेष राशि, बोल्ड आइडियाज का दिन है आज। कुछ अनयूजुअल सोच रहे हो, एक्सप्लोर इट, बस इंपल्स को जीपीएस मत बनने देना। लकी कलर फॉर यू इज इलेक्ट्रिक ब्लू, लकी नंबर इज 14। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, मनी मैटर्स में थोड़ा सा अलर्ट रहो, फाइन प्रिंट देखो, डिटेल्स चेक करो, वॉलेट को सरप्राइज बिल्कुल पसंद नहीं आता है। लकी कलर इज ऑलिव ग्रीन, लकी नंबर इज 6। जेमिनी यानी मिथुन राशि, आज किसी फ्रेंड की हेल्प करने का मन करेगा, लेकिन स्केड्यूल में अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स आ सकते हैं, प्लान बी को रेडी रखना। लकी कलर फॉर यू इज कोरल, लकी नंबर इज 21। कैंसर यानी कर्क राशि, प्रोडक्टिविटी मोड ऑन करो, हेल्थ रूटीन या वर्क प्लेस में कुछ पॉजिटिव इंप्रूवमेंट्स करने का परफेक्ट पुश मिल सकता है। लकी कलर इज पर्ल व्हाइट, लकी नंबर इज 9। लियो यानी कि सिंह राशि, रोमांस के लिए गॉर्जियस डे है, परफेक्शन के पीछे मत भागो यार, ऑथेंटिसिटी इज योर रियल सुपर पावर, बस ड्रामा को थोड़ा सा दूर रखो। लकी कलर इज बर्गंडी, लकी नंबर इज 3। वर्गो यानी कन्या राशि, होम या डेली रूटीन में छोटी मोटी इंटरप्शंस हो सकती है, बट योर कॉन्फिडेंस इज स्ट्रॉन्गर देन क्योर्स, यू गॉट दिस। लकी कलर फॉर यू इज लैवेंडर, लकी नंबर इज 18। एंड दैट्स राशि'स ओन पार्ट वन। बाकी बची 6 साइंस आएंगी थोड़ी सी देर में ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। फॉलो मी, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, That's 9033-647-244. Stay tuned and stay hot.

0: ये गाना था करण अर्जुन का, लेकिन लिखा गया था हर भाई बहन के लिए। लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे।
1: तू ना कभी चेंज नहीं होगा।
2: और तू तो देवी है ना।
3: इस राखी बोल दो दिल की बात, क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
4: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
3: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
8: द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑफर्स वेरियस डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस इन फार्मेसी टेक, मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग, ईकेजी एंड फ्लेबोटमी, मेडिकल असिस्टेंट एंड मेनी मोर इन डिमांड हेल्थ केयर करियर्स।
9: गेट क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड जॉब असिस्टेंस एट द मोस्ट रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सेंटर्स। ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड ऑनलाइन एंड ऑन कैंपस। फॉर एनरोलमेंट कॉल 9088222002 और विजिट aimseducation.edu।
10: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
11: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
10: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
11: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
3: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
3: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
13: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
14: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
15: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
16: Jai Gurudev. अवसर आवीने उभो छा आंगणे, चलो भेगा मळी गणेश जी ना आगमन नी तैयारी करिए। आपणे गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मा जोडायो, जेमा 14 सप्टेम्बर सोमवारे सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना, अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती, अने 20 सप्टेम्बर सांजे 4 वागे विसर्जन। वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर, विस्काटवे ऑन 7323578200। जय गुरुदेव।
17: भाई बहन का रिश्ता होता है प्राइसलेस, तो राखी की कोई कीमत क्यों हो?
18: सेलिब्रेट राखी विद राजभोग। राजभोग विशेस यू अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
19: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक।
1: मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
3: तेरा क्या होगा कालिया?
10: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
3: अब मिर्ची का।
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Welcome back to Mirchi Mornings. Mera naam hai Priscilla and this is Rashi Zone Part 2.
2: Mirchi Rashi Zone.
1: लिब्रा यानी तुला राशि, आज ब्यूटी और एस्थेटिक्स के मूड को ऑन पॉइंट रखो। वार्डरोब रिफ्रेश करना है, गो फॉर इट। बस आई हैव नथिंग टू वेयर बोल के क्लोजेट के सामने खड़े मत रहना। लकी कलर इज पीच, लकी नंबर इज 27। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, पोजेशंस और मनी पर एक्स्ट्रा नजर रखो। थोड़ी कंफ्यूजन पॉसिबल है, सो रिसीट्स, पेमेंट्स और पासवर्ड सबको डबल चेक करो। लकी कलर इज मिड नाइट ब्लू, लकी नंबर इज 11। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, मून तुम्हारी साइन में है, सो स्लो डाउन, रीग्रुप एंड एंजॉय द सिंपल स्टफ। कभी कभी लाइफ का बेस्ट प्लान ना थोड़ी देर चिल करना होता है। लकी कलर इज सैफ्रन, लकी नंबर इज 5। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, कीप थिंग्स लो की टुडे, बिहाइंड द सीन्स वर्क एक्चुअली वर्क्स इन योर फेवर। हर अचीवमेंट को लिंक्डइन पर बताना जरूरी नहीं होता है। लकी कलर इज चारकोल ग्रे, लकी नंबर इज 22। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, करियर वाइज this is your power zone. A positive momentum could open up fresh professional opportunities. Universe basically keh raha hai, update that resume, bestie. Lucky color is turquoise, lucky number is 8. Pisces यानी कि मीन राशि, a steady grounding day for you today. Emotional situations को quietly and sensitively handle करें. Not every feeling needs a 5 paragraph explanation. Lucky color for you is blue, lucky number is 16. And that's the end of Rashi Zone Part 2. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। जाकर मुझे देख भी लो, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस on Instagram and X, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp करो मुझे 9033 पर, that's 9033 647244। Stay tuned and stay hot.

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: This September 12th and 13th, join us at the Indo-American Community Fair at Shri Krishna Mandir, Morganville.
4: Enjoy delicious Indian food, shopping, live cultural performances, a health fair, kids' activities and much more. Morning 10 a.m. to 7 p.m.
5: For vendors and information, visit www.krishnatemple.org.
6: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
7: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
8: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
8: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
10: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
11: लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
12: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
11: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, this is Priscilla with you and Mirchi Mornings is wrapping up. अगर तुम commute कर रहे हो coffee के साथ survival mode में हो या फिर secretly office पहुंच कर भी parking lot में बैठ कर विचार विमर्श कर रहे हो, थैंक यू फॉर हैंगिंग आउट विथ मी, बोले तो प्रिसिला दिस मॉर्निंग। बट बिफोर आई डिसअपीयर एक इम्पोर्टेंट फैमिली अलर्ट देकर जाती हूँ भाई। राखी का त्योहार इज राइट अराउंड द कॉर्नर और मिर्ची पर चल रहा है एक कॉन्टेस्ट विच इज नानक फूड्स प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा। तो मुझे दिखाओ वो सिबलिंग मोमेंट्स जो देखते ही तुम बोलते हो यार हम लोग कितने क्यूट हैं और कितने अनोइंग भी हैं। अपने सिबलिंग के साथ कोई भी पिक्चर मुझे भेजो पार्टिसिपेट करने के लिए। व्हाट्सएप करो राखी लिखो RAKI और उसके बाद अपना पूरा नाम और अपनी सिबलिंग पिक्चर्स भेज दो मुझे 9033 मिर्ची पर। That's 9033647244। एंड तुम यही पिक्चर्स मुझे DM भी कर सकते हो इंस्टा पर अगर अभी हो। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। और पिक्चर्स नहीं है तो मुझे एक वॉइस नोट में बताओ कि तुम अपने सिबलिंग्स के बारे में क्या सोचते हो, क्या कहना चाहते हो, बिल्कुल अपने मिर्चीदार अंदाज में। एंड यू कुड विन अमेजिंग हैम्पर्स कैसी नानक फूड्स ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। विद यू कुड विन अमेजिंग हैम्पर्स कैसी Nanak Foods bringing sweetness to your life in association with Virani Jewelers on Oak Tree Road with festive special offers on

0: Mirchi.
1: Escabana, pues cabana, sacabana. ¡Cabana! ¡Murga, murga! ¡La vieja la murga!
0: ¡Mirchi, murga!
2: ¡Hola!
3: हेलो, ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से बोल रहे हैं भाई साहब?
2: किसके यहाँ से?
3: स्वर्गीय अनिल चौहान।
2: मतलब किसके यहाँ बात फोन मिलाया आपने?
3: स्वर्गीय अनिल के यहाँ फोन मिलाया भाई साहब, मैं से बोल रहा हूँ।
2: बोल रहा हूँ, अनिल ही बोल रहा हूँ, स्वर्गीय नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ।
3: सर, स्वर्गीय अनिल चौहान उनका पूरा नाम है सर, मैं से बोल रहा हूँ, पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से। तो ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से कोई हो तो उनसे बात करा दीजिए।
2: दिमाग खराब है तेरा, अब मैं खुद बोल रहा हूँ, तू सोच कम से कम।
3: सर, आप ये बेवकूफी की बात ना करें, आप एक तो जुबान संभाल की बात करें। मैं पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, आप कह रहे हैं आप जिंदा हैं, यहाँ पोस्टमार्टम कर रखा है हमने, आपकी रिपोर्ट आ गई है सर, आके ले जाइए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट।
2: स्वर्गीय नहीं, तू अनिल चौहान से ही बात कर रहा है।
3: स्वर्गीय अनिल चौहान यार, आप जो लक्ष्मी नगर में रहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ।
2: हो गया आपका कि स्वर्गीय अनिल चौहान, मैं जिंदा हूँ भाई, मैं रहा है घर परिवार वाले में, तेरे कोई पागल तो नहीं हो गया?
3: कौन पागल हो गया आपकी पोस्टमार्टम? मेरी बात सुन लीजिए आप, मैंने मारा पोस्टमार्टम हमने किया, स्वर्गीय अनिल चौहान से बात करनी है, उनसे बात कराई। बीच में आप कैसे आ गए यार, कमाल कर दिया आपने। दिमाग खराब मेरा नहीं हो, आपको यकीन नहीं है तो दोबारा आके पोस्टमार्टम करा लो, एक ही रिपोर्ट है दोनों की।
2: डॉक्टर बोल रहा हूँ,
3: मैं डॉक्टर विजय बोल रहा हूँ यार, मैंने खुद पोस्टमार्टम किया उनका। केस आप क्या करेंगे? केस तो मैं उन पर करूंगा, स्वर्गीय अनिल चौहान पे, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे लिखा हुआ आप बाप बनने वाले थे, वो बाप बनने वाले।
2: परिवार वाले आदमी से बात करता है, कौन है?
3: बेवकूफी की बात मत करिए आप, आइए यहाँ पे पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में, दिखाता हूँ आपकी लाश, आपकी बॉडी दिखाता हूँ यहाँ पे आके। पोस्टमार्टम तो करके छोड़ूंगा मैं
2: जी।
3: स्वर्गीय अनिल चौहान जी के यहाँ से कोई बात कर सकते हैं मेरे से? मेरी बात सुनिए, आप फोन मत काटिएगा, बड़ा मुश्किल से मिलता है। अनिल चौहान जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बनाया है, छोटा सा मजाक किया है, आपकी उम्र बहुत लंबी है यार, आप टेंशन ना लें।
2: अरे किसी बहुत मार खाओगे आप, सही बता रहे हैं।
3: सर, मैं पिटने को तैयार हूँ, लेकिन आपकी हंसी सुन के मुझे मजा आता है, अब मेरे साथ आप प्यार से कह दीजिए।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: कोई भी दिन त्योहार हो, उसकी शुरुआत तो मुंह मीठा करवाने से ही होती है। आपका प्यार आपका जीवन साथी तब तक नहीं बनता जब तक सामने वाले कह ना दे, बात पक्की हुई, करो मुंह मीठा। अरे पड़ोसियों की गाड़ी भी कहा तब तक अच्छी लगती है जब तक मिठाई का डब्बा घर नहीं आ जाता। नया घर लो, कराओ मुंह मीठा। नए घर में नया मेहमान आ जाए, कराओ मुंह मीठा। ये मिठास खुशियों की है, ऊपर वाला देता रहेगा और हम बांटते जाएंगे। ले, आपको तो भूल ही गए। इस शुभ अवसर पर आप भी कीजिए मुंह मीठा।
8: नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइव्स।
9: जय गुरुदेव। अवसर आवी ने उभो छा आंगणे, चलो भेगा मड़ी गणेश जी ना आगमन नी तैयारी करिए। आपने गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मा जोड़ायो, जेमा 14 सितंबर सोमवारे सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना, अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती, अने 20 सितंबर सांजे 4 वागे विसर्जन। वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर, विस्काटवे ऑन 732-357-8200। जय गुरुदेव।
10: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
11: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
10: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
12: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
13: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
12: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज।

0: है कभी आना तुम मेरी गली,
1: कभी आना तुम अपनी गली,
0: कभी आना तू मेरी गली।
2: राखी यादों की कारवां है,
3: जहां मीठी करारी नमकीन कई यादें हैं,
2: यही यादें राखी को पूरा करती हैं।
4: अपने सिब्लिंग्स के साथ मीठी तीखी मेमोरी शेयर कीजिए एंड गेट अ चांस टू विन शानदार गिफ्ट हैम्पर्स।
5: क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
6: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
5: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: India ke rang, sur aur swad sab kuch ek jagah.
10: Experience Janmashtami festival with Krishna Leela, traditional dances, live music, bhajans, delicious food, shopping and kids activities.
9: Sunday, August 23rd, 1 to 6 p.m. New Brunswick Performing Arts Center, located at 9 Livingston Avenue, New Brunswick. Free entry and parking. Our website is www.newbrunswickarts.org. Call Tracy at 908-917-2862.
2: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
11: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
12: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी। Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
5: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
13: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
5: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
14: यहाँ

से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तान हमारा। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट।

यहाँ का मौसम जादू, यहाँ का सावन जादू, यहाँ का गुलशन जादू, यहाँ का जीवन जादू। बिरला टाटा बाबा, यहाँ का आटा बाबा, जूतों में बाटा बाबा, लड़की का चाटा बाबा, सचिन की बैटिंग बाबा, बच्चन की एक्टिंग बाबा, सुनील गावस्कर बाबा, कपिल द सिक्सर बाबा, लता मंगेशकर बाबा, जाकिर का तबला बाबा, भरतनाट्यम बाबा, यहाँ का भांगड़ा बाबा, यहाँ की लावणी बाबा, यहाँ का डांडिया बाबा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तान हमारा। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।

जीते हैं मस्त होके मस्ती में लोग सारे, जो है मजा यहाँ पे वो ना मजा कहीं पे। यहाँ की ईद बाबा, यहाँ दिवाली बाबा, यहाँ की होली बाबा, दुल्हन की डोली बाबा, चनिया चोली बाबा।

0: राजे शिवाजी बाबा, अकबर बादशाह बाबा, महात्मा गांधी बाबा, चाचा नेहरू बाबा, बाबा अंबेडकर बाबा, मदर टेरेसा बाबा।
1: We're taking it up and we're taking it down. This is the Indian sound. Together so strong in God we trust. Yeah, you cannot beat us.
0: ताज महल बाबा, चार मीनार बाबा, आम का अचार बाबा, यहाँ का प्यार बाबा, ऐश्वर्या राय बाबा, सुष्मिता सेन बाबा, ऑल इंडिया रेडियो बाबा, डीडी मेट्रो बाबा, दूरदर्शन बाबा।

0: सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलशन हमारा। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।
1: It's 11:30 AM. Mirchi Time Check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.

0: Milci.
1: Escava la buscava na sacabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
0: Milci, burga.
2: हेलो
3: आकाश
2: जी,
3: आकाश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपने मुर्गा बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था ना?
2: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
3: मुझे बताइए किसका मुर्गा बनाना है?
2: मेरी गर्लफ्रेंड है।
3: ओहो, यही मिली आपको?
2: जी, बहुत पंगे लेती है।
3: अच्छा आकाश, ये थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है क्योंकि मुर्गा बनाने से पहले हम जो रिक्वेस्ट करते हैं मुर्गे की, उनसे एक फॉर्म फिल करा लेते हैं।
2: ठीक है,
3: मुझे अपना पूरा नाम बता दीजिए।
2: आकाश मल्होत्रा।
3: अच्छा आकाश, मैं थोड़ा सा इसको फॉर्म को पढ़ देता हूँ क्योंकि मुर्गा थोड़ा सा मुश्किल भी होता है बनाना, कभी गुस्सा आ जाता है लोगों को, यू नो। तो इसमें कुछ क्लॉज और रूल्स हैं, वो आप फॉलो करेंगे, इसको अग्री करेंगे तो ही हम मुर्गा बनाएंगे,
2: राइट?
3: चलिए। अच्छा, इसमें ये है, मैं इसमें आपका नाम लिख देता हूँ, मैं आपको पढ़ देता हूँ। मैं आकाश मल्होत्रा अपने होशो आवाज में अपनी गर्लफ्रेंड
2: पूजा
3: पूजा का रेडियो मिर्ची पे मुर्गा बनवा रहा हूँ। अगर कल को पूजा को इस बात पे गुस्सा आ जाता है तो उसका जिम्मेदार आकाश यानी मैं खुद हूँगा, ठीक है?
2: जी, डेफिनेटली।
3: ओके, अगर गुस्सा इतना ज्यादा आ जाता है कि पूजा केस कर देती है मुर्गा बनाने वालों पे, तो उसका जिम्मेदार भी आकाश मल्होत्रा होगा।
2: अच्छा,
3: अगर केस पूजा जीत जाती है और सजा के तौर पे 10 साल की बिना बेल की सजा होती है, तो उसका जिम्मेदार आकाश मल्होत्रा होगा।
2: क्या कह रहे हैं?
3: अगर सजा के तौर पे सजाए काला पानी भेजा जाए तो आकाश मल्होत्रा जाएगा। ये दूसरा
2: पेज, मतलब नहीं, मुर्गा बनाने में ऐसा भी होता है?
3: नहीं नहीं, ये फॉर्मेलिटी है ना सर, ये पूरा करना होता है, ये कंपनी की तरफ से है। ये लास्ट सुन लीजिए, लास्ट में लिखा हुआ है, अगर मुर्गा बनवाने वाले ने शुरू की 2 शर्तें मान ली है तो उसको मुर्गा बनवाना ही पड़ेगा जिसका वो चाहता है। तो मैं पूजा को फोन करता हूँ, अब आप मजे लीजिएगा, है ना?
2: सर, मेरी बात तो सुनिए।
3: हाँ बताइए।
2: फन की बात अलग है, लेकिन उसको सीरियसली गुस्सा आ गया। और
3: अरे नहीं, बात तो सुनिए, गुस्सा आपको
2: आज तो प्लीज रहने दीजिए, इसको मेरी बात मान लीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी।
3: चलिए, मैं एक शर्त पे रहने दूंगा
2: जी,
3: अगर आप बोलेंगे मेरे साथ कुकड़ू। आकाश, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मैं तुम्हें ऑन एयर डाल दिया है और तुम्हारा मुर्गा बन गया।
2: मेरा बन गया वो कुकड़ों को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: भाई बहन का रिश्ता होता है प्राइसलेस, तो राखी की कोई कीमत क्यों हो?
8: सेलिब्रेट राखी विद राजभोग। राजभोग विशेस यू अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
9: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
10: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
11: कोई भी दिन त्योहार हो, उसकी शुरुआत तो मुंह मीठा करवाने से ही होती है। आपका प्यार आपका जीवन साथी तब तक नहीं बनता जब तक सामने वाले कह न दे, बात पक्की हुई, करो मुंह मीठा। अरे पड़ोसियों की गाड़ी भी कहा तब तक अच्छी लगती है जब तक मिठाई का डब्बा घर नहीं आ जाता। नया घर लो, कराओ मुंह मीठा। नए घर में नया मेहमान आ जाए, कराओ मुंह मीठा। ये मिठास खुशियों की है, ऊपर वाला देता रहेगा और हम बांटते जाएंगे। ले, आपको तो भूल ही गए। इस शुभ अवसर पर आप भी कीजिए मुंह मीठा।
12: नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइव्स।
13: कुछ आवाजें सिर्फ गानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।

0: राखी यादों की कारवां है,
1: जहां मीठी करारी नमकीन कई यादें हैं।
0: यही यादें राखी को पूरा करती हैं।
2: अपने सिब्लिंग्स के साथ मीठी तीखी मेमोरी शेयर कीजिए एंड गेट अ चांस टू विन शानदार गिफ्ट हैम्पर्स।
3: क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
4: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
3: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Oh no!
8: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
3: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
3: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
10: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
11: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगा, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
10: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
12: एट तनिष्क, नो टू डायमंड्स आर एग्जैक्टली अलाइक। They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply. Ooh.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन।
5: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
6: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
5: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
7: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।
1: यू आर लिसनिंग टू 103.3 FM HD2 WPRP प्रिंसटन न्यू जर्सी एंड 92.7 W224 CW फ्रैंकलिन पार्क न्यू जर्सी। रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: It's 1 p.m. Mirchi Time Check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
3: अच्छा ये बात है तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ. जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सस्ते देना. डन
4: डन
3: डन. अच्छा तो ये बताओ बागों में बाहर है?
4: क्या?
3: मैंने पूछा बागों में बाहर है?
4: है.
3: गर्मियों की निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?
4: ना, ना.

0: सोमवार है,
1: है, है।
0: आज सोमवार है,
1: अरे बाबा है।
0: तुमको मुझसे प्यार है,
1: है।
2: उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें लेकर के हाजिर हो गई है स्टूडियो में हॉट सीट पे आपकी प्यारी श्रेया। हेलो हेलो वेलकम। अच्छा, जब भी हम कोई फिल्म देखते हैं तो हमें हमेशा ये लगता है ना कि यार हीरो का क्या होगा, और अगर हीरो को कोई मतलब यू नो कोई डिजीज़ होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो वी कीप थिंकिंग इन द एंटायर फिल्म कि यार बस किसी तरह हीरो जो है ना वो ज़िंदा बच जाए। मतलब ये दिल से आवाज़ निकलती है कि हीरो जो है वो सर्वाइव कर जाए। लेकिन एक ऐसी फिल्म के बारे में आज मैं बताऊँगी जिसमें डायरेक्टर साहब ने राइटर साहब को ना साफ साफ ये कह दिया था कि ओपनिंग सीन में ही पता चल जाए कि हमारा हीरो नहीं रहा। वेल, ये कौन थे और कौन सी फिल्म की बात हो रही है सब बताऊंगी आपको, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। यू नो कि मैं ना आपको ऐसे थोड़ा सस्पेंस में छोड़ के जाती हूँ और मुझे बड़ा मजा आता है, बिकॉज देन आई एम श्योर कि यू विल कम बैक टू मी और यू विल कम बैक टू पुरानी जीन्स। तो बस गाने सुनकर के वापस आओ, आज की कौन सी खूबसूरत फिल्म है उसके बारे में बात करेंगे। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो,
4: कुड आई स्पीक टू मनीष प्लीज?
3: स्पीकिंग,
4: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ओके मनीष, आई नीड योर फेवर, आपकी मदद की जरूरत पड़ गई थी। मैं यहाँ पे लेक्चर्स देता हूँ स्टूडेंट्स को, मैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, राइट, कि पहले इंसान एप था, आई बिलीव आपने भी पढ़ा होगा किसी जमाने में, यहाँ पहले इंसान बंदर की शक्ल में था, फिर वो धीरे धीरे धीरे धीरे यू नो एक इंसान बन गया, राइट।
3: बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं?
4: मैं एक बार फिर बताता हूँ, मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, राइट। एक मेरा सब्जेक्ट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, 40-50 स्टूडेंट्स हैं मेरे। इफ यू डोंट माइंड, मैं प्लीज आपसे अगर चाहूँ आप मुझे 2 घंटे दे सकते हैं मेरी क्लास में आके।
3: करना क्या है, अभी भी नहीं समझ पा रहा।
4: तो ये मेरा एक सब्जेक्ट है जो मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि इंसान बंदर होता था, तो मेरे स्टूडेंट्स इस बात पे यकीन कर नहीं रहे। तो आप अगर क्लास में आ जाएंगे ना स्टूडेंट्स के सामने, तो स्टूडेंट्स के सामने मैं आपको खड़ा कर दूंगा और आपका चेहरा ब्लैकबोर्ड के पास आ जाएगा, तो उनको यकीन आ जाएगा कि हाँ पहले इंसान वाकई में बंदर। आई एम श्योर के सारे यकीन कर जाएंगे कि हाँ पहले इंसान बंदर हुआ करता था। बस इतनी हेल्प चाहिए थी मुझे आपकी। तो कब आ जाएंगे आप मुझे ये बता दीजिए, कल का रख ले। मेरी बात, मेरी बात सुनो, आई एम प्रोफेसर, आई एम प्रोफेसर, मेरी बात सुनिए यार। आप हेलो, वैसे दिल्ली कितनी गालियां खाऊं मैं आपको हंसाने के लिए यार, ये नाइंसाफी है।
3: हेलो,
4: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मुझे माफ कर दो, थोड़ा ज्यादा हो गया था। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे नंबर दिया था तुम्हारी दोस्त कपिल ने, उसने कहा था कि तुम्हारा मुर्गा बना दे यार, मैं मुर्गा बनाया है, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, आपकी इजाजत हो तो मैं हंस लूं यार। मनीष, वो एक्चुअली स्टूडेंट्स को यकीन नहीं आ रहा था कि आदमी पहले बंदर होता था, इसलिए मैंने लगा कि तुम आ जाओगे तो एक बार काम बन जाएगा यार। इंसान पहले बंदर होता था, अब मेरे को यकीन आ गया, मैं बता दूंगा उनको।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
8: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
8: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
10: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय RK Jewels। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस, रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।
11: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
12: द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑफर्स वेरियस डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस इन फार्मेसी, टेक, मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग, EKG एंड फ्लेबोटमी, मेडिकल असिस्टेंट एंड मेनी मोर इन डिमांड हेल्थ केयर करियर्स।
11: गेट क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड जॉब असिस्टेंस एट द मोस्ट रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सेंटर्स। ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड ऑनलाइन एंड ऑन कैंपस। फॉर एनरोलमेंट कॉल 9088222002 और विजिट aimseducation.edu।
13: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
14: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
13: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
15: Tera kya hoga, Kalia?
16: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
15: Ab, mirchi kha.
17: Radio Mirchi, it's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

गुलजार साहब को ऋषिकेश दा के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे कि ओपनिंग सीन में ही ऑडियंस को पता चल जाए कि भाई आनंद जिंदा नहीं है। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म आनंद। सोचो हम कितनी सारी फिल्में देखते हैं ना, और उसमें थ्रू आउट द फिल्म हम बस ये सोचते रहते हैं कि हीरो जो है ना वो हीरो बन करके निकले, हीरो जो है वो सरवाइव कर जाए, फिर चाहे वो उसका लव एंगल हो या फिर लाइफ एंगल हो। लेकिन इस एक पर्टिकुलर फिल्म में गुलजार साहब जिन्होंने फिल्म को लिखा था, उनको ना डायरेक्टर साहब ऋषिकेश दा ने स्ट्रिक्टली कहा था कि ओपनिंग सीन्स में ही ऑडियंस को ये पता चल जाए कि आनंद इज नो मोर। वेल, ऐसा उन्होंने क्यों किया था, इसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड रीजन है। इनफैक्ट आई शुड से बहुत ही ऋषिकेश दा रीजन है। क्या है वो, आई विल लेट यू नो। कम राइट बैक। मैं हूं श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जी।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
4: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
3: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
5: क्या बनाए आज? शाही पनीर बनाए, कढ़ाई पनीर बनाए, मटर पनीर बनाए या फ्राई पनीर बनाए? अगर आपके पास नानक पनीर है तो आप कुछ भी बना सकते हैं। आंखों में चमक और चेहरे पे नूर सिर्फ ब्यूटी पार्लर जाने से नहीं आता, उसके लिए अच्छा खाना भी खाना पड़ता है। खाना भी वो जो क्वालिटी और टेस्ट में हो नंबर वन, जैसे आप सबकी पसंद नानक पनीर। सो गुड, सो प्योर, इट्स नानक।
6: देसी खाना,
7: देसी शॉपिंग,
6: देसी कल्चर
7: और देसी एंटरटेनमेंट,
6: बस एक ही डेस्टिनेशन,
7: इंडो अमेरिकन कम्युनिटी फेयर, सितंबर 12th और 13th, श्री कृष्णा मंदिर, मॉर्गनविल।
8: फॉर वेंडर्स एंड इन्फॉर्मेशन विजिट www.krishnatemple.org।
7: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
6: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
7: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
9: भाई बहन का रिश्ता होता है प्राइसलेस, तो राखी की कोई कीमत क्यों हो?
10: सेलिब्रेट राखी विद राजभोग। राजभोग विशेस यू अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
11: तेरा क्या होगा कालिया?
12: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
11: अब मिर्ची खा।
13: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
14: It's 1:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ऋषिकेश दाना हमेशा एसेंस ऑफ लाइफ पे फिल्में बनाते थे, कुछ ऐसी क्वालिटीज, कुछ ऐसे फ्लेवर्स जो हमको अपनी जिंदगी में उतारने चाहिए. एंड दैट वाज हिज वे ऑफ डायरेक्शन, दैट वाज हिज वे ऑफ स्टोरी टेलिंग. फिर चाहे उनकी कोई भी फिल्म ले लो, अभिमान ले लो, या फिर आज जिसकी बात कर रहे हैं आनंद ले लो. सो ऋषिकेश दास चाहते थे कि जब वो आनंद बना रहे हैं ना, तो लोग, ऑडियंस जो फिल्म देखने आए, वो पूरे टाइम ये ना सोचे कि शायद आनंद जिंदा रह गया, शायद आनंद ने यू नो कैंसर को डिफीट कर दिया होगा. वो अगर कंसंट्रेट करें तो अपनी लाइफ की क्वालिटी पे कंसंट्रेट करें. और इसीलिए ऋषिकेश मुखर्जी ने भाई स्क्रिप्ट राइटर यानी द राइटर ऑफ द फिल्म गुलजार साहब को ये एकदम ओपनली कहा था कि वो चाहते हैं कि पहले सीन में ही ऑडियंस को पता चल जाए कि आनंद विल नॉट सर्वाइव, जिससे कम से कम ऑडियंस के दिल में एक क्वेश्चन ना रह जाए और वो पूरी फिल्म ये सोचते हुए ना देखे कि शायद आनंद जो है ना वो जी जाएगा, बल्कि पूरी फिल्म में वो एसेंस ऑफ लाइफ पे कॉन्सेंट्रेट करें कि हाउ टू यू नो आप अपनी जिंदगी को खूबसूरत कैसे बना सकते हैं. इसीलिए इस फिल्म में वो डायलॉग है ना, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए बाबू मोशाय. क्या बात है. पुरानी जींस पे मैं हूं श्रेया, आनंद की बातें एकदम आनंदमय होके करेंगे. सो कम राइट बैक.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
4: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
3: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
5: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
6: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
5: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
7: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
7: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन।
9: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

राज कपूर साहब इनको प्यार से बाबू मोशाय कहते थे, और इस फिल्म के थ्रू वो राज कपूर साहब को एक ट्रिब्यूट देना चाहते थे। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, एंड वी आर डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट वो फिल्म जिसमें बाबू मोशाय को फेमस किया, यानी आनंद को। इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले ऋषिकेश मुखर्जी, तो जब उन्होंने फिल्म बनाई वो चाहते थे कि वो अपने सबसे क्लोज दोस्त राज कपूर को ना कहीं से इस फिल्म में उतार करके लाएं। तो उन्होंने सोचा कि इस फिल्म में वो ना अमिताभ बच्चन को जो प्यार से राजेश खन्ना बोलेंगे वो होगा बाबू मोशाय, बिल्कुल वैसे ही जैसे राज कपूर साहब उनको प्यार से बाबू मोशाय कहते थे। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया। एक टाइम तो ऐसा आया जब ऋषिकेश दा ने सोचा कि इस फिल्म में आनंद का रोल करने वाले यानी राजेश खन्ना का रोल शुड गो टू राज कपूर साहब, लेकिन फिर उन्होंने अपने इस थॉट को ही कैंसिल कर दिया, और उसके पीछे एक रीजन था, दोस्ती का रीजन। वो रीजन पूरा क्या था डिटेल में बताऊंगी। कम राइट बैक, मैं हूं श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: जो हाँ

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: It's 2 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
3: दीवाना.
4: एक दीवाना शहर में.
3: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी.
4: दो दीवाने शहर में.

पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड आज एक ऐसी फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं जो मुझे लगता है कि अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो क्या आप रेट्रो फैन हैं भी कि नहीं है। इन केस आपने 0.00001% भी नहीं देखी हो ना तो यू शुड डेफिनेटली वॉच दिस फिल्म। इन फैक्ट इस फिल्म को ना रीविजिट हमें करते रहना चाहिए टू अंडरस्टैंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ, यू नो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज कि हम जिंदगी बड़ी जिए, लंबी नहीं यार। Of course, I'm talking about आनंद। So, मैं बता रही थी गानों के पहले कि भाई ऋषिकेश मुखर्जी और राज कपूर साहब बहुत अच्छे दोस्त थे और ऋषिकेश दा चाहते थे कि वो किसी तरह राज कपूर साहब को अपनी इस फिल्म में उतारें। तो उन्होंने बाबू मोशाय वर्ड जो राज साहब ऋषिकेश दा को प्यार से बोलते थे ना उसको इस फिल्म में रखा। इन फैक्ट वो तो ये भी चाहते थे कि आनंद का रोल जो काका यानी राजेश खन्ना ने किया है वो रोल राज कपूर साहब निभाएं। ये स्क्रिप्ट लेकर के वो उनके घर भी गए लेकिन दहलीज से ही वापस लौट आए। वो इसलिए क्योंकि उनको रियलाइज़ हुआ कि उसी समय राज साहब की तबीयत ख़राब हुई थी, उनको हार्ट स्ट्रोक आया था एंड राज साहब को ऑन स्क्रीन भी जाते हुए देखना ये ऋषिकेश दा नहीं ले पाते। दिस इज़ नॉट वॉट ही कुड हैव टेकन ईजिली। तो उन्होंने ये आइडिया बिल्कुल स्क्रैप किया और फिर उन्होंने कहा कि राज साहब ने राजेश खन्ना ये रोल करेंगे। पुरानी जीन्स पे आज इसी फिल्म की बातें चलती रहेंगी। मैं हूँ श्रेया।

0: Mirchi.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: हेलो, ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से बोल रहे हैं भाई साहब?
2: किसके यहाँ से?
3: स्वर्गीय अनिल चौहान।
2: मतलब किसके यहाँ बात फोन मिलाया आपने?
3: स्वर्गीय अनिल के यहाँ फोन मिलाया भाई साहब। मैं बोल रहा हूँ
2: अनिल ही बोल रहा हूँ, स्वर्गीय नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ।
3: सर, स्वर्गीय अनिल चौहान उनका पूरा नाम है सर, मैं से बोल रहा हूँ पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से। तो ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से कोई हो तो उनसे बात करा दीजिए।
2: दिमाग खराब है तेरा? अबे मैं खुद बोल रहा हूँ, तू सोच कम से कम।
3: सर, आप ये बेवकूफी की बात ना करें, आप एक तो जुबान संभाल की बात करें। मैं पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, आप कह रहे हैं आप जिंदा हैं, यहाँ पोस्टमार्टम कर रखा है हमने, आपकी रिपोर्ट आ गई है सर, आके ले जाइए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट।
2: सर, ये नहीं, तू अनिल चौहान से ही बात कर रहा है।
3: स्वर्गीय अनिल चौहान यार, आप जो लक्ष्मी नगर में रहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ।
2: खराब हो गया आपका कि स्वर्गीय अनिल चौहान, मैं जिंदा हूँ भाई, मैं रहा घर परिवार वाले में, तेरे कोई पागल तो नहीं हो गया?
3: कौन पागल हो गया आपकी पोस्टमार्टम? मेरी बात सुन लीजिए आप।
2: नहीं,
3: मैंने मारा पोस्टमार्टम हमने किया, स्वर्गीय अनिल चौहान से बात करनी है, उनसे बात कराई। बीच में आप कैसे आ गए यार, कमाल कर दिया आपने। दिमाग खराब मेरा नहीं हुआ, आपको यकीन नहीं है तो दोबारा आगे पोस्टमार्टम करा लो, एक ही रिपोर्ट है दोनों की।
2: डॉक्टर बोल रहा
3: हूँ, मैं डॉक्टर विजय बोल रहा हूँ यार, मैंने खुद पोस्टमार्टम किया उनका।
2: ऐसा
3: केस आप क्या करेंगे? केस तो मैं उन पर करूंगा, स्वर्गीय अनिल चौहान पे, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे लिखा हुआ आप बाप बनने वाले थे, वो बाप बनने वाले।
2: परिवार वाले आदमी से ऐसी बात करता है, कौन है तेरी
3: बेवकूफी की बात मत करिए आप। आइए यहाँ पे पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में, दिखाता हूँ आपकी लाश, आपकी बॉडी दिखाता हूँ यहाँ पे आके। पोस्टमार्टम तो करके छोड़ूंगा मैं
2: जी।
3: स्वर्गीय अनिल चौहान जी के यहाँ से कोई बात कर सकते हैं मेरे से? मेरी बात सुनिए, आप फोन मत काटिएगा, बड़ा मुश्किल से मिलता है। अनिल चौहान जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बनाया, छोटा सा मजाक किया है, आपकी उम्र बहुत लंबी है यार, आप टेंशन ना लें।
2: अरे किसी बहुत मार खाओगे आप, सही बता रहे हैं।
3: सर, मैं पिटने को तैयार हूँ, लेकिन आपकी हंसी सुन के मुझे मजा आता है, अब मेरे साथ आप प्यार से कह दीजिए।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: सिमरन, तू कार छड़ के किधर जा सक रही है था? आई नो सिमरन, मेरी गलती है, मैं तेरे को टाइम नहीं दे सकया।
8: नहीं राज, अपने विच पहला वर्गा हुन कुछ नहीं रहा, सब कुछ बदल गया, तू बदल गया, तेरे ड्रीम बदल गए, तेरे प्रेफरेंसेस बदल गए, कुछ है जो इन सालों विच नहीं बदलया है कुछ?
7: नानक रसमलाई। हाँ सिमरन, हाँ नानक रसमलाई का टेस्ट आज भी वही है जो साडे व्याह तो पहला सी।
8: राज
7: सिमरन,
9: नानक ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ।
10: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
11: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
10: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
12: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
13: India ke rang, sur aur swad sab kuch ek jagah.
14: Experience Janmashtami festival with Krishna Leela, traditional dances, live music, bhajans, delicious food, shopping and kids activities.
13: Sunday, August 23rd, 1 to 6 p.m. New Brunswick Performing Arts Center, located at 9 Livingston Avenue, New Brunswick. Free entry and parking. Our website is www.newbrunswickarts.org. Call Tracy at 908-916.
15: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
16: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
15: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
17: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
15: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
18: आहा,
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

बच्चन साहब तो बिल्कुल भी ये रोल नहीं करना चाहते थे. इट वॉज हिज डियर फ्रेंड एट दैट टाइम महमूद साहब हु एक्चुअली कन्विंस्ड हिम टू डू इट. पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ और आनंद फिल्म की बात हो रही है. सो बच्चन साहब को जब बाबू मोशाय वाला रोल मिला, यानी डॉक्टर साहब का रोल मिला काका के लिए, एज इन राजेश खन्ना के लिए, तो भाई बच्चन साहब ऑलरेडी कई सारी फिल्में कर चुके थे, लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ देम फ्लॉप्ड एट द बॉक्स ऑफिस. पर वो ना ये रोल इसलिए नहीं करना चाहते थे, एक तो ऑलरेडी सुपरस्टार राजेश खन्ना थे इसमें, उसके बाद उनका रोल जो था वो बहुत ज़्यादा नहीं था. तो उन्होंने ना महमूद साहब से कहा कि भाई इस पूरी फिल्म, दिस एंटायर फिल्म इज अबाउट आनंद, यानी राजेश खन्ना, मैं इसमें क्या ही करूँगा. सो भाई महमूद साहब ने उनको समझाया कि काका जो कि सुपरस्टार थे एट दैट टाइम, उनके साथ एक फ्रेम में ही आना बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और जब वो उस फ्रेम में आएंगे तो वो ऑडियंस को अपनी एक्टिंग का जलवा दिखा सकते हैं, उस ऑडियंस को जो अभी तक बच्चन साहब को देखने बॉक्स ऑफिस पे गई ही नहीं है. ये बात उनको क्लिक करी एंड ही डिड दिस रोल. एंड एक्चुअली उनका रोल बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हुआ था. मतलब जब आप आनंद के बारे में सोचते हो तो सिर्फ काका नहीं, बच्चन साहब भी जहन में ज़रूर आते हैं. इसी फिल्म की बातें विद मी श्रेया आज, ओनली ऑन पुरानी जीन्स.

0: ये गाना था करण अर्जुन का, लेकिन लिखा गया था हर भाई बहन के लिए। लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे।
1: तू ना कभी चेंज नहीं होगा।
2: और तू तो देवी है ना।
3: इस राखी बोल दो दिल की बात, क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
4: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
3: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Inefficient,
8: very complex,
9: clumsy or
10: confusion ही confusion.
11: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
12: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
13: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलोअप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
6: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
14: भाई बहन का रिश्ता होता है प्राइसलेस, तो राखी की कोई कीमत क्यों हो?
15: सेलिब्रेट राखी विद राजभोग। राजभोग विशेस यू अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
16: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
17: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
18: तेरा क्या होगा कालिया?
19: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
18: अब मिर्ची खा।
20: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
21: It's 2:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price.
22: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा, ऋषिकेश दा के खूबी थी कि अगर वो किसी पॉइंट को समझते थे, अगर किसी लॉजिक को समझते थे कि वो सही है, तो उसके बाद वो किसी की नहीं सुनते थे। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म आनंद टुडे, और यही बात उन्होंने अप्लाई की थी आनंद के म्यूजिक के लिए। सो ऋषिकेश दा को बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पे बोला कि योगेश एज अ लिरिसिस्ट एंड सलिल चौधरी एज अ म्यूजिक कंपोजर अब सक्सेसफुल नहीं है, उनको ना नए म्यूजिक कंपोजर्स और लिरिसिस्ट के साथ काम करना चाहिए फॉर दिस फिल्म। लेकिन क्योंकि सलिल चौधरी उनके दोस्त भी थे और हमेशा से क्वालिटी सॉन्ग्स देते आए थे, इवन दो वो कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, भाई ऋषिकेश दा को लगा कि नहीं, मैं अपनी म्यूजिक टीम नहीं चेंज करूंगा। और उसके बाद तो रेस्ट इज हिस्ट्री। आनंद के गाने सुपर डुपर हिट ही नहीं, इनफैक्ट ऑल इंडिया रेडियो पे हर हफ्ते कई हफ्तों तक भाई म्यूजिक लिस्ट में, चार्ट लिस्ट में एकदम अव्वल आते थे। इसी फिल्म का गाना विच इज कंपोज बाय सलिल चौधरी एंड रिटन बाय योगेश जी, कमिंग अप राइट नेक्स्ट फॉर यू। मैं हूं श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: Jai Gurudev. अवसर आवीने उभो छा आंगणे। चलो भेगा मळी गणेश जी ना आगमन नी तैयारी करिए। आपणे गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मा जोडायो, जेमा 14 सप्टेम्बर सोमवारे सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती अने 20 सप्टेम्बर सांजे 4 वागे विसर्जन। वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर विस्काटवे ऑन 7323578200। जय गुरुदेव।
5: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
5: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
7: अब मिर्ची खा।
9: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

गाने के लिए तो खुद काका यानी राजेश खन्ना ने कहा था कि मुझ पे पिक्चराइज होगा ये गाना। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म आनंद, जिसको बनाया ऋषिकेश मुखर्जी ने। इसको लिखने वाले थे गुलजार साहब और इसमें थे काका यानी राजेश खन्ना एंड बच्चन साहब। सो एक दिन ना काका रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाते हैं और वो देखते हैं कि योगेश जी लिरिसिस्ट बैठे हुए हैं और सलिल चौधरी जो फिल्म के गाने कंपोज कर रहे हैं एंड मनाटे कुछ गुनगुना रहे हैं और सलिल दाना उसमें म्यूजिक दे रहे हैं ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना, और योगेश जी ना इसमें लिरिक्स भर रहे हैं, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। तो भाई काका को पता चलता है कि आनंद फिल्म का ये जो गाना है बैकग्राउंड स्कोर की तरह यूज होगा। काका को इस गाने के लिरिक्स, ये गाना इतना इतना पसंद आया कि वो सीधे गए ऋषिकेश दा के पास और कहा कि मैं चाहता हूँ ये गाना मुझ पर पिक्चराइज हो और ये सिर्फ बैकग्राउंड स्कोर की तरह आकर के वेस्ट ना हो। तो अब इस फिल्म का बजट तो कुछ खास होना नहीं था, तो ऋषिकेश दा ने कहा अच्छा अगर करेंगे भी तो कहाँ करेंगे, हम कहीं ले नहीं जा सकते, हमारा शूट यहीं होना है, सब कुछ यू नो चार दीवारी के अंदर होके ख़त्म हो जाएगा। तो काका ने कहा ठीक है चलो हम जुहू बीच चलते हैं, चौपाटी चलते हैं, मैं बस बीच पे ऐसे टहलूंगा और आप शूट कर लेना दादा, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये गाना मुझ पर पिक्चराइज हो। कहते हैं कि काका का इंस्टिंक्ट बहुत काम करता था कि कौन सी फिल्म चलेगी, कौन सा गाना चलेगा, एंड ही न्यू दैट दिस सॉन्ग इज गोइंग टू ऑलवेज स्टे विद पीपल, एंड दैट एक्चुअली हैपेंड। जब ये गाना बना तब से लेकर के आज तक हम कभी ना कभी जिंदगी की कश्मकश में अगर उलझे होते हैं ना तो ये गाना गा ही लेते हैं। यही गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट। मैं हूं श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: कभी तो हंसाए।
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

राज कपूर साहब इनको प्यार से बाबू मोशाय कहते थे, और इस फिल्म के थ्रू वो राज कपूर साहब को एक ट्रिब्यूट देना चाहते थे। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, एंड वी आर डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट वो फिल्म जिसमें बाबू मोशाय को फेमस किया, यानी आनंद को। इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले ऋषिकेश मुखर्जी, तो जब उन्होंने फिल्म बनाई वो चाहते थे कि वो अपने सबसे क्लोज दोस्त राज कपूर को ना कहीं से इस फिल्म में उतार करके लाएं। तो उन्होंने सोचा कि इस फिल्म में वो ना अमिताभ बच्चन को जो प्यार से राजेश खन्ना बोलेंगे वो होगा बाबू मोशाय, बिल्कुल वैसे ही जैसे राज कपूर साहब उनको प्यार से बाबू मोशाय कहते थे। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया। एक टाइम तो ऐसा आया जब ऋषिकेश दा ने सोचा कि इस फिल्म में आनंद का रोल करने वाले यानी राजेश

खन्ना का रोल शुड गो टू राज कपूर साहब, लेकिन फिर उन्होंने अपने इस थॉट को ही कैंसिल कर दिया और उसके पीछे एक रीजन था, दोस्ती का रीजन। वो रीजन पूरा क्या था डिटेल में बताऊंगी। कम राइट बैक, मैं हूं श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जींस।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: हेलो
2: कुड आई स्पीक टू मनीष प्लीज
1: स्पीकिंग
2: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से ओके मनीष आई नीड योर फेवर आपकी मदद की जरूरत पड़ गई थी मैं यहाँ पे लेक्चर्स देता हूँ स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन राइट कि पहले इंसान एप था आई बिलीव आपने भी पढ़ा होगा किसी जमाने में यहाँ पहले इंसान बंदर की शक्ल में था फिर वो धीरे धीरे धीरे धीरे यू नो एक इंसान बन गया राइट
1: बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं
2: मैं एक बार फिर बताता हूँ मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन राइट एक मेरा सब्जेक्ट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ 40-50 स्टूडेंट्स हैं मेरे इफ यू डोंट माइंड मैं प्लीज आपसे अगर चाहूँ आप मुझे 2 घंटे दे सकते हैं मेरी क्लास में आके
1: करना क्या है मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा
2: हूँ तो ये मेरा एक सब्जेक्ट है जो मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि इंसान बंदर होता था तो मेरे स्टूडेंट्स इस बात पे यकीन कर नहीं रहे तो आप अगर क्लास में आ जाएंगे ना स्टूडेंट्स के सामने तो स्टूडेंट्स को सामने मैं आपको खड़ा कर दूंगा और आपका चेहरा ब्लैकबोर्ड के पास आ जाएगा तो उनको यकीन आ जाएगा कि हाँ पहले इंसान वाकई में बंदर था आई एम श्योर कि सारे यकीन कर जाएंगे कि हाँ पहले इंसान बंदर हुआ करता था बस इतनी हेल्प चाहिए थी मुझे आपकी तो कब आ जाएंगे आप मुझे ये बता दीजिए कल का रख ले मेरी बात मेरी बात सुनो आई एम प्रोफेसर मेरी बात सुनिए यार आप हेलो वैसे दिल्ली कितनी गालियां खाऊं मैं आपको हंसाने के लिए यार ये नाइंसाफी है
1: हेलो
2: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी मेरी बात सुनिए मुझे माफ कर दो थोड़ा ज्यादा हो गया था मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मुझे नंबर दिया था तुम्हारी दोस्त कपिल ने उसने कहा था कि तुम्हारा मुर्गा बना दे यार मैं मुर्गा बनाया है तुम रेडियो मिर्ची पे हो आपकी इजाजत हो तो मैं हंस लूं यार मनीष वो एक्चुअली स्टूडेंट्स को यकीन नहीं आ रहा था कि आदमी पहले बंदर होता था इसलिए मैंने लगा कि तुम आ जाओगे तो एक बार काम बन जाएगा यार इंसान पहले बंदर होता था अब मेरे को यकीन आ गया मैं बता दूंगा उनको
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: मैनू नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है जद एक दूजे दे नाल काम ना करे
6: आई एंजॉय यूजिंग इनएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मामा
7: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा
8: अगर आप इनमें से नहीं हैं तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है Zoho One इज एन ऑल इन वन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सुइट जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं यस योर एंटायर बिजनेस Zoho One इज इजी टू यूज साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है काम अनेक सॉफ्टवेयर एक Zoho One गेट योर फ्री ट्रायल एट zoho.com/one
9: प्यारी ब्राइड्स क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर
10: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज
9: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन
11: वॉरिड अबाउट हाउ योर चाइल्ड विल स्टे कनेक्टेड विद देयर रूट्स और मेंटेन आवर ट्रेडिशंस
12: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
13: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
14: भाई बहन का रिश्ता होता है priceless. तो राखी की कोई कीमत क्यों हो?
15: Celebrate Rakhi with Rajbhog. Rajbhog wishes you a very happy Raksha Bandhan. Orders on rajbhog.com or visit your local grocery store.
16: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
17: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
16: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
18: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155 लॉग ऑन टू lionmtg.com
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर

इतनी सारी खूबियां थी उनमें कि कौन कौन सी बताऊं। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, ऋषिकेश दास जब भी अपनी फिल्में बनाते थे ना, तो उनका सिर्फ एक मोटो होता था, बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन करना बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये कि जब भी उनका ऑडियंस उनकी फिल्म देख करके निकले ना, तो उसमें ऋषिकेश दास ट्रेडमार्क हो, यानी वो अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोचते हुए निकले, उसे कैसे और बेटर करना है वैसे निकले, एंड कोई ना कोई लेसन जरूर लेकर के निकले। ऋषिकेश दास के फिर चाहे आप अभिमान ले लो, या फिर गोलमाल ले लो, या फिर आप डेफिनेटली आनंद ले लो, मतलब लाइफ के लेसन गिविंग फिल्म होती थी। एंड पता है आपको, कोई लैविश सेट नहीं, कोई बहुत ही हाई फाई एक्टर एक्ट्रेस विद लॉट ऑफ मेकअप ने, एकदम सिंपल घर के अंदर ही फिल्म शूट हो जाती थी और इसीलिए कम दिनों में होती थी। अगर आप आनंद लो तो 28 दिन में शूट हुई, गोलमाल लो तो सवा महीने में शूट हुई, अभिमान लो तो 2 महीने के अंदर, 60 डेज के अंदर फिल्म शॉट खत्म, एडिट होके रिलीज, बॉक्स ऑफिस पे सुपर डुपर हिट। पुरानी जीन्स पे ना ऋषिकेश दास की फिल्मों की बातें चल रही हैं, स्पेशली आनंद की, तो बस आनंदमय रहिए और श्रेया के साथ यहीं पुरानी जीन्स पे रहिए।

0: राखी यादों की कारवां है,
1: जहां मीठी करारी नमकीन कई यादें हैं,
0: यही यादें राखी को पूरा करती हैं।
2: अपने सिब्लिंग्स के साथ मीठी तीखी मेमोरी शेयर कीजिए एंड गेट अ चांस टू विन शानदार गिफ्ट हैम्पर्स।
3: क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
4: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
3: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Oh no!
1: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
0: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
8: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
9: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
10: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
9: Buying a home? Our rate saver will beat your locked rate.
10: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding. Service jis par sab kare bharosa.
3: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
3: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
12: Listener MI, back to back gana sunega.
13: Back to back gana sunega.
12: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
14: It's 3:30 PM. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
15: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जींस पे आप श्रेया के साथ जाने का टाइम, यानी ऑफ कोर्स गाड़ी में बैठना पड़ेगा और हाईवे तक मेरे साथ चलना पड़ेगा। ऑलराइट, आज का मेरा हाईवे हिट इज अ सॉन्ग जो मैं दोस्तों को डेडिकेट करना चाहती हूँ, क्योंकि दिए जलते हैं, दिल खिलते हैं बड़ी मुश्किल से जिंदगी में, दोस्त मिलते हैं और बहुत ज़्यादा दोस्तों की ज़रूरत नहीं है, चंद दोस्त जो आपके साथ हमेशा खड़े रहे ना, बस उनको अपने पास ज़रूर रखना। ऑन दैट नोट, दिस इज श्रेया साइनिंग ऑफ। अगर मुझसे बात करनी है 1-to-1 तो फेसबुक और इंस्टा पे आरजे श्रेया विद लव, दैट्स माई हैंडल, RJSHREYA श्रेया विद लव। गुड नाइट।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: This September 12th and 13th, join us at the Indo-American Community Fair at Shri Krishna Mandir, Morganville.
4: Enjoy delicious Indian food, shopping, live cultural performances, a health fair, kids' activities and much more. Morning 10 a.m. to 7 p.m.
5: For vendors and information, visit www.krishnatemple.org.
6: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगा, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
6: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
8: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
9: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
10: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
9: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
11: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
9: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
12: एक ही होता है।
9: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

थर्स्टी का वाइब जब आता है ना, अंदर से एक अलग ही स्पार्क ऑन हो जाता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और आज एनर्जी थोड़ी एक्स्ट्रा लगती है, स्टेप्स थोड़े फास्टर हो जाते हैं, थॉट्स थोड़े शार्पर हो जाते हैं और कॉन्फिडेंस थोड़ा लाउडर हो जाता है। या जैसे कि ना फेवरेट सॉन्ग का पहला बीट ड्रॉप हुआ हो और बॉडी ऑटोमेटिकली मूव कर जाए। और पता है ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि यार थर्सडे आते आते ना प्रेशर पीछे रह जाता है, पॉसिबिलिटीज आगे आ जाती है, काम भी थोड़ा बहुत हो का होता है पर उसके साथ एक एक्साइटमेंट भी छुपी होती है। जी हाँ, आज का दिन इंटरेस्टिंग तो है ही, क्योंकि एक दिन और वीकेंड आने ही वाला है। तो आप भी बताइए कि आपका स्पार्क किस चीज से आया है आज, टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि मेरा स्पार्क तो हमेशा आपके लिए धमाकेदार गाने बजाने से ही आता है। तो चलिए इवनिंग का पहला गाना आपके लिए राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchu.
1: Escabana, pues cabana, sacabana. ¡Cabana! ¡Murga, murga! ¡La vieja la murga!
0: ¡Mirchi, murga!
2: हेलो
3: आकाश
2: जी,
3: आकाश मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। आपने मुर्गा बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था ना?
2: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
3: मुझे बताइए किसका मुर्गा बनाना है?
2: मेरी गर्लफ्रेंड है।
3: ओहो, यही मिली आपको?
2: जी जी जी, बहुत पंगे लेती है।
3: अच्छा आकाश, ये थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है क्योंकि मुर्गा बनाने से पहले हम जो रिक्वेस्ट करते हैं मुर्गे की, उनसे एक फॉर्म फिल करा लेते हैं।
2: ठीक है,
3: मुझे अपना पूरा नाम बता दीजिए।
2: आकाश मल्होत्रा।
3: अच्छा आकाश, मैं थोड़ा सा इसको फॉर्म को पढ़ देता हूँ क्योंकि मुर्गा थोड़ा सा मुश्किल भी होता है बनाना, कभी गुस्सा आ जाता है लोगों को, यू नो। तो इसमें कुछ क्लॉज और रूल्स हैं, वो आप फॉलो करेंगे, इसको अग्री करेंगे तो ही हम मुर्गा बनाएंगे,
2: राइट? बिल्कुल।
3: चलिए, अच्छा इसमें ये है, मैं इसमें आपका नाम लिख देता हूँ, मैं आपको पढ़ देता हूँ। मैं आकाश मल्होत्रा अपने होशो आवाज में अपनी गर्लफ्रेंड पूजा का रेडियो मिर्ची पे मुर्गा बनवा रहा हूँ। अगर कल को पूजा को इस बात पे गुस्सा आ जाता है तो उसका जिम्मेदार आकाश यानी मैं खुद हूँगा, ठीक है?
2: जी, डेफिनेटली।
3: ओके, अगर गुस्सा इतना ज्यादा आ जाता है कि पूजा केस कर देती है मुर्गा बनाने वालों पे, तो उसका जिम्मेदार भी आकाश मल्होत्रा होगा।
2: अच्छा,
3: अगर केस पूजा जीत जाती है और सजा के तौर पे 10 साल की बिना बेल की सजा होती है, तो उसका जिम्मेदार आकाश मल्होत्रा होगा।
2: क्या कह रहे हैं?
3: अगर सजा के तौर पे सजाए काला पानी भेजा जाए तो आकाश मल्होत्रा जाएगा। ये दूसरा
2: क्या सर, मतलब नहीं, मुर्गा बनाने में ऐसा सब भी होता है?
3: नहीं नहीं, ये फॉर्मेलिटी है ना सर, ये पूरा करना होता है, ये कंपनी की तरफ से है। ये लास्ट सुन लीजिए, लास्ट में लिखा हुआ है, अगर मुर्गा बनवाने वाले ने शुरू की 2 शर्तें मान ली हैं तो उसको मुर्गा बनवाना ही पड़ेगा जिसका वो चाहता है। तो मैं पूजा को फोन करता हूँ, अब आप मजे लीजिएगा, है ना?
2: सर, मेरी बात तो
3: सुनिए। हाँ बताइए।
2: फन की बात अलग है, लेकिन उसको सीरियसली गुस्सा आ गया। और
3: अरे नहीं, बात तो सुनिए, गुस्सा आपको
2: आज तो प्लीज रहने दीजिए, इसको मेरी बात मान लीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी।
3: चलिए, मैं एक शर्त पे रहने दूंगा
2: जी,
3: अगर आप बोलेंगे मेरे साथ कुकड़ू। आकाश तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मैं तुम्हें ऑन एयर डाल दिया है और तुम्हारे मुर्गा बन गया।
2: मेरा बन गया वो कुकड़ों को।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Desi khana,
7: desi shopping,
6: desi culture
7: aur desi entertainment.
6: Bas ek hi destination.
7: Indo-American Community Fair, September 12th aur 13th, Shri Krishna Mandir, Morganville.
8: For vendors and information, visit www.krishnatemple.org.
9: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
10: to aaiye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses, aur grooms ke liye stylish sherwanis.
9: Shaadi shopping ka complete destination, fashion queen.
10: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Izzelin.
11: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chefs' recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jaano.
12: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
13: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
14: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
13: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
15: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
16: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
15: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
17: तेरा क्या होगा कालिया?
18: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
17: अब मिर्ची खा।
19: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

कुछ फिल्मों का नाम सुनते ही उनकी कहानी नहीं उनके एहसास याद आ जाते हैं। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और आज एक ऐसी मूवी की बात हो रही है, आवारापन। बॉलीवुड के उन फिल्म्स में से है जिसे वक्त के साथ लोगों ने और ज़्यादा प्यार दिया। डार्क इमोशंस, सोलफुल म्यूजिक और वो इमरान हाशमी का एरा यार, जब हर फिल्म के गाने ना सीधा प्ले लिस्ट में परमानेंट जगह बना लेते थे, क्योंकि वो गाने सिर्फ हिट्स नहीं होते थे, वो लेट नाइट ड्राइव्स, हेडफोन्स और अपनी ही दुनिया का एक साउंड ट्रैक बन जाते थे। और अब जब अरिजीत सिंह की आवाज़ में ये आवारापन सुनाई देता है ना, तो लगता है कि जैसे एक नई आवाज़ उन कहानियों को फिर से महसूस करने का मौका दे रही हो। क्योंकि कुछ मेलेडीज़ की खूबसूरती ही यही होती है कि जनरेशन्स बदल जाती है लेकिन इमोशंस वही रहती है। वैसे आप भी बताइए दोस्तों कि अगर मैं आवारापन बोलूँ तो सबसे पहले आपको उस फिल्म का कौन सा गाना या मोमेंट याद आता है? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और चलिए, एक ऐसी आवाज जो पुरानी यादों को नए अंदाज में छू जाती है, अरिजीत सिंह की आवाज में सुनते हैं ये आवारापन। राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: राखी यादों की कारवां है,
1: जहां मीठी करारी नमकीन कई यादें हैं,
0: यही यादें राखी को पूरा करती हैं।
2: अपने सिब्लिंग्स के साथ मीठी तीखी मेमोरी शेयर कीजिए एंड गेट अ चांस टू विन शानदार गिफ्ट हैम्पर्स।
3: क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
4: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
3: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
7: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
9: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
10: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी। एक्सपर्ट इन पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, हॉरोस्कोप्स एंड बर्थ चार्ट। Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
11: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
12: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
13: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
12: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
13: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
14: तेरा क्या होगा कालिया?
15: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
14: अब मिर्ची खा।
16: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Tickets 4:30 PM. Mirchi Time Check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Shandar. Let's do not donkey. Have a funky time.
2: गरबा का मूड हो या ऑफिस का बोर्डम, दीप गुजराती स्नैक्स की बीट ही काफी है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और सुरती स्पेशल तीखा मिक्स भटानी कानी। एवरी बाइट में लगता है दैट यू आर डूइंग डांडिया एंड दैट टू विद फ्लेवर्स, स्पाइसी क्रंची और देसी फन, या जिसकी गूंज ना मिर्ची सिद्धि के स्टूडियो तक भी पहुंच जाती है। तो आज ही ट्राई कीजिए दीप गुजराती स्नैक्स, सूरत से आया फ्लेवर का फेस्टिवल, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Izzilin.
5: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
6: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
5: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
7: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
8: दिस गोल्डन आवर इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क। सुनहरी होगी ड्राइव जब तनिष्क गोल्ड ज्वेलरी से सुनहरी होगी हर वाइब।

बॉलीवुड की कुछ हीरोइंस का लुक ना फिल्म से निकलकर सीधा फैशन मेमोरी बन जाता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी माधुरी का आइकॉनिक इंडियन लुक, तो कभी दीपिका का ग्रैंड ट्रेडिशनल स्टाइलिंग, तो कभी करीना का एफर्टलेस ग्लैम। यार फिल्म खत्म हो जाती है लेकिन वो लुक याद रह ही जाता है, क्योंकि मेमोरेबल स्टाइल यूजुअली लाउड नहीं होता। आउटफिट, कॉन्फिडेंस और वो केयरफुली चोजन फिनिशिंग टचेस मिलकर ही उसे सिग्नेचर बना देते हैं। और रियल लाइफ में भी किसी की वेडिंग हो, पार्टी हो या स्पेशल इवनिंग, उस पर हम सबका अपना अपना एक हीरोइन मोमेंट तो बनता है। और उसी के लिए तनिष्क प्रेजेंट्स फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स। एंजॉय अप टू 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस, प्लस 0% डिडक्शन ऑन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड गोल्ड अबाउट 18 कैरेट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो मूवी स्क्रीन हो या रियल लाइफ, तनिष्क के फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स के साथ अपना सिग्नेचर मोमेंट्स आप भी क्रिएट कर सकते हो। और दोस्तों मुझे जरूर बताना कि बॉलीवुड की कौन सी ऐसी हीरोइन है जिसका लुक आपको आज भी आइकॉनिक लगता है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि मेरी फेवरेट हीरोइन का आइकॉनिक गाना आपके लिए राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

फोटोडम ऐसा होता है जो कभी ओल्ड नहीं होता। जी हाँ, सिबलिंग्स वाला फोटोडम, वो ब्लरी फोटोज, वो राखी के दिन वाली फर्स्ट स्माइल, वो मैचिंग आउटफिट्स, या फिर वो पिक्चर जिसमें दोनों कैमरा की तरफ कम और एक दूसरे की तरफ ज्यादा देख रहे होते हैं। और अगर आपके फोन में भी ऐसी कोई मेमोरी है तो उसे जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि उसका परफेक्ट टाइम आ चुका है। रक्षाबंधन इज कमिंग सून एंड नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा। इसका मतलब आपके सिबलिंग के साथ अपनी जितनी भी क्यूटेस्ट, फनीएस्ट या मोस्ट मेमोरेबल पिक्चर है हमें भेजिए और जीतिए अमेजिंग हैम्पर्स ब्रॉट टू यू बाय नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड इजलिन, जहां फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स चल रहे हैं ऑन 22 कैरेट गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी। विजिट कीजिए viranijewelers.com फॉर मोर डिटेल्स। तो आपको करना बहुत आसान सा काम है, राखी टाइप करना है और हमें अपने जो पिक्चर्स है वो व्हाट्सएप करने हैं। 9033647244 हमारा व्हाट्सएप नंबर, या फिर आप मुझे इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हो @rjmirchisiddhi siddhi। और अब फोटो मेमोरीज से निकलते हैं म्यूजिक की मेमोरीज की तरफ, क्योंकि अगला गाना भी शायद आपको अपने सिबलिंग की याद दिला दे। तो चलिए सुनते हैं ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieva la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: हेलो, ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से बोल रहे हैं भाई साहब?
2: किसके यहाँ से?
3: स्वर्गीय अनिल चौहान।
2: मतलब किसके यहाँ बात फोन मिलाया आपने?
3: स्वर्गीय अनिल के यहाँ फोन मिलाया भाई साहब। मैं बोल रहा हूँ
2: अनिल ही बोल रहा हूँ, स्वर्गीय नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ।
3: सर, स्वर्गीय अनिल चौहान उनका पूरा नाम है। सर, मैं से बोल रहा हूँ, पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से। तो ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से कोई हो तो उनसे बात करा दीजिए।
2: दिमाग खराब है, अब मैं खुद बोल रहा हूँ, तू सोच कम से कम।
3: सर, आप ये बेवकूफी की बात ना करें, आप एक तो जुबान संभाल के बात करें। मैं पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, आप कह रहे हैं आप जिंदा हैं, यहाँ पोस्टमार्टम कर रखा है हमने, आपकी रिपोर्ट आ गई है। सर, आके ले जाइए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट।
2: स्वर्गीय नहीं, तो अनिल चौहान से ही बात कर रहा है।
3: स्वर्गीय अनिल चौहान, यार आप जो लक्ष्मी नगर में रहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ।
2: स्वर्गीय अनिल चौहान, मैं जिंदा हूँ भाई, बैठा है घर परिवार वाले में, तेरे कोई पागल तो नहीं हो गया?
3: कौन पागल हो गया आपकी पोस्टमार्टम? मेरी बात सुन लीजिए आप।
2: नहीं,
3: मैंने मारा पोस्टमार्टम हमने किया, स्वर्गीय अनिल चौहान से बात करनी है, उनसे बात कराइए। बीच में आप कैसे आ गए यार, कमाल कर दिया आपने। दिमाग खराब मेरा नहीं हुआ, आपको यकीन नहीं है तो दोबारा आके पोस्टमार्टम करा लो, एक ही रिपोर्ट है दोनों की।
2: डॉक्टर बोल रहा हूँ,
3: मैं डॉक्टर विजय बोल रहा हूँ यार, मैंने खुद पोस्टमार्टम किया उनका।
2: केस करूंगा,
3: केस हम क्या करेंगे, केस तो मैं उन पे करूंगा, स्वर्गीय अनिल चौहान पे, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे लिखा हुआ आप बाप बनने वाले थे, वो बाप बनने वाले।
2: परिवार वाले आदमी से बात करता है, कौन है तेरी
3: बेवकूफी की बात मत करिए आप। आइए यहाँ पे पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में, दिखाता हूँ आपकी लाश, आपकी बॉडी दिखाता हूँ यहाँ पे आके। पोस्टमार्टम तो करके छोड़ूंगा मैं
2: जी।
3: स्वर्गीय अनिल चौहान जी के यहाँ से कोई बात कर सकते हैं मेरे से?
2: तेरा दिमाग खराब हो गया।
3: मेरी बात सुनिए, आप फोन मत काटिएगा, बड़ा मुश्किल से मिलता है। अनिल चौहान जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बनाया, छोटा सा मजाक किया है, आपकी उम्र बहुत लंबी है, आप टेंशन ना लें।
2: अरे किसी बहुत मार खाओगे आप, सही बता रहे हैं।
3: सर, मैं पिटने को तैयार हूँ, लेकिन आपकी हंसी सुन के मुझे मजा आता है, अब मेरे साथ आप प्यार से कह दीजिए।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
8: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट एसडी कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
11: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
12: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगा, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
11: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
13: एट तनिष्क, नो टू डायमंड्स आर एग्जैक्टली अलाइक, they're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
14: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
15: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
16: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
17: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना।
0: गाना सुनेगा।
17: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

कितने बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ कॉफी पीने निकले थे लेकिन वापस आते आते जिंदगी के बड़े डिसीजंस भी ले लिए। शाम शाम लाइक सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और नाम सुना मुसाफिर कैफे। और मुझे लगा कि यार कैफे का असली मेन्यू कॉफी थोड़ी ना होता है, वो तो कॉन्वर्जेशंस होते हैं। जी हाँ, नेटफ्लिक्स पर आई नई सीरीज मुसाफिर कैफे, जिसमें विक्रांत मेसी, वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना नजर आ रही है। कहानी तो वैसे कैफे से शुरू होती है, लेकिन असल में बात उन लोगों की है जो जिंदगी के सफर में मिलते हैं, कुछ पल साथ रहते हैं और फिर हमारी कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। क्योंकि यार कॉफी के कॉन्वर्जेशंस ही ऐसे होते हैं, कोई पहली बार आई लाइक यू बोलता है और कोई कभी कभार मुझे बस एक बात बतानी है ऐसे शुरू करता है। किसी टेबल पर दोस्ती शुरू होती है तो किसी दूसरे टेबल पर टेक केयर बोल के लोग अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं। कभी किसी को नई जॉब मिलती है, कभी स्टार्टअप का आइडिया बनता है, कभी शादियां फिक्स होती है, तो कभी बस दो दोस्त 3-4 घंटे तक दुनिया भर की बातें करते रहते। लेकिन पता है सबसे मजे की बात क्या है कि सालों बाद ना कॉफी की टेस्ट याद रहे या ना रहे, लेकिन उस टेबल पर हुई हर कॉन्वर्जेशन वर्ड बाय वर्ड याद रहती है। वैसे दोस्तों, आपने भी ऐसी कॉन्वर्जेशन कई बार की होगी, तो ऐसे किसी कैफे का नाम अगर आपको रखना हो तो वो क्या होगा? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और मुसाफिर कैफे क्या आपने भी देखी, जरूर बताना। और तब तक ऐसा बॉलीवुड का गाना सुनते हैं जो हर कॉफी डेट और हर दिल की बात को और भी खूबसूरत बना देता है। ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: ओ दलजीत दोसांझ,
3: पाजी, पाजी
2: आप क्या लेने आए हो?
3: शुद्ध देसी घी।
2: लो पाजी, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है।
3: घी टेस्ट के लिए थोड़ो खाते हैं, घी सेहत के लिए खाते हैं। मुझे चाहिए शुद्ध देसी घी, जो घर वाला टेस्ट दे, जो ब्रांड भी हो ना वो ट्रस्टेड हो। वो एक नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा।
2: नानक घी पाजी,
3: नानक घी चाहिए यार। अगर आपको भी चाहिए शुद्ध देसी घी तो कहिए नानक घी चाहिए। सो गुड, सो प्योर, इट्स नानक।
4: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison. कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
6: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
5: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
6: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Islington।
7: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुरा कर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
8: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islington, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
9: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
10: कोहली goes down the ground, कोहली goes out of the ground.
9: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
11: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
9: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
12: एक ही होता है।
9: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: starts 5:30 p.m. Mirchi Time Check, RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price. Sham Shandar, let's do not
1: donkey, have a funky time. शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आजकल न्यूज खोलो ना तो हर जगह एक ही वाइब है, चेंजिंग जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इन्फ्लेशन, मार्केट शिफ्ट। और नेचुरली जब इतना सब चेंज हो रहा हो तो नए होम बायर्स के माइंड में एक ही सवाल आता है कि क्या अभी सही टाइम है या वेट करना चाहिए। और ऐसे टाइम पे पैनिक नहीं, राइट गाइडेंस मैटर करता है, क्योंकि हर सिचुएशन में अपॉर्चुनिटीज भी होती है, बस उसे सही तरीके से कोई समझाने वाला चाहिए, कोई ऐसा चाहिए जो ऐसे सिचुएशन में भी बोले कि यार डोंट फियर, वी आर हियर। तो चलिए उसी के लिए बुलाते हैं बीश को फ्रॉम लायन मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।
2: जय सायराम मिर्ची, दिस इज योर फ्रेंड बीश फ्रॉम लायन मॉर्गेज। आई वाज अ लिटिल लाउड यस्टरडे, रेन रिटर्न्स टू आवर एरिया एंड द यूएस मार्केट फॉल एज ऑयल प्राइसेस जंप्ड। आल्सो द बॉन्ड यील्ड रिबाउंडेड कॉजिंग मॉर्गेज रेट्स टू राइज। मॉर्गेज रेट्स आर हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्फ्लेशन, ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड्स एंड एक्सपेक्टेशन अबाउट द फेडरल रिजर्व will do next. So if you are thinking about buying a home, don't make the decision based solely on political headlines or prediction that rates will suddenly fall. Look at your income, your credit, your down payment, your monthly budget, and shop around for the best loan you can qualify for. So buying your dream home, call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. Looking at the mortgage rates today, the 30-year fixed mortgage rate, 6.375%. 20-year fixed mortgage rate, 6.25%. 15-year fixed mortgage rate, 5.625%. Friends, you can always visit our user-friendly website at www.lionmtg.com. And it is lionmtg.com. Friends, remember, Lion Mortgage offers conventional loans, FHA loans, great rates on jumbo loans. We also offer one year buy down. Also, we offer loan programs outside Fannie Mae and Freddie Mac guidelines, like you can buy your home under an LLC, or we can use your bank statements to buy your dream home. Remember, listeners, we strive to earn your complete satisfaction because your networking of your positive experience with Lion Mortgage to your friends, family, and coworkers will provide us with our foundation for the future. Keep us in mind again, Lion Mortgage, your ultimate source of residential loan. So call us today at 732-339-3155. Buying your dream home or refinancing, Lion Mortgage, 732-339-3155. With that, drive safe, everybody. Have a wonderful evening. Thank you very much. Bye-bye.
3: This mortgage update is brought to you by Lion Mortgage.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jaano.
3: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
4: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
3: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
5: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
6: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
5: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन.
7: ब्रॉट टू यू बाय दीप फूड्स. दीप फूड्स खाओ तो जानो.
8: तेरा क्या होगा कालिया?
9: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
8: अब मिर्ची खा.
10: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

की टाइम। दोस्तों कभी नोटिस किया है, कुछ यादें ना हम याद नहीं करते, वो खुद ही हमें ढूंढ लेती है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धी। और आज ड्राइव करते करते अचानक मुझे बचपन की वो विंडो सीट याद आ गई। जी हाँ, वही विंडो सीट जिसके लिए कार में बैठते से ही हम झगड़ा करते थे कि यार विंडो सीट तो मेरी है बॉस, और फिर पूरा सफर बस बाहर देखते हुए निकल जाता था। कभी पेड़ उल्टे भागते थे, कभी हम इलेक्ट्रिक पोल्स काउंट करते थे, या कभी बादलों में हाथी या फिर रैबिट बना देते थे। और हवा को हाथ से पकड़ने की वो बचकानी कोशिश भी ना इतनी सीरियस लगती थी तब, क्योंकि तब ना रोड ट्रिप्स का मतलब सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचना नहीं था, सफर भी उतना ही एक्साइटिंग होता था। वैसे आज भी हम सब ड्राइव टाइम पे ही होते हैं, लेकिन नजर थोड़ी सी बदल चुकी है। जीपीएस बोल रहा होता है, फोन ब्लिंक कर रहे होते हैं, और बाहर का व्यू कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो आज जब घर जा रहे हो और रेड लाइट पे गाड़ी थोड़ी देर रुके ना, तो एक बार फोन को थोड़े साइड में रखकर विंडो के बाहर जरूर देखना। हो सकता है कोई पुरानी रोड ट्रिप, कोई फैमिली वेकेशन या बचपन की वो विंडो सीट बिना इन्विटेशन के वापस आ जाए। तो आज अगर ड्राइव के बीच एक पुरानी याद अचानक से मुस्कुरा दे तो जरूर बताना। DM me on @RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और फिलहाल इस थ्रोबैक थर्सडे के मूड को कायम रखते हुए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
2: ए भाई जरा देख के चलो, शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धी। और आज के वेदर को देखते हुए ये लाइन बिल्कुल परफेक्ट फिट होती है, क्योंकि इस वक्त टेम्परेचर अराउंड 78 डिग्रीज फारेनहाइट और आज का हाई करीब 82 डिग्रीज फारेनहाइट तक रहेगा। लेकिन आज का फोकस टेम्परेचर नहीं, वेदर अलर्ट्स है। फ्लड वॉच इन इफेक्ट और लेट आफ्टरनून से लेकर रात तक हैवी रेन्स और थंडरस्टॉर्म यानी मेघा बरसने वाली है। तो कुछ जगह रोड्स पर वाटर लॉगिंग हो सकती है, तो विजिबिलिटी कम हो सकती है। तो अगर आज आप ऑफिस से घर जा रहे हो या शाम को बाहर निकलने का प्लान है, तो थोड़ा संभल के एक्स्ट्रा ट्रैवल टाइम रखिए, अम्ब्रेला साथ रखिए एंड ड्राइव केयरफुली। वैसे ऐसा मौसम होता ही इसलिए है कि हम यार थोड़े से स्लो हो जाए, ट्रैफिक से निकलकर घर पहुंचने के बाद गर्म चाय की एक सिप ले और फोन की गैलरी में बिना किसी रीजन के स्क्रॉल करते रहे। वैसे यार मुझे तो पूरा यकीन है कि

2 3 स्क्रोल के अंदर ही आपको वो तस्वीर मिल जाएगी जिसे देखते ही फेस पर ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाएगी, क्योंकि यार रक्षाबंधन करीब आ रहा है। तो चलिए जल्दी से अपने फोन की गैलरी में जाकर वो वाली फोटो निकालिए अपने सिबलिंग के साथ, वो क्यूट सी, वो नटखट सी, फनी वाली, सबसे मेमोरेबल वाली पिक्चर में भेजिए, बिकॉज नानक फूड्स प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा। तो अपने सिबलिंग के साथ अपनी सबसे प्यारी फोटो हमें भेजिए और जीतिए अमेजिंग हैम्पर्स। Brought to you by Nanak Foods, bringing sweetness to your life in association with Virani Jewelers on Oak Tree Road, Islington, जहां festive special offers भी चल रहे हैं on 22 carat gold and diamond jewelry. तो आप विजिट कर सकते हो viranijewelers.com for more details. और रक्षाबंधन के इस खास इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए जल्दी से हमें टाइप करके भेजिए राखी ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर 9033647244, 9033647244, या फिर आप मुझे डीएम भी कर सकते हो @RJMirchiSiddhi SIDDHI ऑन इंस्टाग्राम, और अपनी प्यारी सी रक्षाबंधन की मेमोरी हमारे साथ शेयर कीजिए, आपकी प्यारी सी तस्वीर हमारे साथ शेयर कीजिए और जीतिए एक्साइटिंग प्राइजेस। तो चलिए, बारिश का मौसम है, यादों का भी, और वक्त है म्यूजिक का, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Buscabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieja la burga.
1: Mirchi, burga. Hello.
2: Could I speak to Manish, please?
1: Speaking.
2: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से।
1: ओके
2: मनीष, आई नीड योर फेवर, आपकी मदद की जरूरत पड़ गई थी। मैं यहाँ पे लेक्चर्स देता हूँ स्टूडेंट्स को। मैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, राइट, कि पहले इंसान एप था, आई बिलीव आपने भी पढ़ा होगा किसी जमाने में, यहाँ पहले इंसान बंदर की शक्ल में था, फिर वो धीरे धीरे धीरे धीरे यू नो इंगे के इंसान बन गया, राइट।
1: बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं?
2: मैं एक बार फिर बताता हूँ, मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, राइट। एक मेरा सब्जेक्ट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, 40-50 स्टूडेंट्स हैं मेरे। इफ यू डोंट माइंड, मैं प्लीज आपसे अगर चाहूँ आप मुझे 2 घंटे दे सकते हैं मेरी क्लास में आके।
1: 2 घंटे करना क्या है, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ।
2: तो ये मेरा एक सब्जेक्ट है जो मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि इंसान बंदर होता था। तो मेरे स्टूडेंट्स इस बात पे यकीन कर नहीं रहे, तो आप अगर क्लास में आ जाएंगे ना स्टूडेंट्स के सामने, तो स्टूडेंट्स के सामने मैं आपको खड़ा कर दूंगा और आपका चेहरा ब्लैकबोर्ड के पास आ जाएगा, तो उनको यकीन आ जाएगा कि हाँ पहले इंसान वाकई में बंदर। आई एम श्योर कि सारे यकीन कर जाएंगे कि हाँ पहले इंसान बंदर हुआ करता था। बस इतनी हेल्प चाहिए थी मुझे आपकी। तो कब आ जाएंगे आप मुझे ये बता दीजिए, कल का रख ले। मेरी बात सुनो, आई एम प्रोफेसर, मेरी बात सुनिए यार। हेलो, वैसे दिल्ली कितनी गालियां खाऊं मैं आपको हंसाने के लिए यार, ये नाइंसाफी है।
1: हेलो,
2: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी, मेरी बात सुनिए, मुझे माफ कर दो, थोड़ा ज्यादा हो गया था। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे नंबर दिया था तुम्हारी दोस्त कपिल ने, उसने कहा था कि तुम्हारा मुर्गा बना दे यार, मैं मुर्गा बनाया है, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, आपकी इजाजत हो तो मैं हंस लूं यार। मनीष, वो एक्चुअली स्टूडेंट्स को यकीन नहीं आ रहा था कि आदमी पहले बंदर होता था, इसलिए मैंने लगा कि तुम आ जाओगे तो एक बार काम बन जाएगा यार। इंसान पहले बंदर होता था, अब मेरे को यकीन आ गया, मैं बता दूंगा उनको।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। This gold update is brought to you by Raj Jewels, Kingdom of Jewels, where tradition meets style.
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: Inefficient.
6: Very complex.
7: Clumsy hoy.
8: Confusion hi confusion.
3: Disjointed software ko use karna utna easy nahi jitna aap samajh rahe hain. Toote phoote software se chhutkara pao. Apne business ke liye Zoho One le aao. Zoho One is an all-in-one integrated software suite jisse aap apna pura business chala sakte hain. Yes, you heard that right. You can run your entire business. Sales, marketing se leke customer support, accounting, operations ya HR. Kaam anek, software ek, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
9: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
10: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
9: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
10: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
11: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
12: क्या बनाए आज? शाही पनीर बनाए, कढ़ाई पनीर बनाए, मटर पनीर बनाए या फ्राई पनीर बनाए? अगर आपके पास नानक पनीर है तो आप कुछ भी बना सकते हैं। आंखों में चमक और चेहरे पे नूर सिर्फ ब्यूटी पार्लर जाने से नहीं आता, उसके लिए अच्छा खाना भी खाना पड़ता है। खाना भी वो जो क्वालिटी और टेस्ट में हो नंबर वन, जैसे आप सबकी पसंद नानक पनीर। सो गुड, सो प्योर, इट्स नानक।
13: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए डीप फूड्स चटनी। डीप, खाओ तो जानो।
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
14: Tera kya hoga, Kalia?
15: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
14: Ab mirchi kha.
16: Radio Mirchi, it's hot.

0: वक्त बीत जाता है लेकिन कुछ खास गाने ऐसे बन जाते हैं जो दिल में घर कर जाते हैं। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्दी। और 2005 में रिलीज हुई एल्बम बंटी और बबली, यानी 20 साल हो चुके हैं इस एल्बम को, लेकिन आज भी उसके गाने उतने ही रेलिवेंट है। तो आज हमने सोचा कि आज की शाम में ऐसे ही टाइमलेस गानों के बारे में जो कि बंटी और बबली के एल्बम में है उनके बारे में बात की जाए, उनके बारे में कुछ खास किस्से शेयर की जाए। और आज का जो पहला गाना है फ्रॉम दिस एल्बम इज ऑब्वियसली वन ऑफ आवर फेवरेट सॉन्ग्स, कजरा रे। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन एक फ्रेम में एक साथ इसी गाने में नजर आए थे, और सिर्फ कोई ऐसा वैसा गाना नहीं था, एक आइटम सॉन्ग था। तो काफ़ी हिचकिचाहट थी अमिताभ बच्चन के लिए भी, ऐश्वर्या राय के लिए भी, कि शायद उनसे ये गाना नहीं हो पाएगा। लेकिन वैभवी मर्चेंट ने, जो कि इस गाने की कोरियोग्राफर रही है, उन्होंने उनको भरोसा दिलाया कि नहीं यार, ये गाना आप सब लोग बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, इस गाने का सेटअप भी इतने अच्छे से किया जाएगा और ये गाना आइकॉनिक बनेगा, ये विश्वास वैभवी जी को था। इतना ही नहीं, ये वो पहला गाना था जो गुलजार साहब ने एज अ फर्स्ट आइटम सॉन्ग लिखा था। और वैसे तो गुलजार साहब काफ़ी सारे जो इंस्पिरेशन होती है उनके गानों के लिए वो काफ़ी अलग अलग चीज़ों से लेते हैं, लेकिन इस गाने के लिए उन्होंने डिसाइड किया था कि कोई भी ऐसे डीप चीज़ से इंस्पिरेशन नहीं ली जा सकती। तो इन्होंने जो इस गाने के लिए इंस्पिरेशन ली थी वो थी नॉर्थ इंडियन जो ट्रक्स होते हैं उसके पीछे जो मैसेजेस लिखे होते हैं उससे, जैसे कि नज़र हटी दुर्घटना घटी, वैसे ही इस गाने में एक लाइन है कि जालिम नज़र हटा ले। और ऐसे ही ये गाना बना वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग्स रिटन बाय गुलजार साहब। तो जी हाँ, आज सुनते हैं कजरा रे बंटी और बबली के एल्बम से, जो कि 2005 में रिलीज हुई थी, एंड वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग्स शंकर महादेवन की आवाज में। और वैसे तो कजरा रे के काफ़ी सारे सिंगर्स रहे हैं, मतलब जावेद अली, शंकर महादेवन, अलीशा शिनाई, और लेकिन ऑफकोर्स उसका जो एंड पार्ट है जिसमें वो गाते हैं कि तुझसे मिलना पुरानी दिल्ली में, छोड़ा आए कहानी दिल्ली में, तो जी हाँ, ये जो पार्ट है वो मेरा भी फेवरेट पार्ट है। आई होप आपको भी ये गाना पसंद हो, और आप भी मुझे बता सकते हो विच इज़ दैट टाइमलेस एल्बम, विच इज़ द टाइमलेस सॉन्ग जो आप हमेशा सुनना पसंद करते हो। टेल मी ऑन आरजे मिर्ची सिद्दी SIDDHI। और फिलहाल आज बंटी और बबली के गानों के बारे में बात होगी, तो विच मीन्स कि ये जो कजरा रे गाना है ये हमारे लिस्ट का पहला गाना है। तो और भी गाने आने वाले हैं, तो कहीं ना जाइए, बने रहिए मेरे साथ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर

0: ये गाना था करण अर्जुन का, लेकिन लिखा गया था हर भाई बहन के लिए। लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे।
1: तू ना कभी चेंज नहीं होगा।
2: और तू तो देवी है ना।
3: इस राखी बोल दो दिल की बात, क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
4: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
3: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Food?
8: Yes.
7: Shopping?
8: Yes.
7: Entertainment?
8: Double yes.
7: Aur health fair?
8: Of course. Sab kuch ek hi jagah. Indo-American Community Fair. September 12th or 13th. Sri Krishna Mandir, Morganville.
9: For vendors and information, visit www.krishnatemple.org.
10: Finest kitchens in India. A thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jaano.
11: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
12: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
13: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
14: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
13: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
15: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट एसडी कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
16: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
17: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
16: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
18: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी। Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
19: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
3: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
1: At 6:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
10: Sham Shandar. Let's do Nautanki. Have a funky time.
4: वक्त बीत जाता है, लेकिन कुछ ऐसे खास गाने बन जाते हैं जो दिल में घर कर जाते हैं। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और हमारी बातें हो रही है कि यार बंटी और बबली के एल्बम को, जो कि रिलीज हो चुकी थी 2005 में, इस एल्बम को हो चुके हैं 20 साल, लेकिन आज भी उसके गाने उतने ही पॉपुलर है, उतने ही अमेजिंग है। और कजरारे के बारे में तो हमने बात की, लेकिन वन ऑफ द अदर सॉन्ग्स दैट आई एब्सोल्युटली लव इज धड़क धड़क। जी हाँ, ये गाना गाया है उदित नारायण जी ने और सुनिधि चौहान ने, कंपोज्ड बाय नन अदर देन म्यूजिक मेस्ट्रो शंकर महादेवन। और ये गाना जब बन रहा था, तब इसकी जो फिल्मिंग होने वाली थी, तब डिसाइडेड था कि ये गाना बनते हुए इसकी फिल्मिंग, जो रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन के जो होम टाउन्स है, रिस्पेक्टिव होम टाउन, जो कि छोटे शहर है, वहाँ पर ही होनी चाहिए, क्योंकि यार तब लोगों को लगता था कि बड़े शहरों वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ही कूल होते हैं। एंड ये पूरा नैरेटिव इन्होंने डिसाइड किया था कि चेंज करना है। नहीं, क्योंकि छोटे चेहरों से भी जो छोटी छोटी बातें होती है, जो छोटे छोटा फैशन सेंस होता है, वो अमेजिंग होता है। और ये जो गाना बनाया गया था वो लिखा भी इसी तरीके के लिए गया था, इसी सीक्वेंस के लिए गया था कि छोटे छोटे शहरों से, आधी भोल दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले। तो जी हाँ, ये बहुत ही प्यारा सा एक ऐसा गाना बनाया गया था जिससे हमें हमारे उन छोटे छोटे शहरों की याद आती है जहाँ से हम आए हैं। तो इस गाने की ये खासियत तो थी ही, बट इतना अमेजिंगली ये गाना नॉट जस्ट गाया गया है बल्कि फिल्म भी किया गया है। तो इसी याद में आज इस गाने को प्ले करते हैं। वैसे बंटी और बबली एक ऐसा आइकॉनिक एल्बम है जो हमारे लिए काफ़ी स्पेशल है इवन आफ्टर 20 इयर्स। लेकिन आप भी मुझे बता सकते हो ऐसा कौन सा दूसरा एल्बम है जो आपको बहुत पसंद है, जिसको 20-25 साल हो चुके हैं बट आज भी रेलिवेंट है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और बंटी और बबली का और एक गाना जो मेरा फेवरेट है वो मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूं, तो कहीं ना जाइए, बने रहिए मेरे साथ राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
4: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
3: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
6: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
5: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
6: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Izzilin।
7: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
8: लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
9: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
8: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

वक्त बीत जाता है लेकिन कुछ खास गाने ऐसे बन जाते हैं जो दिल में घर कर जाते हैं। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और आज बातें हो रही है कुछ टाइमलेस गानों के बारे में और 2005 में यानी 20 साल पहले रिलीज हुई एल्बम बंटी और बबली के। यार सारे गाने अमेजिंग है, मतलब 20 साल हो चुके हैं लेकिन इस एल्बम के तो एक से बढ़कर एक गाने हैं। और कजरारे के बारे में तो हम बात कर चुके हैं, धड़क धड़क इस गाने के बारे में हम बात कर चुके हैं। द थर्ड सॉन्ग इन दिस एल्बम विच इज़ रियली ब्यूटिफुल इज छुप छुप के, जिसे गाया गया है सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर ने। वैसे यार इस गाने की एक खास बात है कि एक रोमांटिक सॉन्ग तो है ही, एक बहुत ही ब्यूटिफुली कंपोज सॉन्ग है, लेकिन इस गाने को जब रिकॉर्ड किया गया था तब शंकर महादेवन ने इसकी रिकॉर्डिंग कम से कम 3 बार रुकाई थी बीच में, क्योंकि यार तब वो गाना इतना ब्यूटिफुली रिकॉर्ड हो रहा था कि गाने के बीच में ही उनको गूज बम्स आ गए और उनका जो पार्ट था, उनका जो कंपोजिशन था, बीच में ही समवेयर वो अमिस हो गया एंड उस वजह से उनको ये गाना 3 बार ऑलमोस्ट रोकना पड़ा। तो जी हाँ, इतना ब्यूटिफुल कंपोजिशन है छुप छुप के फ्रॉम बंटी और बबली का एल्बम विच वॉज मेड इन 2005। यार 20 साल हो चुके हैं लेकिन आज भी ये गाना उतना ही ब्यूटिफुल है, उतना ही टाइमलेस है और उतना ही हमारे दिल में घर कर चुका है। वैसे ऐसा कोई और गाना है, ऐसा कोई और एल्बम है तो आप अपने सॉन्ग रिक्वेस्ट मुझे भेज सकते हो, टाइमलेस सॉन्ग जो आपके दिल में आज भी है। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए बंटी और बबली का छुप छुप के, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
2: शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और बातें हो रही है टाइमलेस सॉन्ग के बारे में जो यार 20-25 साल पहले बने थे लेकिन आज भी उतने ही रेलेवेंट है, आज भी उतनी धूम मचाते हैं। और आज का जो सॉन्ग रिक्वेस्ट है दैट इज फ्रॉम महेश हु इज फ्रॉम एडिसन। और महेश कहते हैं कि उनको जो सॉन्ग रिक्वेस्ट यहाँ पर देनी है दैट इज फॉर द सॉन्ग रंग दे बसंती फ्रॉम द मूवी ऑफ कोर्स रंग दे बसंती, 2005 में रिलीज हुई थी। और इसका जो टाइटल ट्रैक है, जितने जोर से जितने एनर्जेटिकली 2005 में लोग नाचते थे उतने ही एनर्जेटिकली 20 साल बाद आज भी इस गाने पे धूम मचती है, डांस होता है और उतने ही दिल के करीब है। तो चलिए आज महेश के रिक्वेस्ट पर बजाते हैं रंग दे बसंती। वैसे दोस्तों, विच इज दैट वन टाइमलेस सॉन्ग दैट यू एब्सोल्युटली लव, टेल मी ऑन इंस्टाग्राम।

0: Milci.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Burga, burga. La virba la burga. Milci, burga.
2: हेलो
3: आकाश
2: जी,
3: आकाश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपने मुर्गा बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था ना?
2: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
3: मुझे बताइए किसका मुर्गा बनाना है?
2: मेरी गर्लफ्रेंड है।
3: ओहो, यही मिली है आपको?
2: जी, बहुत पंगे लेती है।
3: अच्छा आकाश, ये थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है क्योंकि मुर्गा बनाने से पहले हम जो रिक्वेस्ट करते हैं मुर्गे की, उनसे एक फॉर्म फिल करा लेते हैं।
2: ठीक है,
3: मुझे अपना पूरा नाम बता दीजिए।
2: आकाश मल्होत्रा।
3: अच्छा आकाश, मैं थोड़ा सा इसको फॉर्म को पढ़ देता हूँ क्योंकि मुर्गा थोड़ा सा मुश्किल भी होता है बनाना, कभी गुस्सा आ जाता है लोगों को, यू नो। तो इसमें कुछ क्लॉज और रूल्स हैं, वो आप फॉलो करेंगे, इसको अग्री करेंगे तो ही हम मुर्गा बनाएंगे,
2: राइट? बिल्कुल।
3: चलिए, अच्छा इसमें ये है, मैं इसमें आपका नाम लिख देता हूँ, मैं आपको पढ़ देता हूँ। मैं आकाश मल्होत्रा अपने होशो आवाज में अपनी गर्लफ्रेंड पूजा का रेडियो मिर्ची पे मुर्गा बनवा रहा हूँ। अगर कल को पूजा को इस बात पे गुस्सा आ जाता है तो उसका जिम्मेदार आकाश यानी मैं खुद होऊंगा, ठीक है?
2: जी, डेफिनेटली।
3: ओके, अगर गुस्सा इतना ज्यादा आ जाता है कि पूजा केस कर देती है मुर्गा बनाने वालों पे, तो उसका जिम्मेदार भी आकाश मल्होत्रा होगा।
2: अच्छा,
3: अगर केस पूजा जीत जाती है और सजा के तौर पे 10 साल की बिना बेल की सजा होती है, तो उसका जिम्मेदार आकाश मल्होत्रा होगा।
2: क्या कह रहे हैं?
3: अगर सजा के तौर पे सजाए काला पानी भेजा जाए तो आकाश मल्होत्रा जाएगा। ये दूसरा
2: क्या सर, मतलब नहीं, मुर्गा बनाने में ऐसा सभी होता है?
3: नहीं, ये फॉर्मेलिटी है ना सर, ये पूरा करना होता है, ये कंपनी की तरफ से है। ये लास्ट सुन लीजिए, लास्ट में लिखा हुआ है, अगर मुर्गा बनवाने वाले ने शुरू की 2 शर्तें मान ली है तो उसको मुर्गा बनवाना ही पड़ेगा जिसका वो चाहता है। तो मैं पूजा को फोन करता हूँ, अब आप मजे लीजिएगा, है ना?
2: सर देखिए,
3: हाँ बताइए।
2: फन की बात अलग है, लेकिन उसको सीरियसली गुस्सा आ गया और
3: अरे नहीं, बात तो सुनिए, गुस्सा आपको
2: आज मैं तो प्लीज रहने दीजिए, इसको मेरी बात मान लीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी।
3: चलिए मैं एक शर्त पे रहने दूंगा
2: जी,
3: अगर आप बोलेंगे मेरे साथ कुकड़ू। आकाश तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मैं तुम्हें ऑन एयर डाल दिया है और तुम्हारा ही मुर्गा बन गया।
2: मेरा बन गया वो कुकड़ू को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
7: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
9: Honey, it's 11 p.m. our bedtime. Where are you?
10: I am not going to bed with you ever again.
9: But why? What did I do?
10: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it, it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
9: Oh honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
10: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
9: Yes, come soon. Honey!
10: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
9: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
11: सिमरन तू कार छड़ के किधर जा सकती है था? आई नो सिमरन, मेरी गलती है, मैं तेरे को टाइम नहीं दे सकिया।
12: नहीं राज, अपने विच पहला वर्गा हुण कुछ नहीं रहा, सब कुछ बदल गया। तू बदल गया, तेरे ड्रीम बदल गए, तेरे प्रेफरेंसेस बदल गए। कुछ है जो इन्ने सालों विच नहीं बदलिया? है कुछ?
11: हाँ।
12: की?
11: नानक रसमलाई। हाँ सिमरन, हाँ नानक रसमलाई दा टेस्ट अज भी ओही है जो साडे विआह तों पहला सी।
12: राज
11: सिमरन,
13: नानक ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ।
14: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
15: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
14: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
16: Famous Indian astrologer, Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
17: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
18: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
17: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
18: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, इजलिन।
0: तेरा क्या होगा कालिया?
11: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब मिर्ची खा।
19: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका आज की इस खूबसूरत शाम में। आज की जो शाम है डेडिकेटेड है फॉर द टाइमलेस सॉन्ग्स जो कि यार बने थे 20-25 साल पहले लेकिन आज भी उतने ही रेलिवेंट है, आज भी दिल के उतने ही करीब है। एंड द नेक्स्ट सॉन्ग रिक्वेस्ट इज फ्रॉम यू गाइज और वो सॉन्ग रिक्वेस्ट है फॉर द सॉन्ग बुमरो मिशन कश्मीर का ये गाना है जो फरमाया गया है ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा पर। और यार ये जो गाना है इसकी एक बहुत ही खास बात है, वैसे तो इसे गाया गया है जसपिंदर नरूला, शंकर महादेवन और सुनिधि चौहान ने, लेकिन जब ये गाना बनाया गया था यानी ओरिजिनली जब ये गाना बनाया गया था तो दैट ओरिजिनल सॉन्ग इज संग बाय दीनानाथ नदीम जो कि एक बहुत ही सिंपल सी ट्यून थी बुमरो जो कि कश्मीरी ओपेरा का पार्ट था। तो जी हाँ, वहां से ये गाना इंस्पायर्ड है और आज हमारे शो में इस गाने को रिक्वेस्ट किया है प्रीति ने जो कि है फ्रॉम जर्सी सिटी। तो प्रीति जिंटा का ये गाना सुनना चाहती है मिशन कश्मीर का बुमरो। वैसे इस गाने के साथ आई एम प्रीटी श्योर काफ़ी सारे लोगों की मेमोरीज होंगी क्योंकि वन ऑफ द एक ऐसा गाना है ये जो बचपन में इस पर हम सब ने डांस किया होगा, स्पेशली स्कूल के फंक्शंस में। मतलब मेरे साथ तो इतना बड़ा ट्रोल हुआ है इस गाने के साथ कि मैं जब अपने स्कूल में थी तब मैं इस गाने पे डांस करने वाली थी एंड मुझे प्रीति जिंटा नहीं बनाया गया था, मतलब आई वॉज नॉट इन द गर्ल्स पार्ट, आई वॉज इन द गाइज पार्ट। तो मैं ऋतिक रोशन की तरह बस ऐसे हाथ हिला रही थी, सो आई वॉज प्लेइंग द ऋतिक रोशन पार्ट एंड नॉट प्रीति जिंटा पार्ट, बिकॉज यार इतनी सारी लड़कियों को इस गाने पे डांस करना था कि लड़कियों के स्लॉट फुल हो चुके थे, तो इसलिए मुझे और बहुत सारी लड़कियों को हमको ऋतिक रोशन का पार्ट दे दिया गया था। सो येस, आई एम प्रीटी श्योर ये गाना उतना स्पेशल सभी के लिए होगा एंड आप में से कई सारे लोगों ने बचपन में इस गाने पे डांस तो ज़रूर किया होगा, स्पेशली स्कूल्स या अपने कॉलेज फंक्शंस में या ऐसे ही कहीं पर। तो अगर आपने भी किया है तो मुझे ज़रूर बताइए, टेल मी ऑन माय इंस्टा हैंडल @rjmirchisiddhi, और उसी के साथ साथ आप अपनी टाइमलेस सॉन्ग रिक्वेस्ट भी मुझे भेज सकते हो। तो जल्दी से DM मी और फिलहाल सुनते हैं बुमरो फ्रॉम मिशन कश्मीर @preeti's request right here on Mirchi, it's hot।

0: राखी यादों की कारवां है,
1: जहां मीठी करारी नमकीन कई यादें हैं,
0: यही यादें राखी को पूरा करती हैं।
2: अपने सिबलिंग्स के साथ मीठी तीखी मेमोरी शेयर कीजिए एंड गेट अ चांस टू विन शानदार गिफ्ट हैम्पर्स।
3: क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
4: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
3: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: भाई बहन का रिश्ता होता है प्राइसलेस, तो राखी की कोई कीमत क्यों हो?
8: Celebrate Rakhi with Rajbhog. Rajbhog wishes you a very happy Raksha Bandhan. Orders on rajbhog.com or visit your local grocery store.
9: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
10: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
9: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
11: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
12: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
13: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
12: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
14: इंडिया के रंग, सुर और स्वाद सब कुछ एक जगह।
15: एक्सपीरियंस जन्माष्टमी फेस्टिवल विद कृष्णा लीला, ट्रेडिशनल डांसेस, लाइव म्यूजिक, भजन, डिलीशियस फूड, शॉपिंग एंड किड्स एक्टिविटीज।
14: संडे अगस्त 23rd 1 to 6 PM, न्यू Brunswick Performing Arts Center, located at 9 Livingston Avenue, New Brunswick. Free entry and parking. Our website is www.newbrunswickarts.org. Call Tracy at 908-917-2862.
16: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
17: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
18: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
19: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
8: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
19: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
11: एक ही होता है।
19: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Sticky feelings. Black,
1: Sham Shanda. Let's go now, donkey. Have a funky time. आजकल एक ट्रेंड बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहा है एंड दैट इज फोटोडम्प। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और यार चाहे वेकेशन फोटोडम्प हो, फूड फोटोडम्प हो, रैंडम संडे फोटोडम्प हो, लेकिन एक फोटोडम्प ऐसा होता है जो कभी ओल्ड नहीं होता। जी हाँ, सिबलिंग्स वाला फोटोडम्प, वो ब्लरी फोटोज, वो राखी के दिन वाली फर्स्ट स्माइल, वो मैचिंग आउटफिट्स, या फिर वो पिक्चर जिसमें दोनों कैमरा की तरफ कम और एक दूसरे की तरफ ज्यादा देख रहे होते हैं। और अगर आपके फोन में भी ऐसी कोई मेमोरी है तो उसे जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि उसका परफेक्ट टाइम आ चुका है। रक्षाबंधन इज कमिंग सून एंड नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा। इसका मतलब आपके सिबलिंग के साथ अपनी जितनी भी क्यूटेस्ट, फनीएस्ट या मोस्ट मेमोरेबल पिक्चर है हमें भेजिए और जीतिए अमेजिंग हैम्पर्स ब्रॉट टू यू बाय नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड इजलिन, जहां फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स चल रहे हैं ऑन 22 कैरेट गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी। विजिट कीजिए viranijewelers.com फॉर मोर डिटेल्स। तो आपको करना बहुत आसान सा काम है, राखी टाइप करना है और हमें अपने जो पिक्चर्स है वो व्हाट्सएप करने हैं। 9033647244 हमारा व्हाट्सएप नंबर, या फिर आप मुझे इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हो @rjmirchisiddhi siddhi। और अब फोटो मेमोरीज से निकलते हैं म्यूजिक की मेमोरीज की तरफ, क्योंकि अगला गाना भी शायद आपको अपने सिबलिंग की याद दिला दे। तो चलिए सुनते हैं ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: ओ चन्नती कुड़ी, ओ चन्नती कुड़ी।

नीतू जट नू पसंद होगी गर्मी च ठंड होगी मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी तिरछी नजर तेरी आशकाली पंग होगी।

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। एंड चलिए, अब वक्त आ चुका है फॉर मी टू से टाटा, बाय बाय, सायोनारा टू यू। लेकिन ना आप कहीं ना जाइए, क्योंकि थर्सडे की शाम है, बस एक दिन और फिर फ्राइडे जल्द ही शुरू होने वाला है। तो कहीं ना जाइए, बने रहिए, जमे रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।